0: with Ketan.
1: Kia ora, namaste, sat sri akaal, assalamu alaikum, aapka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat show mein jiska naam hai Lunchbox Show. Kaise hain janab aap? Kya haal hai aapke? Badhiya. Kya kar rahe ho? Bataiye mujhe 5599 pe. And yes, aaj main hoon abhi se leke 3 baje tak bahut sari baatein karenge. Abhi shuruaat karenge ae khuda सलीम मर्चेंट की आवाज़ में. ये गाना है बहुत ही प्यारा है. और एक्चुअली मैं बताऊं तो मैंने जो इंडिया में बैंड था अभी भी है एक्चुअली, बट इट्स ऑन हाइबरनेट मोड, सो वी यूजली डोंट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर, बट यहाँ पे मेरा बैंड बन चुका है. सो ये गाना एक्चुअली मेरा पहला था जिस पे हमने जैमिंग करी थी और परफॉर्मेंस भी दी थी, और तब का ऑब्वियसली न्यू रिलीज था तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी आए थे. बट ये आप बताइए आपके, जब ऑब्वियसली If you are also interested in some kind of creativity, आप मुझे बता सकते हैं 5599 पे. Show me what you have done. I mean, not literally showing, but yes, आप मुझे call भी कर सकते हैं 0800-004-866 पे थोड़ी देर में. But homesick remedies के लिए भी आप मुझे text भेजिए. बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा miss करते हैं यहाँ पे. मैं अभी हाल फिलहाल कुछ भी मिस नहीं कर रहा हूँ. रीज़न इज पेरेंट्स आर हियर, तो जो चाहे मैं उन्हें बोल के बना सकता हूँ. यार मम्मी ने ना रोटी बनाई, ये तो यार मतलब मेरे को लगा कि मम्मी कैसे होगी, क्योंकि हमारे क्या कॉइल वाला है. इसके बारे में एक्चुअली थोड़ी देर में बात करता हूँ, पहले ये गाना एंजॉय करो, उसके बारे में लाइक यू नो हाउ वाज द एक्सपीरियंस और किस तरह से खाना बनाया बताऊंगा थोड़ी देर में. एंजॉय करो ए खुदा.
0: बचाओ क्या

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं ठीक 12 बजे से 3 बजे तक। मैं यहाँ पे हूँ और भी बहुत सारी बातें करनी है। होमसिक रेमेडीज, यूजुअली मैं लोगों से पूछता हूँ, कुछ मैसेजेस आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दैट मुझे अभी हाल फिलहाल कोई टेंशन नहीं है। आई मीन टेंशन एज इन मैं होमसिक रेमेडीज के लिए कुछ नहीं बता सकता। रीजन इज मॉम डैड यहाँ है, जो चाहे मैं बनवा सकता हूँ, चाहे गट्टे की सब्जी हो मेरी फेवरेट या फिर दाल ढोकली। ओहो, अभी तो बोल के ही मुंह में पानी आ गया। एंड देन यू नो पराठा, जो मम्मी पराठा, मैं उसी की बात कर रहा था। मुझे लगा कि जब इतने सालों से मैं यहाँ पे पका रहा हूँ रोटी चपाती जो भी है कुछ भी बना रही है, तो इट इज़ लाइक हमें वो चीज़ नहीं मिली। हमें इन द सेंस खुशबू हो सकता हो, क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो नॉस्टैल्जिक जो मेमोरी है वो डिफरेंट है कंपेयर टू माइंड। सो ऑफकोर्स मुझे वैसी रोटी नहीं मिली, लेकिन मम्मी आते ही यहाँ पे जो कॉयल है, कॉयल वाली हम यूज़ करते हैं, फ्लेम वाली नहीं है, तो ऑब्वियसली पहला दिन तो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन कल पराठा खाया गर्मा गर्म, ओहो नमकीन के साथ, हाय हाय क्या बताऊँ यार, मतलब सही में इतना गजब का टेस्ट था। और वही मेरे मतलब जैसे मैंने एक पहला निवाला लिया, एकदम से एक वो वीडियो इफेक्ट होता ना, जैसे सारे वो पुराने बचपन के ख्याल एकदम से वापस आ गए, एकदम फास्ट जूम इन जूम आउट वाले, मतलब इतना अमेजिंग टेस्ट था, अमेजिंग टेस्ट था। कुछ ऐसी चीज़ हुई आपके साथ भी लाइक विच यू वुड लाइक टू शेयर विद मी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0800-004-866 पे, और यहाँ पे आप बताइए कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने ऑब्वियसली जब आपके पेरेंट्स यहाँ पे आए थे और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बताई। नो मैटर आप भी बना सकते हो, बट जब वो आए थे यहाँ पे और उन्होंने वही चीज़ बनाई, इट वॉज अ डिफरेंट फीलिंग। आप मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे और शेयर करिए आपकी बातें। एंड यस, कुछ मैसेजेस, मीनवाइल मुझे कॉल आता है, मैं मैसेजेस पढ़ लेता हूँ। प्रिया का मैसेज आया है, वो कहती है आई मिस माय ग्रैंड मदर्स मैंगो पिकल, आई कैन बाइट हियर एज वेल बट इट नेवर टेस्ट लाइक हर्स। वही जो मैंने अभी चीज़ बोली थी, मुझे याद नहीं एक्चुअली। हाँ यार, ये मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट, मैंने अपनी नानी के हाथ के राबड़ी ज़रूर पिए। हाउ मैनी ओवर हियर नोर वॉट इज राबड़ी, नॉट रबड़ी, राबड़ी। कोई अगर है यहाँ पे जो समझता है राबड़ी क्या होती है, आई एम प्रीटी श्योर जो राजस्थानी है स्पेशली साउथ राजस्थानी, वो ज़रूर समझ लेंगे राबड़ी क्या होता है। इट इज़ लाइक कॉर्न, मतलब लस्सी टाइप होता है, सॉल्टी सॉल्टेड लस्सी। इजी में मैं अगर यहाँ के हिसाब से बताऊँ ना, सॉल्टेड लस्सी होती है पतली वाली, पतली थोड़ी थिक होती है, और उसमें कॉर्न्स डलते हैं, और वो कॉर्न्स को मैं खाता था। आय हाय हाय हाय हाय, दिन के 3-4 मैं बड़े बड़े कटोरी भर भर के खाता था। सो दैट इज़ वन थिंग, बट आई डोंट रिमेंबर मेरी दादी ने कुछ बनाया था। ऑब्वियसली मैं इतना ज़्यादा मतलब मेरी दादी और मेरे में जो गैप था वो बहुत ही ज़्यादा था। विकास का भी मैसेज आया, आई हैव बीन मिसिंग दोज लेट नाइट फैमिली चैट्स इन फीजी, वी कुड सिट डाउन आउटसाइड फॉर आवर्स जस्ट टॉकिंग। यहाँ पे अभी ये नहीं कर सकते, ठंड है ना इसलिए और ऊपर से बारिश भी है, बट गर्मी आ जाए फिर डेफिनेटली आप यहाँ पे भी करिए। कुछ फैमिलीज आप फ्रेंड्स बनाइए, उनकी फैमिलीज होगी, फिर देन यू कैन कंटिन्यू। स्पेशली अगर आप फीजी के कुछ फ्रेंड्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं कनेक्ट तो हो गई। साथ में नेहा, उन्होंने भी आखिरी मैसेज किया है, When I feel homesick, I play old Bollywood songs while cooking it. It always felt lift my mood up. That is so true. गाने ऐसी चीज है जो सचमुच आपका मूड जो है काफी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एज इन लाइक मेरे हिसाब से काफी जो टेंशन होती है वो सक कर लेते हैं। सो इट इज ऑल ऑन देम नाउ, सो दैट इज वॉट द म्यूजिक डज टू मी। एंड सेम थिंग, मैं टेंशन होती है या फिर कुछ नहीं होता तो मैं गेम खेलने लग जाता हूँ। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच आई डू अ लॉट वेन आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेरी ओके। कॉल आता है यार, कॉल नहीं आया, कोई बात नहीं, एक मैसेज आया वो भी पढ़ लेते हैं। वेन आई एम सिक आई ऑलवेज वेंट टू ईट फूड मेड ओनली बाय माई मम, कैन बी एनी थिंग ओनली शी हैज टू मेक इट, गुड टू हियर यू बैक केतन एली, ये मैसेज भेजा है। थैंक यू सो मच एली। एंड यस, इट टोटली मेक सेंस, बट यस एंजॉय करिए, थोड़ी देर में और लेके आता हूँ। बट यस, ऑफिस शार्ट आउट के लिए भी आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का।
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स।
3: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
4: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
3: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
5: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
1: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
9: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
10: The Thomasons sit down to do advertising for Thomason Does Advertising.
11: Here you go.
12: Thank you.
13: I reckon we should do some advertising.
12: Great. I like doing advertising.
13: I love doing advertising.
12: What about?
13: Thomason Does Advertising.
12: And what should it say?
13: Thomason Does Advertising.
12: Nice. I like that. Anything else? Should we say we do good advertising?
13: Nah, keep it simple, I reckon.
14: Thomason Does Advertising.
15: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
2: हम फीजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फीजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
3: Jen didn't think she needed a DVS system.
4: Oh, I've got insulation in that.
3: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
4: Ah, yeah.
3: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply. Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion और precious metals की value जब all time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disaster से protected रहें. जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind. ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.go.nz. That's commonwealthvault.go.nz.
6: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
7: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88-600.
8: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.

0: पास गूंजेगी।
1: चटनी शॉट्स,
2: चटनी शॉट के सेगमेंट में स्वागत है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं फट से लेटेस्ट खबर। लेटेस्ट खबर ये है जो थोड़ा कंसर्न वाली बात है। कंसर्न एज इन नॉट टू मेक यू अफ्रेड बट जस्ट टू मेक यू प्रिपेयर फॉर यू नो इफ यू आर ट्रेवलिंग टू साउथ और इफ यू ऑलरेडी इन साउथ। जो आप हम सुन रहे हैं, साउथ आइलैंड में एक मेजर विंटर स्टॉर्म आ रहा है जो कि वेस्ट कोस्ट में कुछ एरियाज में 500 mm तक हेवी रेन फोरकास्ट है, जिसकी वजह से रिवर्स जो है उसमें फ्लडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। मीनवाइल कैनबरी और ओटैगो के इनलैंड एरियाज में हैवी स्नोफॉल एक्सपेक्ट की जा रही है। इससे हाईवेज और माउंटेन रोड्स पर ट्रैवल डिफिकल्ट या रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो वेस्ट कोस्ट में एक्सट्रीम रेन्स और इनलैंड साउथ आइलैंड में हैवी स्नो, दोनों कंडीशन की वजह से ट्रैवल करने वालों को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। और लेटेस्ट वेदर और फोरकास्ट के अपडेट्स भी आप जानकारी रखते रहिए। स्पेशली अगर आप हमें सुनेंगे तो हम डेफिनेटली हर आर आपको सुनाते ही हैं कि क्या वेदर के अपडेट्स हैं, सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग द वेदर।
3: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: स्वागत करते हैं फिर से आपका लंच बॉक्स शो में. वैसे यस यार, खत्म हो से पहले मैं आपके आपसे एक सवाल करना चाहता हूं. यहां पे एक मूवी का डायलॉग मैं दूंगा आपको और आपको गेस करना है. वेल एक्चुअली इस मूवी डायलॉग का मतलब मूवी का नाम मेरे को भी नहीं पता है. मेरे को ये पता है ऑब्वियसली, मेरे को दिख रहा है इसलिए, बट मूवी कौन सी है ये मुझे नहीं पता. और मतलब मैं एक्टिंग देख रहा हूँ इन जनाब की, क्यों मतलब नो डाउट अमेजिंग है आज के टाइम पे ऑफकोर्स, बट यस आप मुझे बताइए 5599 पे कि मूवी का जो डायलॉग है वो किसने बोला और किसके लिए बोल रहा है. लाइक बीच में एक कैमियो भी होता है किसी का, तो वो कौन थी फीमेल वॉइस, मेल और फीमेल वॉइस किसकी है और कौन सी फिल्म का ये डायलॉग है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता. चलिए ये इसको ड्रॉप डाउन करते हैं वॉल्यूम को, एंड देयर यू गो.
3: ठीक है तेरे को जाना है तो जा, लेकिन देखना मैं भी ना खाना खाऊंगा ना वर्जिश करूंगा और कोई गंदी सी लड़की देख के उससे शादी कर लूंगा. बहन जी
4: क्या है?
3: आप मुझसे शादी करेंगी?
4: जी नेवर.
3: राज ठीक है.
2: मैं क्यों ये बोला, बिकॉज ऑब्वियसली ये मूवी का मेरे को पता नहीं कौन सी मूवी का है ये, तो आप मुझे बताइए 5599 पे. साथ में एक चीज आपने नोटिस करी है, इसमें ये जनाब कह रहे हैं किसी भी गंदी लड़की को देख के मैं शादी कर लूंगा, और उसी टाइम जो फीमेल एक्ट्रेस है बहुत बड़ी स्टार है वो उनकी एंट्री होती है. सो वॉज इट कोइंसिडेंट या फिर पर्पसली ये बोला गया है, आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज, ये तब समझ में नहीं आई बट मैंने किसी रील में देखा था ना, वॉज लाइक रियली, मतलब किसी के कान भरने हो ना तो ये ऐसी बातें कर लो. बढ़िया, बताइए मुझे 5599 पे कौन सी फिल्म का एक गाना है और कौन दो ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम ये बोल रहे हैं. सो यस 5599 इज द नंबर जहां पे आप मुझे भेजेंगे.

0: विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja।
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
5: That is very that is a very acceleration.
4: That's a very acceleration. Yeah.
5: Amazing acceleration.
4: This is my fancy English. That's a very.
5: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चल जान लेते हैं। 17 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है और 11 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। आज का सनसेट होगा 5:56 पीएम पे, बट ओवरऑल दिन बहुत ही खूबसूरत है और काफी सनी रहने वाला है। 0% चांस है बारिश के।

Ashby. Kia ora, namaste, sat sri akaal, assalamu alaikum, welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Kedan. Well, yes, आप बने रहिए बिकॉज बहुत सारी बातें करने वाले हैं इस आर में भी. ये आर इसलिए भी स्पेशल है बिकॉज आप सभी को मौका देने वाला हूँ. कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ त्योहार आ रहे हैं, भारतीय त्योहार. अभी तो खैर इंटरनेशनल हो चुका है, यू नो, बिकॉज भारतीय

0: यू आर एवरीवेयर। सो जहां जहां वो गए हैं उन्होंने बरकरार रखा है अपना फेस्टिवल, अपना जो रूट्स हैं उसे बरकरार रखा है। इस वजह से कहूंगा कि इट इज नॉट जस्ट इंडियन फेस्टिवल बट इट इज काइंड ऑफ यू नो ग्रोइंग वेरी वेरी रैपिडली। सो यस, न्यूजीलैंड में भी मनाया जाता है, चाहे आप फिजी से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, जहां जहां पे भी यू नो पीपल हैव ट्रैवल्ड दे डू सेलिब्रेट इन अ वे। सो यस, आप आज वैसे रक्षाबंधन और फादर्स डे के सेलिब्रेशन के लिए आप बस बने रहिए, बिकॉज वो मैं आपको मौका देने वाला हूँ जहां पे हो सकता है आपको कॉल भी करना पड़े, आपको यू नो जो भी सवाल जवाब होते हैं उस पर आपको जवाब देने होंगे। जवाब देने पर आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और वो ड्रॉ में शामिल होने के बाद आपको जीतने का मौका मिल सकता है कैश प्राइज। कितना मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी के लिए एंजॉय करिए धूम मचाले अदिति सिंह शर्मा, धूम मचाले धूम। वैसे यस, लंच टाइम रेंट लाइन के लिए भी आप रेडी रहिए, उसके बारे में भी बात होगी थोड़ी देर में।
1: बचाओ क्या,

0: Get ready.
1: Passengers, stand by. The next hump boarding call could be your ticket to paradise. Listen out and get ready for your chance to win 2 return air tickets to Vanuatu and $1,000 spending money.
2: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
3: वेलकम बैक। वेल, ये जो सवाल है ये पूछा गया है मुझसे, तो मैंने कहा ये तो वैसे भी मैं कोइंसिडेंट था दैट इट इज राइट टाइम टू टॉक अबाउट दिस थिंग एज वेल। बहुत ही जल्द आपको हम बताने वाले हैं, बट येस, जस्ट टू कीप इन योर माइंड कि ये जो क्यू है ये आपको कभी भी सुनाई दे सकता है। जैसे ही आपको क्यू सुनाई देता है आपको फट से मुझे जवाब देना है। जी हाँ, 5599 पे, तो ये याद रखिए आप। बेसिकली यही है कि ये जो कोड वर्ड है ये कभी भी अनाउंस हो सकता है, और एज सुन एज आप ये सुनते हैं जो क्यू आएगा वो सुनते ही आपको फट से बता देना है। मैं कोड वर्ड कभी भी चला सकता हूँ, और आपको ऑफकोर्स जो म्यूजिक है वो जो टोन है वो भी आपको कभी भी सुनाई दे सकता है। सो मेक श्योर आप ध्यान से सुने, और जैसे ही आप सुनेंगे कोड वर्ड सुनते ही आपको फट से वो मुझे टेक्स्ट कर देना है 5599 पे BC लिख के। बेसिकली आप BC लिखेंगे तो आप भेज देंगे। कोड वर्ड तो मेरे ख्याल से एक ही है, देर इज नो सच डिफरेंस। अगर आपने जो सुना है वो वही है, सेम है, देर इज नो चेंज इन दैट। बट यस, द मेन थिंग इज जैसे ही आप वो ऑडियो म्यूजिक सुनेंगे, उस म्यूजिक को सुनते ही आपके पास 1 घंटा होगा, और उस 1 घंटे के अंदर अंदर आपको हमें BC लिख के टेक्स्ट भेज देना है 5599 पे, सो दैट आप ड्रॉ में शामिल हो जाएं। और उस ड्रॉ के जरिए अगर आपको मौका मिला, जीत गए, तो आपको 2 रिटर्न एयर टिकट मिलने वाले हैं Vanuatu with Solomon Airlines plus $1,000 spending money over there. क्या बात है, इतना बढ़िया मौका है आपके पास। सो कोड वर्ड की टेंशन ना लें आप, बस उस जैसे ही आपको ऑडियो सुनाई देता है, म्यूजिक सुनाई देता है, इस आर में कभी भी आ सकता है। सो मेक श्योर आप एक्टिव रहें और सुनते रहिए। बट यस, स्पेशल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस एज वेल, फ्लाइंग 4 टाइम्स ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू Vanuatu। विजिट फ्लाई सोलोमन। यस, टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
4: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
5: हम। We gotta go. Are you ready?
6: Come and take a trip with me.
1: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win 2 return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
2: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
7: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
8: For a limited time, ventilate 3 or more rooms in your home and you'll get 1 vent for free. That's right, 1 vent for free when you purchase a DVS home ventilation system. T's and C's apply.
9: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
10: Indelible Homes, your building expert.
11: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, Now they are. Someone's just eaten. And somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
12: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz
13: If you're at the fit-out stage of a build, Bunnings Trade is here to help. We've got what you need for your commercial and residential jobs with bathroom tapware, kitchens and appliances, and HVAC solutions. Call 0800 134 872 to get a quick quote today at Bunnings Trade.
14: Lunchbox with Ketan.
15: Mujhe pasand hai ladka.
14: Hum. Lunchtime Rant Line.
3: लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में स्वागत है ये रहा मैसेज जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है कहा है नेहा ने उन्होंने कहा है कि यस्टरडे उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ लंच किया था लंच प्लान किया था और सबने ग्रुप चैट में कंफर्म भी किया था सो बेसिकली देयर वाज अ ग्रुप जहां पे उन्होंने पूछा सबसे और सब ने कंफर्म भी किया एंड दैट्स वेयर दे डिसाइडेड सो शी गॉट रेडी ड्रोव ऑलमोस्ट 25 मिनट्स एंड रीच टू द रेस्टोरेंट जस्ट एज शी पार्क्ड वन फ्रेंड मैसेज राइट एग्जैक्टली द सेम टाइम जब जैसे उन्होंने पार्क किया मैसेज आता है बोलते हैं गाइज आई एम रियली सॉरी आई कैन मेक इट देन अनदर पर्सन कैंसिल टू नेहा सेज शी वॉज ऑलरेडी देयर सो शी डिसाइडेड टू हैव लंच बाय हरसेल्फ शी ऑर्डर्ड हर फेवरेट बटर चिकन पुट ऑन हर हेडफोन एंड एक्चुअली एंजॉयड सम पीसफुल अलोन टाइम बट हर रेंट वॉज सिंपल इफ यू नो यू कांट कम Please say it earlier. Don't cancel when someone has already left home. Mix, you know. मतलब नेहा जी जो आपने रिक्वेस्ट की वो तो ऑब्वियसली आपका टाइम बहुत मैटर करता है सो अदर पर्सन शुड थिंक ऑफ कि भाई कहीं प्लान अगर हो चुका है वो पहुंच चुके हैं एंड देन यू आर कैंसलिंग इट डजंट साउंड गुड बट ऑन अदर साइड फॉर नेहा ऑल्सो देयर इज अ thing which I would like to share here that ho sakta hai wo kuch aise situation mein bhi ho chuke ho jis wajah se unhone last moment mein cancel kiya ho dono ka cancel hua wo thoda sa obviously coincidence nahi ho sakta I mean like coincidence hi hai wo but it cannot be the same reason and yeah that's what my call is kya lagta hai aapko like koi hai yahan pe jo share karna chahta hai is pe tippni dena chahta hai ki last moment mein call last moment mein plan change karna में सारी की सारी गलती उन्हीं की होती है जो कैंसिल करता है या हो सकता है उनकी भी कुछ स्टोरी हो उनकी भी साइड की स्टोरी हो इस वजह से उनको मजबूरन करना पड़ता है व्हाट डू यू थिंक आप मुझे भेजिए 5599 पे
14: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेलकम बैक यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स Well, yes, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने वाइल्ड गोट्स और डियर को कंट्रोल करने के लिए $9.7 million का फंडिंग बूस्ट अनाउंस किया है जो नेक्स्ट 4 years में यूज होने वाला है इस फंडिंग का मेन एम होगा नेशनल पार्क्स और नेटिव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना क्योंकि वाइल्ड गोट्स और डियर प्लांट्स को डैमेज करते हैं और नेटिव इकोसिस्टम पर प्रेशर भी बढ़ता है ये प्रोग्राम फंगनुई काहुरंगी नेल्सन लेक्स वेस्ट लैंड और फ्योर्ड लैंड जैसे एरियाज में मॉनिटरिंग और पेस्ट कंट्रोल एफर्ट्स के को सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फंडिंग से एनिमल नंबर्स मॉनिटर्स करने गो डियर फ्री एरिया प्रोटेक्ट करने और कुछ पॉपुलेशंस को कंप्लीट रिमूव करने में हेल्प मिलेगी फार्मर्स भी इस अनाउंसमेंट को पॉजिटिव स्टेप मान रहे हैं क्योंकि पेस्ट कंट्रोल ऑलरेडी फार्मिंग सेक्टर्स को सिग्निफिकेंट को कॉस्ट दे रही है सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो गवर्नमेंट का गोल है वाइल्ड गोट्स और डियर को कंट्रोल करके न्यूजीलैंड की नेटिव नेचर और फार्मिंग को प्रोटेक्ट करना

0: वेल हलकट जवानी का तो पता नहीं, बट यस यहाँ पे मौका है आप सभी के पास, डैड्स के पास बहुत ही बढ़िया मौका है, डैड्स के बच्चों के पास भी बहुत बढ़िया मौका है। बट ऐसा नहीं कि अगर आप डैड नहीं है तो पार्ट नहीं ले सकते, या फिर अगर आप अपने डैड के लिए कर सकते हो ये सर डेफिनेटली। सो मैं एक सवाल आपको पूछने वाला हूँ, एक डेफिनेटली एक ऐसा सवाल जो यूजली आजकल की जनरेशन काफ़ी कर रही है। न्यूजीलैंड में आप हो तो मैं पूछना चाहूँगा, चिर मतलब क्या होता है? जी हाँ, चिर जो यहाँ पे बोलते हैं CHURR, वो उसका मतलब क्या होता है? आप अभी मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे, और डजंट मैटर कि आप डैडी हो, यू नो उनकी वाइफ भी कॉल कर सकती हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स दे कैन गिफ्ट इट समथिंग प्रिपरेशन फॉर, बट आई वुड रिकमेंड कि डैड ही कॉल करें बिकॉज उनके पास हाई चांस होगा जीतने का। सो यस ऑल द डैड्स आउट देयर, फोन उठाओ मुझे कॉल करो और बताओ चुर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे न्यूजीलैंड में काफी लोग यूज करते हैं। सो यस 0800-004-866 पे आप कॉल करिए और मुझे बताइए इसका सही जवाब। आपका नाम जो है ड्रॉ में शामिल हो जाएगा और उस ड्रॉ के जरिए 4 सितंबर को डिस्क्लोज होगा और आप जीत सकते हैं $500 कैश। वाओ क्या बात है, अमीर बनना है ना तो जल्दी से फोन करिए। वैसे एक और मौका है आप सभी के लिए, जो बच्चा पार्टी है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है। क्या करना है, आपके डैड का एक फोटो लेके AI जनरेटेड सुपर हीरो बनाना है। एक्चुअली क्या करते हैं, पहले फोन उठा लेते हैं एंड लेट्स सी क्या बोलते हैं वो। हेलो
1: हेलो जी, कैसा?
0: एकदम बढ़िया, आप कैसे हो?
1: ठीक है जी।
0: किससे बात हो रही है?
1: सामी
0: राइट है
1: जी है।
0: चलो बताइए चुर का मतलब क्या होता है?
1: वो बोलते हैं जुलुम।
0: ओ, और जुलुम का मतलब क्या होता है हिंदी में? सब सही है,
1: सब सही है।
0: हाँ सही बोला ना मैंने?
1: इज गुड, एकदम सही बोला,
0: परफेक्ट।
1: कैविटिंग बोलते हैं, फिजियन ने बोलते हैं वन नाबू।
0: अरे वाह, ये किसको बोलते हैं वननाबू?
1: ये फिजियन में बोलते हैं।
0: नहीं मतलब
1: जुलुम।
0: अच्छा एकदम
1: बढ़िया वननाबू।
0: मैं अपने दोस्त को बोलूंगा, वो मुझे सुनता है तो मैं उसको बोलूंगा वननाबू। वो हमेशा पूछता है कैसा है भाई। थैंक यू सो मच।
1: बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया।
0: हां थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए। आप डेफिनेटली, आप वैसे आपके कितने बच्चे हैं? डू यू हैव किड्स?
1: यस, तीनों बड़े हैं।
0: अच्छा, वो यहीं पे न्यूजीलैंड में?
1: जी हाँ।
0: नाइस। तो उनको एक और चीज बोलना कि वो आपका फोटो लेके एक सुपर हीरो AI में कन्वर्ट कर ले और फिर उसे भी हमारे फेसबुक पेज पे जाए और वहाँ पे एक कंपटीशन हम रन करें फादर्स डे के ऊपर, तो वहाँ पे कमेंट में अगर डाल देंगे और वो ड्रॉ में अगर जीतते हैं तो $300 कैश वहाँ पे भी उनको मिलेगा। सो
1: वो तो कर देंगे,
0: बेस्ट है।
1: AI से डर लग रहा है यार।
0: नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप बस वो प्रॉम्प्ट ही डालना है। नहीं मतलब
1: सॉरी फॉर दैट, एनीवे आई एंजॉय योर
0: नो वरीज, थैंक यू सो मच, यू हैव अ लवली डे,
1: थैंक यू, बाय।
0: वेल खौफ तो होता ही है यार, ये AI इतना कुछ कर रहा है, बट यस अगर आप सही से यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को तो डेफिनेटली AI भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको काफ़ी कुछ चीज़ों में हेल्प करती है, आपके बिजनेस को लेकर, आपके पर्सनल कामों को लेकर, आपके असिस्टेंट बनाने को लेकर, ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से यूज़ करें तो डेफिनेटली। शुरुआत अच्छी नहीं गई थी, बट नाउ इट लुक्स लाइक इट इज मोर हेल्पिंग टूवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑल। बट यस अगेन, जस्ट टू लेटिंग यू नो, आप अपने पापा का फोटो लेके उसको AI जनरेटेड सुपर हीरो बना दीजिए, और अगर नहीं भी है उनको कहो कि फैंसी ड्रेस में कपड़े पहन के सुपर हीरो बन जाओ, फिर वो फोटो में डालता हूँ वहाँ पे, और फिर वहाँ पे डालने के बाद अगर आपका नाम निकलता है तो $300 जीतने का मौका मिल सकता है आपको, है ना? चलिए शुरू हो जाइए।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
4: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा
4: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती।
4: फातिहा।
2: बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
4: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
6: हेलो एवरीबॉडी।
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
8: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. TC's fees and credit criteria apply.
9: Flooring Extra. Adore your floor.
10: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge 10kg front loader and heat pump dryer, slick grey set, $11.99. Huge black stainless steel side-by-side fridge freezers, $6.99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
9: TradeDepot.co.nz.
11: It's McHappy season. Get your McHappy cookies from Macca's. Just $3.50. All proceeds go towards keeping families together at Ronald McDonald House Charities. T's and C's apply.
12: When India comes to town, Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Cricket Nation ke pre-sale mein shamil ho. NZC.nz pe aur apne tickets sabse pehle book karo. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps vs India.
13: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविस हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
14: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है। टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स, स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश, मयं पाला, कियारा अडवाणी, तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी।
15: हेलो डैडी।
14: टॉक्सिक रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 26th August.
16: It's time. I'm coming.
14: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC.
17: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
18: Lunchbox with Ketan.
19: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
18: इसके पीछे
2: हम।
17: Ladies and gentlemen. Okay.

0: Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: वेलकम बैक अक्षय खन्ना का महाकाली में शुक्राचार्य अवतार फाइनली सामने आ चुका है। फिल्म के फर्स्ट ग्लिम्स में वो असुरों के गुरु के पावरफुल रोल में नजर आ रहे हैं और धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म के बीच एक मैसिव कॉन्फ्लिक्ट का हिंट मिलता है। वैसे महाकाली प्रशांत वर्मा का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है और फिल्म 8 जनवरी 2027 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। अक्षय खन्ना का ये जो इंटेंस लुक है फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है।
2: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

ठटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गोते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा
1: yeah.
0: पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शकर शकर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker
1: yeah.
2: Heartbeat

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

0: आवाज गूंजेगी।
1: क्या ना नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और आप बस बने रहिए, बहुत सारी बातें करनी है। वैसे यस, इस साल में आपके लिए स्पोर्ट्स की खबरें भी लेके आऊँगा लेटेस्ट खबर के साथ साथ, और कुछ पॉडकास्ट भी रिलीज़ किया हमने रोवा पे, उसे भी आप सुनिएगा। बट कौन सा है उसके बारे में बात होगी, और रक्षाबंधन के लिए भी हम कुछ लेके आए हैं आप सभी के लिए। सो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करिए हमारा शो लंच बॉक्स शो अंटिल 3।
2: बचाओ क्या,

0: Well, अभी के लिए इस खबर ये है कि ऑकलैंड पुलिस ने वन ऑफ द लार्जेस्ट एलिजिड वियतनामीज कैनबीज सिंडिकेट्स को शट डाउन किया है. ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने ऑकलैंड में 19 रेड्स किए और 12 लोग अरेस्ट भी हुए हैं. पुलिस के मुताबिक सिंडिकेट ऑकलैंड में कैनबीज ग्रो हाउसेस को सप्लाई करता था. रेड्स में अराउंड 1.25 मिलियन वर्थ ऑफ कैनबीज ग्रोइंग इक्विपमेंट और $80,000 कैश सीज किया गया है. मेसी की एक प्रॉपर्टी से करीबन 35 किलोग्राम कैनबीज, एमडीएमए पिल्स, एक पिस्टल और एमिनेशन भी रिकवर किया है. एलिजिट 36 ईयर ओल्ड किंग पिन पर ऑर्गेनाइज क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग रिलेटेड चार्जेस भी लगे हैं. पुलिस ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन 10 महीने तक चली और फोकस सिर्फ ग्रो हाउसेस पर नहीं बल्कि पूरे क्रिमिनल नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने पर था. इस वजह से इतना टाइम लगा. वेल, यस, सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ऑकलैंड में एक मेजर एलिजिड ड्रग नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ा क्रैकडाउन किया है जिसमें 12 लोग अरेस्ट हुए हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ इक्विपमेंट सीज की गई है. लंच बॉक्स विद केतन. हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की.
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल.
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश.
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300. डैड को रेडी करो, खुश करो.
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, BFSL प्रोवाइडिंग the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
3: We're recruiting for New Zealand's most important jobs. And chances are, you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
4: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
5: Hi, Kevin Eder here, TradeStaff. Everyone knows that TradeStaff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. TradeStaff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz.
6: TradeStaff, industrial employment solutions. TradeStaff.
7: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi, $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Centre, Auckland.
8: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
9: Yeah, but nothing quite reaches my standard.
8: Well,
9: within my budget?
8: Zillow.
9: Zillow?
8: Zillow by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes from 1 to 4 bedrooms with 1 or 2 bathrooms, all packed with premium inclusions.
9: Price?
8: $139,000 for a fully complete 1-bedroom home and $215,000 for a 3-bedroom home.
9: Zillow. I like the sound of that.
8: Discover the Zillow difference at zello.co.nz.

0: लंच बॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: स्किप या रीप्ले।
3: चलिए बात करते हैं स्पोर्ट्स की। अभी मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस श्रीलंका। दूसरा दिन हो चुका है खत्म दूसरे टेस्ट का, और पहले ही 1-0 से बढ़त है भारत के पास। और अभी हाल फिलहाल कल बैटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। देवदत्त पाडिकल ने लगातार तीसरा ये शतक है। पहला शतक उन्होंने प्रैक्टिस मैच में लगाया था अगेंस्ट श्रीलंका, एंड देन उन्होंने पहले टेस्ट मैच में भी लगाया और अभी फिर से उन्होंने लगाया है। सो लुकिंग सो ग्रेट। एंड दूसरी तरफ ध्रुव जुरेल ने भी शतक मारा है, 115 रन बनाए और उन्होंने वो नॉट आउट रहे हैं, दो छक्के भी मारे हैं। काफ़ी यू नो आर्मी फैमिली से तो काफ़ी डिसिप्लिन्ड खिलाड़ी हैं ये, काफ़ी डिसिप्लिन्ड खिलाड़ी। इससे पहले डिसिप्लिन मुझे लगे थे चेतेश्वर पुजारा, जी हाँ काफ़ी पूजनीय उनके यू नो इरादे थे, एंड यू नो ऑलवेज ही यूज टू कीप ऑल द स्टैचूज ऑफ भगवान जिन्हें भी वो फॉलो करते थे। बट यस, ऑन अदर साइड श्रीलंका की भी इनिंग जो है बहुत ही अच्छी नहीं रही है। 8 रन पे 2 विकेट खो चुकी है। उन्होंने नाइट वॉचमैन भेजा था बट वो भी अपने आप को बचा नहीं पाया और 2 विकेट उड़ चुके थे बिफोर द स्टंप। सो आज तीसरा दिन है, देखना होगा कैसा रहता है। वेल श्रीलंका गोना गो अंडर और डू यू थिंक दैट वो कम बैक करके काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देगी। सो ये तो था इंडिया वर्सेस श्रीलंका का। बट और भी मैचेस है जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, जिनमें आज एक मैच आज नहीं एक्चुअली कल परसों के दिन मेन क्रिकेट में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का भी शुरू हो जाएगा अगला सेकेंड टेस्ट मैच, वो आप एंजॉय कर सकते हैं। और वुमेन की अगर बात करें तो कल टर्की वर्सेज ऑस्ट्रिया एंड रोमानिया वर्सेज आइल ऑफ मैन के बीच में मैच है, तो उसे आप एंजॉय कर सकते हैं।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

फादर्स डे के साथ साथ रक्षाबंधन भी यहाँ पे आ रहा है, तो यस उसके लिए भी काफी एक्टिविटीज हमने क्रिएट की है। आप एक कॉम्पिटिशन, एक नहीं दो कॉम्पिटिशन में यहाँ पे पार्ट ले सकते हैं। पहला पार्ट तो ये है कि आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं 5599 और बता सकते हैं आपको अपने सिबलिंग को रिव्यू देना है। पहला तो ये रिव्यू होना चाहिए उसमें दैट इज शी और ही इज द बेस्ट और द वर्स्ट। सेकेंड इज जब वो आपसे कुछ लेते थे तो वो वापस लौटाते थे या नहीं। थर्ड इज ऑलवेज गेटिंग यू इन ट्रबल, इज इट ट्रू और नॉट। बींग योर बिगेस्ट सपोर्टर, इज इट यस और नो। आई नो यस ही होने वाला है। और अनॉइंग 24/7, जी हाँ। तो ये इस पे रेट करके, रिव्यू करके मुझे आप 5599 पे भेज दीजिए, बिकॉज जैसे आप भेजेंगे अपने नाम के साथ और अपने सिबलिंग का नाम भी रखना है यहाँ पे, तो आप ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं और जीत सकते हैं, एक नहीं दो लोग जीत सकते हैं $250 कैश। जी हाँ, विनर विल बी अनाउंस्ड ऑन 28th of August। तो ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास, जल्दी से फ़ोन उठाइए और मुझे भेज दीजिए इन पांच चीज़ों के लिए। योर सिबलिंग इज बेस्ट और द वर्स्ट, आई नो इट गोना बी बेस्ट ओनली। Borrowing your stuff without asking, is that true or no? Always sitting, getting you into trouble, yes or no? Being your biggest supporter, yes or no? Annoying you 24/7, yes or no? So ye aap mujhe bhej dijiye 5599 pe. But yes, saath mein aap hamare Facebook page pe bhi jaiye, wahan pe apne sibling ko tag kariye aur ek badhiya sa message likhiye us memory object ka jisko aap use kar sakte. For example, मैं और मेरी सिस्टर के बीच में एक कैसेट्स के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, लाइक यू नो मैं अपना गाना सुनूंगा, मैं इनका गाना सुनूंगा, तो ऐसे करके हम लड़ाते थे। अब मेरी टर्न है, क्योंकि वन साइडेड मेरे फेवरेट थे तो दूसरे साइडेड, इफ़ यू रिमेंबर दो पुराने टाइम पे जो कैसेट्स आते थे जिसके अंदर एक रील होती थी, तो उसको उसके दोनों साइड्स होते थे, इस साइड में अलग गाने चलते थे और दूसरी तरफ में यू नो यू कैन जस्ट फ्लिप इट, सो दिस इज़ हाउ दे यूज़ टू कवर। सो यस, ये उसके बारे में मैं लिख सकता हूँ वहाँ पे। वैसे ही अगर आपके और आपके सिबलिंग के बीच में भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है तो उसके बारे में आप फोटो खींचिए और वहाँ पे रख दीजिए। फोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, AI से बना सकते हैं, आजकल तो सब कुछ पॉसिबल है। और एक बढ़िया सा 2-3 सेंटेंस लिख दो वहाँ पे, अपनी अपने सिबलिंग को टैग करना ना भूलिएगा, और उसी के साथ आप ड्रॉ में शामिल हो सकते हो और जीत सकते हो $300, जिसका डिस्क्लोज भी होगा ऑन द सेम डे ऑन 28th of August।

0: चलिए पॉडकास्ट की एक बात करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एडल्ट होना जरूरी है, ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और जवाब भी मैं दे देता हूं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुस्बे के लेटेस्ट एपिसोड में मिलते हैं युवराज सिंह से। ये क्रिकेटर युवराज सिंह नहीं है, आई विश वो होते हैं, बट ये उनसे भी मान हस्ती होने वाले हैं इन फ्यूचर। बिकॉज जो ई एक्सप्लोर नाम के स्टूडेंट रन बिजनेस का पार्ट है और ये स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड के यंग एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर स्कीम्स YES में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ई एक्सप्लोर ने एक इनोवेटिव कार्ड गेम क्रिएट किया है जो लोकल्स और टूरिस्ट को ले न्यूजीलैंड के हिडन जेम्स और लेजेंड नोन डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने के लिए इंकरेज करता है। गेम के थ्रू प्लेयर्स को डिफरेंट प्लेसेस की स्टोरीज, कल्चर और अट्रैक्शंस के बारे में भी पता चलता है। और आइडिया ये है कि पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ स्मॉलर डेस्टिनेशन को भी सपोर्ट किया जाए। इस एपिसोड में स्टूडेंट्स की जर्नी डिस्कस होती है, आइडिया से लेकर प्रोडक्ट बनाने, कस्टमर्स को समझने और बिजनेस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यस, अगर आप फुल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमें ड्राइव लिखिए और भेज दीजिए 5599 पे, आप तक लिंक पहुंच जाएगी। या अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुस्बे को रोवा या स्पॉटिफाई पे भी आप सर्च कर सकते हैं।
1: मुझे पसंद है लड़का। Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो।
3: ये गलत बोल दिया यार।
2: और पहनता भी नहीं उसको।
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी। अभी ब्रांड हो गया ना।
2: रुस्बे के बाल लगे उस।
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
5: At Bunnings, we've got Father's Day sorted. Jumbuck 3-piece barbecue tool set, only $10.20. Trojan 33-piece keyring compact toolkit, just $45.98. Make Dad's Day at Bunnings. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
6: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
7: White separated. Pockets checked. Cold wash. Gentle cycle. Powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Tūriki. All Together Auckland.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
9: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert. Indelible Homes.
10: Non-stop Bollywood.
11: हम
10: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। लंच बॉक्स विद केतन।
12: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
10: इसके पीछे
11: हम
10: दिल से दिल तक।
13: अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Attention everyone. हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर.
3: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
2: क्या आप

0: That unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
1: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
2: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. Labor is throwing its support behind the government's social media bill but thinks it can be improved. The party will back the bill through its first reading. Leader Chris Hipkins wants it sent to a select committee before the election. Councils will have until 2029 to implement a new rates cap if legislation goes through. The government is proposing a target range of 2 to 4%. Local Government Minister Simon Watts says the select committee process will be a must.
3: We don't see that there is a need to be doing a shortened process. This is a new area of policy in New Zealand. We don't have an existing precedent.
2: It's feared fuel costs will plunge the Pacific into further crisis. Child Fund New Zealand is warning of critical supply delays that will compound when El Nino brings an increased risk of cyclones. CEO Josie Pagani says it's far worse than here.
4: It's not just at the pump, it's at the kitchen table. It's supplies of bottled water where there may be issues around contamination with natural water by salt.
2: 11 Vietnamese nationals have been deported following a major cannabis grow house bust. Police say they've shut down one of the largest syndicates allegedly operating the sites across Auckland. To sport, the exodus of top-level netballers to Australia continues, 3 today. Mid-quarter Kimi Orapoi has joined the Queensland Firebirds. Defender Karis Stith has signed with the Melbourne Vixens. Amelia Walmsley confirmed she's leaving the Northern Stars. And what a moment for New Zealand's Erin Routliffe and her English partner in the first round of the mixed doubles at the US Tennis Open. They will play Serena Williams and Carlos Alcaraz.
1: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
5: मौसम के हालचाल मेड सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 14.9 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम आज का ऑलमोस्ट फाइन है, थोड़ा सा क्लाउडी रात को रहने वाला है. सनसेट आज का 5:56 पर.
1: The beat of Bollywood.
6: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
1: Coffee break with Sandy.
5: 3:02 हो चुके हैं और वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेकर 4 तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे रहने वाला है कॉफी ब्रेक में. और 4 के बाद मेरा साथ यहाँ पे रुजबे के साथ हो जाएगा इन द ड्राइव शो. सो कैसे हैं आप और आपका वीकेंड कैसा गया? वेल, वीकेंड के बाद आज मेरी आपसे मुलाकात हो रही है तो ऑफकोर्स इसलिए वीकेंड के बारे में मैं आपसे पूछूंगी. हाउ वॉज योर वीकेंड? क्या बिंज वॉच आपने किया? बाय द वे, मैंने कॉकटेल 2 मूवी देखी ओवर द वीकेंड. सो कॉकटेल 2 मूवी जब आई थी सिनेमाज में, उस समय पर मैंने बहुत बैड रिव्यू सुने थे इस मूवी के बारे में कि हिम्मत ही नहीं पड़ी जाके देखने के लिए. इसीलिए कहते हैं कि यार रिव्यूज़ के ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. ये वारापन 2 देख के भी रियलाइज़ हुआ था. खैर बढ़िया, कॉकटेल 2 इज़ एक्चुअली नॉट बैड मूवी. इतनी कोई बुरी मूवी नहीं थी. इट वॉज अ गुड वन टाइम फन वॉच आई विल से. सो आपको कैसी लगी अगर आपने कॉकटेल 2 देखी है? बिकॉज अभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर यह मूवी आ चुकी है. वॉज ओके काइंड ऑफ मूवी, देख सकते हैं फन के लिए. कृति सैनन इसमें बहुत अच्छी लग रही है एक्चुअली में. टोटल चेंज लग रही है इसमें. बढ़िया, शाहिद कपूर का थोड़ा था फनी काइंड ऑफ रोल था. मतलब मुझे ऐसा लगा कि कहानी में कुछ ऐसा यू नो ट्विस्ट आएगा कि शाहिद कपूर को सब पता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. मतलब या बाकी अब देखेंगे, बट इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी. अगर आपने नहीं देखी है, ट्रेलर से खैर पता चलता ही है, बट वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आपने कोई मूवी देखी, आप भी इसके बारे में शेयर कर सकते हैं. दिस अनदर मूवी जो मैंने देखी है उसके बारे में भी बताऊंगी विदाउट टेलिंग मच थोड़ी देर में.

0: कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं, 3:12 हो चुके हैं। एंड वैसे न्यूज पढ़ रही थी अबाउट इस बार जो वेदर में चेंज होने वाला है, वैसे भी अभी कुछ ही दिन बाकी है, 6 more days टू गो एंड देन स्प्रिंग की ऑफिशियली एंट्री यहाँ पे हो जाएगी न्यूजीलैंड में। मतलब जब ठंड बढ़नी शुरू हुई है तो स्प्रिंग आनी शुरू होने वाली है, बट इट्स गोना बी ब्यूटीफुल वेदर कमिंग स्प्रिंग। लेकिन या सो स्प्रिंग के बारे में बात करते हैं तो आने वाली बात में समर के बारे में भी बात करते हैं, बिकॉज एक आर्टिकल आया है न्यूज़पेपर में अबाउट रिकॉर्ड ब्रेकिंग एल नीनो। सो एल नीनो जो है ये एक मेजर वेदर डिस्ट्रप्शन लेके आने वाली है दिस कमिंग समर। इट हैपन्स जब पैसिफिक ओशन बिकम्स अनयूजुअली वार्म एंड ये इफेक्ट होता है वेदर पैटर्न्स में अराउंड द वर्ल्ड। सो न्यूजीलैंड में इसका मतलब क्या हो सकता है कि स्ट्रॉन्गर वेस्टर्ली विंड्स रहेंगी, ड्रायर कंडीशंस रहेंगे ईस्ट की ओर, स्पेशली इन द प्लेसेस लाइक कैंटरबरी एंड हॉक्स बे। मोर रेन रहेगी वेस्ट कोस्ट में एंड ड्राउट एंड वाइल्ड फायर का भी रिस्क हो सकता है कुछ रीजन्स में, दो इसका जो बड़ा रिस्क है, रिस्क फैक्टर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। हाउएवर जो फैक्ट्स है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे एवरी टाइम एंड द लोकल वेदर पैटर्न्स कैन स्टिल वेरी, बट या इट कैन कंट्रीब्यूट टू लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सट्रीम हीट एंड रिकॉर्ड ग्लोबल टेम्परेचर्स होंगे, हैवी रेन, फ्लडिंग इन सम कंट्रीज, सो चेंजेस टू स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन पैटर्न्स भी होने वाले हैं इसकी वजह से, एंड प्रेशर रहेगा एग्रीकल्चर एंड ऑफकोर्स फूड प्रोडक्शन के ऊपर। Now, why this El Niño is a big deal? Because scientists concerned hai ki ocean temperatures, they are reaching exceptionally high levels. So, jab ye combine hota hai with human-caused climate change, to isse global temperature push hota hai aur extreme weather jo hai, ye ho jata hai even further. So, yeah, aise situations ye aane wali summer mein ho sakti hai. But let's see, it can still vary though. यू नो समर या स्प्रिंग के बारे में भी अगर बात की जाए तो वैसे तो ऑफिशियली समर स्प्रिंग जो है ये 1 September से शुरू होने वाली है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल की हिसाब से देखा जाए न्यूजीलैंड में तो स्प्रिंग 23 September से शुरू होती है। सो फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग जो है वैसे 1 September से है, यूज बाय साइंटिस्ट एंड रिकॉर्ड कीपर्स, बिकॉज इससे जो साल है ये 3 months में ब्लॉक में डिवाइड हो जाता है, दो बाकी हमने हेमिस्फेयर में देखा है 4 blocks होते हैं, यहाँ पे 3 blocks है। रेनी सीजन है बिकॉज रेनी विंटर के साथ कंबाइंड ही है, लेकिन यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल स्प्रिंग को भी काफ़ी माना जाता है। इसे रॉयल एस्ट्रोनॉमी जो है सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड, इन्होंने इसको बनाया जहाँ पे जो सेप्टेम्बर 23 September से एक्चुअली में जो स्प्रिंग है शुरू होती है। वेल होते होते स्प्रिंग को मेरे को लगता है कि 23 September लग ही जाता है, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि ठंड इतनी जल्दी कम होने वाली है 1 September तक। सो 23 September से ही वैसे स्प्रिंग हमें देखने को मिलेगी।
1: Attention please, we are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win to return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
2: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
3: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.

0: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
1: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
2: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
4: अब हमारा क्या होगा?
5: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
3: तो क्या करें?
6: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
7: डॉक्टर ने क्या बोला?
8: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
7: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
9: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक। हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अशोर वन। माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड।
10: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे, कॉल अशोर वन ऑन 0800-77-HEERA, दैट्स HIRA, और विजिट ashore1.co.nz। नॉर्थ एंडल एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अशोर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर।

324 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुकी है. वेल दिस अनदर मूवी. अगर आपको थ्रिलर मूवीज काफी पसंद है, क्राइम थ्रिलर मूवीज अगर आपको पसंद है, दिस इज वन मूवी यू कैन वॉच. 2021 की अमेरिकन मूवी है जिसका नाम है द लिटिल थिंग्स. इट्स एक्चुअली नाइस मूवी. डेंजल वॉशिंगटन की ये मूवी है. डेंजल वॉशिंगटन की कोई भी मूवी अगर आप उठा के देखेंगे, यू गोना एक्चुअली लाइक द मूवी. यू नो, कुछ एक्टर्स होते हैं जिनकी मूवीज के साथ आप गलत नहीं जा सकते हैं. सो या उनकी ये मूवी है जिसमें दो डिटेक्टिव्स की कहानी है. तो कहीं ना कहीं पे दोनों डिटेक्टिव जब साथ में मिलके एक केस के ऊपर काम करते हैं तो कोशिश करते हैं इन्वेस्टिगेट करने की स्ट्रिंग ऑफ मर्डर्स, जिससे वो एक बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन में आ जाते हैं. तो दैट्स अ स्टोरी लाइन. एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो अगर आपने OTT प्लेटफॉर्म पे है, ये नेटफ्लिक्स पे एक्चुअली में है द लिटिल थिंग्स, अगर आपका कभी मन करे क्राइम थ्रिलर मूवी देखने का. बट दिस इज़ मोर काइंड ऑफ यू नो, जैसे थोड़ी स्लो है. आई विल से कि कईयों को एकदम वो थ्रिलर पसंद होती है कि यू नो बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो रहा है. धुरंधर टाइप नहीं है थ्रिलर ये. थोड़ी स्लो है, ईजी गोइंग है ये, दैट काइंड ऑफ, बिकॉज इन्वेस्टिगेटर्स है, काम कर रहे हैं. सो उस वे से इस मूवी को दिखाया गया है. सो या यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक दिस मूवी. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस आपको कोई इतना पसंद है कि आप उनका कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी मूवी उठा के देखते हो एंड यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दैट पर्सन? वो डायरेक्टर भी हो सकते हैं, वो एक्टर हो सकते हैं, वो एक्ट्रेस हो सकती है, प्रोड्यूसर हो सकते हैं, एनीवन. हु इज़ दैट वन पर्सन कि जिसकी मूवी ना आप, मतलब मूवी आई एंड यू आर लाइक कि यार इस पर्सन की तो मूवी देखनी देखनी है, ट्रेलर भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं है. हु इज़ दैट पर्सन फॉर यू? 5599 पर मैसेज करके आप यहाँ पे बता सकते हैं, या फिर कॉल करके 0800 00 हम पर. वो बॉलीवुड के भी कोई हो सकते हैं, हॉलीवुड के हो सकते हैं, एनीवन. कि अगर ये इस मूवी में आ रहे हैं तो यार, या फिर अगर आप यू नो ऐसा स्क्रॉल कर रहे हो, आपने उनका नाम देखा कि कास्टिंग में इनका नाम है इस पर्सन का, यू आर लाइक यार इसकी मूवी तो देख ही सकते हैं. कैन नेवर गो रॉन्ग. सो हु इज़ दैट कैन नेवर गो रॉन्ग पर्सन फॉर यू इन द मूवीज़? 5599 इज द नंबर जहाँ पे मैसेज करके आप शेयर कर सकते हैं.

मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ऐसे कौन से एक्टर या फिर फिल्म मेकर है जिनकी कोई भी मूवी उठा के आप देख सकते हैं कि आपको ट्रेलर देखने की भी जरूरत नहीं है, कि यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दिस पर्सन. काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर आए हैं. मैट डैमन में मेरे पास आंसर आया है. एक्चुअली मुझे भी उनकी मूवीज़ काफ़ी पसंद है. उनकी एक मूवी है गुडविल हंटिंग, क्या कमाल की मूवी बनी है यार. सो अगर गाइज आप ना एक ऐसी कोई मोटिवेशन भी चाहते हैं ना लाइफ में, रॉबिन विलियम्स है इस मूवी में, बेन अफ्लेक भी है बाय द वे इस मूवी में बैटमैन. सो ये मूवी भी आप कभी भी उठा के दे सकते हैं. बहुत ही अच्छे वे से इस मूवी को दिखाया गया है और एक पर्सन के अंदर कैसे एक ट्रॉमा बैठा होता है और किस वे से वो ट्रॉमा बाहर निकल के आता है एक मेल के अंदर से, वो इस मूवी में बताया गया है. बहुत अच्छी मूवी है. मेरे पास दो लोगों ने, आरती का और एक ने नाम नहीं लिखा है, उन्होंने जेसन स्टैटम का नाम लिखा है जिन्होंने जिनको हमने ट्रांसपोर्टर सीरीज़ में देखा है. एक्शन थ्रिलर मूवीज़ में एक्चुअली में हमने इनको काफ़ी देखा है. सो यस, ये बैंकेबल स्टार है बाय द वे. सो इनका नाम काफ़ी लोगों ने लिखा है. आमिर खान का मेरे पास नाम आया है, नसीरुद्दीन शाह का मेरे पास नाम आया है कि कोई भी मूवी वो नसीरुद्दीन शाह की एक्चुअली में देख सकते हैं. वेल आप भी शेयर कर सकते हैं ज़रूर यहाँ पे 5599 पर.

0: The OG song of Bombay Rockers आप यहाँ पे सुन रहे थे, जिसका रीमेक हमने धुरंधर मूवी में देखा है। वैसे बाबू राम ने बोला है फैमिली मैन मनोज बाजपाई, वेल ये वो कभी भी देख सकते हैं, उनको बेस्ट सीरीज लगती है। एंड हम बोर्डिंग कॉल के बारे में आपको बता देती हूँ, अगर आपने मिस आउट किया है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन में कन्फ्यूजन भी है तो कन्फ्यूजन आपकी यहाँ पे दूर कर देती हूँ। इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कैसे करना है, सो यू कैन एक्चुअली विन 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनाटो विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी भी आपके नाम हो सकती है। सो होगा क्या, यहाँ पे हम स्पेशल बोर्डिंग कॉल जो है ये आपके लिए प्ले होने वाला है 4 आवर्स में। सो बिटवीन 8 AM टू 9 AM होगा, देन बिटवीन 11 AM टू 12 PM, देन 1 PM टू 2 PM के बीच में, 5 PM टू 6 PM के बीच में। ना ये हमने आवर्स आपको बता दिए हैं, इतना काम आपका आसान कर दिया है, लेकिन स्पेसिफिकली किस टाइम पे प्ले होने वाला है ये हम आपको नहीं बता रहे हैं। उस समय पर बस आपको सुनते रहना है, ध्यान से सुनते रहना है। तो आपके लिए जैसे स्पेशल बोर्डिंग कॉल प्ले होगी तो उस समय पर आपको करना क्या है, और स्पेशल बोर्डिंग कॉल कैसे प्ले होती है ये मैं आपको एक बार सुना देती हूँ। ये जस्ट आपको सुना रही हूँ अभी।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: to Solomon Airlines.
1: So, इसमें बताया गया है, you know, एक तो प्रोमो चलता है, ये प्रोमो नहीं है. इसमें बताया गया है कि इट इज़ रेडी टू बोर्ड नाउ. जैसे आप फ्लाइट में जाने लगते हैं, रेडी टू बोर्ड की जो यू नो अनाउंसमेंट होती है, ये वैसी काइंड ऑफ अनाउंसमेंट है. और इसमें बोला गया है कि गो टू रोवा ऐप एंड एंटर बोर्ड नाउ. तो उस समय पर आपको क्या करना है, जैसे ये प्ले होगा आज 5 बजे के बाद, तो आपको क्या करना है, हमारे रोवा ऐप पे जाना है. वहाँ पे ये कॉम्पिटिशन पेज है जिसका नाम है हम बोर्डिंग कॉल. वहाँ पे 5 PM के आगे आपको बोर्ड नाउ लिख के, एक ही कोड वर्ड है, कोड वर्ड चेंज नहीं होता है, कोड वर्ड एक ही है, बोर्ड नाउ BORD SPACE NOW. सिर्फ ये आपको लिखना है एंड क्लिक करना है सबमिट, दैट्स इट. और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे टू रिटर्न एयर टिकट्स प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी आपके नाम हो सकता है. नाउ अगर आपको ढूंढना नहीं है जाके कि कॉम्पिटिशन पेज लिंक कहाँ पे है, तो BC लिख के भेज डालिए 5599 पर, आपके पास कॉम्पिटिशन पेज लिंक भी आ जाएगा. इतना भी आपके लिए आसान कर दिया है. सो जस्ट टाइप BC ऑन 5599 एज इन बोर्डिंग कॉल एंड ऑटो रिप्लाई में आपको लिंक मिल जाएगा. So remember, इस वे से आपको इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है.
2: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
4: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में दिस ब्यूटीफुल ट्रैक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आप यहाँ पे सुन रहे थे. एंड बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हमने आपके लिए लॉन्च किए हैं. फादर्स डे आने वाला है तो हमारे फेसबुक पेज पे जाके आप एक बहुत ही यू नो इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. AI का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है. एंड कई बार होता है कि बहुत सारी इमेजेस फोटोज AI पे जाते हैं, वहाँ पे हम बना लेते हैं. काम भी बहुत इजी कर लिया हमने अपना. लेकिन ये जो कंपटीशन है ये आपका यही काम टेस्ट करने वाला है. सो आपको करना क्या है, आप अपने डैड को एज अ सुपर हीरो अगर देखते हैं तो कैसे सुपर हीरो आप देखते हैं. मे बी आपके डैड मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, मतलब कोई ट्रेड की जॉब कर रहा है, कोई ड्राइविंग की जॉब कर रहा है, कोई ऑफिस की जॉब कर रहा है, अगर वो साथ में ग्रॉसरीज भी कर रहे हैं. यू नो द पर्सन इज़ डूइंग मल्टीपल जॉब्स. बस यही मल्टीपल जॉब्स को लेके आपको अपने डैड को एक सुपर हीरो की इमेज देनी है एंड पोस्ट करना है हमारे फेसबुक पेज पे जाके कमेंट सेक्शन में. तो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे, हम 104.2 FM फेसबुक पेज का नाम है, वहाँ पे पिन पोस्ट है फादर्स डे की और वो फोटो देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा बिकॉज वो फोटो भी हमने AI के ज़रिए ही बनाई है आपको आइडिया देने के लिए. सो वो AI फोटो देख के आपको पता चलेगा कि कैसी फ़ोटो आपको बनानी है. वहाँ पे कमेंट सेक्शन जो है वहाँ पे जाके बस आपको वो जो फ़ोटो है ये पोस्ट करनी है, दैट्स इट. और आपका नाम जो है ये इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा. $300 कैश अपने डैड के लिए आप वहाँ पे जीत सकते हैं. सो रिमेंबर कमेंट सेक्शन में जब आप पोस्ट करो तो अगर आपके डैड सोशल मीडिया पे है तो उनको ज़रूर टैग करें ताकि वो देखे कि आपकी AI की नज़र से वो कैसे दिखाई देते हैं. सो वो आप ज़रूर करना वहाँ पे एंड मेक श्योर कि आप हमका फेसबुक पेज फॉलो ज़रूर कर रहे हैं. यू लाइकिंग द कॉम्पिटिशन पोस्ट एज वेल, यू आर नॉट जस्ट गोइंग एंड पार्टिसिपेटिंग ओवर देयर. तो वो भी आपके लिए करना ज़रूरी है. बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसी पोस्ट पर आपको मिल जाएगी.
1: इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स।
2: Ladies and gentlemen,
3: unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: anywhere you get your podcast.
1: Hum, accurate traffic.
2: Simplicity means lower KiwiSaver fees.
3: Cloudy overnight for Auckland, a low of 11 on the northern from Town to Constellation Drive. Half an hour to Silverdale, 45 minutes. On the northwestern, heavy from Waterview to Rosebank to Massey, 22 minutes. On the southern from Town to Manukau, 34 minutes an hour to Drury. It's heavy heading north, Ellerslie-Panmure to Market Road and south from Broadway to Green Lane. And the southwestern is slow from Puhinui to the southern.
2: Keep more of your money with Simplicity, the low-fee, non-profit KiwiSaver provider.
4: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
5: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें.
4: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
5: पर डेवलपमेंट के पैसे
4: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
6: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का. आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के.
8: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ. हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
9: The Thomasons sit down to do advertising for Thomason Does Advertising.
10: Here you go.
11: Thank you.
12: I reckon we should do some advertising.
11: Great. I like doing advertising.
12: I love doing advertising.
11: What about?
12: Thomason Does Advertising.
11: And what should it say?
12: Thomason Does Advertising.
11: Nice. I like that. Anything else? Should we say we do good advertising?
12: Nah, keep it simple, I reckon.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल आज काफी कमाल, ब्यूटीफुल डे इन आवर सुपर सिटी. फील्स लाइक 15 डिग्रीज. ओवरनाइट टेम्परेचर विल बी एज लो एज 10 डिग्रीज टुनाइट. वेस्टर्लीज का साथ रहेगा, एक हाथ चांस ऑफ शावर हो सकता है. 5:56 को आज होगा सनसेट. कल का दिन भी मिला जुला सा रहने वाला है. ब्यूटीफुल डेज इन ऑकलैंड कमिंग अहेड.
2: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe.
0: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: 4:03. Good afternoon, Drive Show में स्वागत है आपका. Hi Sandy, welcome back.
4: Hi Rusbe, good afternoon. कैसे हो तुम?
1: Good afternoon, मैं बढ़िया हूँ. Sandy, आप कैसे हो?
4: एकदम first class.
1: How was your Monday?
4: Monday was good.
1: Good, nice. You recovered yourself properly?
4: Yeah, 100%. 100%
1: बोल रहे हो?
4: Yeah.
1: क्या बात है यार, that's very good. No, we are very happy.
4: How was your weekend?
1: My weekend was great, yeah. Weekend was great, Monday was even better.
4: Obviously.
1: Yeah, it was nice.
4: Okay. So,
1: आपको पता है मैंने ट्रेंड मेकर्स में क्या किया कल?
4: मैंने देखा तुमने रेनी सॉन्ग्स बजाए.
1: मैं कोशिश कर रहा था सारे सावन वाले गाने बजाओ, बट आई डिडंट हैव माय डाउनलोडर हियर ना, जो सारे गाने डाउनलोड कर सके.
4: सो सावन वाले पूरे गाने नहीं प्ले
1: हुए? सारे सावन वाले नहीं हुए, बीच में इधर उधर थोड़े अलग टाइप के भी प्ले हो गए.
4: वही मैं देख रही थी कि ये सारे बारिश वाले गानों के बीच में देखो ना क्या कर रहा है.
1: हाँ, वो क्योंकि देखो ना इज ऑल्सो विंटर सॉन्ग ना, विंटर थीम था कल का. एंड बाय बाय टू विंटर, बाय बाय टू विंटर, ऐसा बाय बाय टू मॉनसून पीरियड.
4: एक्चुअली में तुमने न्यूजीलैंड का वेदर किया, क्योंकि न्यूजीलैंड में विंटर रेनी ही सेम.
1: वही एग्जैक्टली, तो न्यूजीलैंड में कर रहा हूँ ना मैं शो.
4: सही है,
1: क्या बोलूँ मैं आपको भी. एनीवे, आज बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान आउट की है, जैसे कि फादर्स डे कंपटीशन होने वाला है आज आपके लिए,
4: रक्षाबंधन का कंपटीशन भी अभी भी ऑन है, जिसका ड्रॉ इसी वीकेंड पे, इसी वीक में होने वाला है, नॉट वीकेंड,
1: रक्षाबंधन का कंपटीशन
4: उसका ड्रॉ भी होने वाला है.
1: हाँ, फ्राइडे को हो रहा है ना.
4: या,
1: और फादर्स डे अगले फ्राइडे हो रहा है.
4: वो अगले फ्राइडे. क्या बात है, अपडेटेड हो.
1: I'm full updated यार सैंडी. प्लीज डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन ब्रॉडकास्टर.
5: Say what?

0: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: Your vehicle is already out there every day. The question is, what is it saying about your business? With a Speedy Signs rep, your car, van or truck becomes a rolling ad seen by thousands. One upfront investment, years of exposure. Why let that space go to waste when it could be bringing in new inquiries? Turn every trip into brand awareness. Give Speedy Signs a call or visit speedysigns.co.nz to get your vehicle signage sorted and grow your business faster.
3: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
4: At Spotlight, save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester home decor, fabric, craft, knitting yarn, party curtains and blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full price products. Excludes clearance. See website for details.
5: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like Coca-Cola 330 ml cans 30-pack, just $23.99 a pack. And Purina One Dry Cat Food 1.4 to 1.5 kg, just $18.79 each. That's the fresh food feeling. T's and C's apply.
6: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
7: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
8: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
8: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
9: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI।
10: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
11: मुझे भी।
10: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
0: Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe.
1: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
12: Super Se Upar ये शो जारी है आपके लिए। 4:15 हो चुके हैं अभी और क्या हो रहा है हमारे सुपर सिटी में इसके अपडेट्स।
13: सुपर सिटी की बात करते हैं तो रुजबेक हेडलाइन आई है कि ऑकलैंडर्स मे पे $7 अ ट्रिप, कंजेशन चार्ज ऑप्शंस रिवील्ड।
12: वो चालू कब हो रहा है लेकिन, हो गया क्या चालू?
13: सो ऑकलैंड काउंसिल्स जो है विल टुडे कंफर्म 3 ऑप्शंस फॉर चार्जिंग कम्यूटर्स टू ड्राइव इन एंड आउट ऑफ द सिटी ड्यूरिंग द पीक टाइम्स।
12: Yeah.
13: So one option jo tha was to charge commuters entering the city center during the rush hour, while another included city fringe suburb jaise ki Newmarket hai, Newton hai and possibly Ponsonby and Parnell as well. Third option jo hai isme include hoga core motorways such as Harbour Bridge to Point Chev and Mount Wellington. So yeah.
12: Interesting.
13: West Auckland mein In West Auckland, that means कि जो नॉर्थ वेस्टर्न बस वे है विल नीड टू बी कमिटेड टू बाय द गवर्नमेंट जस्ट बिकॉज पीपल नीड प्रॉपर अल्टरनेटिव्स।
12: हाँ, वहाँ पे है नहीं ना प्रॉपरली।
13: या
12: इट्स अ ट्रिकी वन यार।
13: So, ये three proposals
12: हैं। आप तो बच गए हो ये सब चीजों से।
13: या मैं रश आवर में नहीं होता है।
12: हाँ ना, वही तो। मजे ही मजे है आपके।
13: मजे ही मजे। सो लेकिन अभी क्या है ना कि मेरे को लगता है कि अभी लोगों के टाइमिंग्स इतने फ्लेक्सीबल हो चुके हैं, हाइब्रिड सिस्टम भी है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स भी हो चुके हैं हर एक काम पे, तो उसके हिसाब से काफ़ी लोगों का हो सकता है वेरी करे. व्हाट अबाउट यू, आपके वर्किंग आवर्स क्या है, आज हमें ये जानना है.
12: क्या आपके पास भी फ्लेक्सिबिलिटी है टू वर्क लाइक यू नो, या आपको कंजेशन टाइम पे ही जाना पड़ता है. मैं तो फंस गया हूँ ये चीजों में. कंजेशन टाइम पे मेरा तो
13: ऑप्शंस आर कंफर्म्ड बाय द ट्रांसपोर्ट. तो इनिशियल पब्लिक कंसल्टेशन जो है वो शुरू होगी मिड नवंबर में, बिफोर ऑप्शन इज डिसाइडेड इन 2027. अभी 2027 में होगी. सो काउंसिल डॉक्यूमेंट्स जो है ये डिस्क्राइब करते हैं कि सिटी सेंटर ऑप्शन जो है ये फेयरेस्ट सिंपलेस्ट एंड लाइकली फिजिबल है.
12: 2028 में जाके इंप्लीमेंट होने वाला है यार.
13: या
12: तो वो ये ना उस टाइम
13: सो पहले डिसाइड होगा 2027 में, देन आगे जाके इंप्लीमेंट होगा.
12: या सो इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट वन. उससे पहले गुड न्यूज ये है ना कि सीआरएल खुलने वाला है.
13: ओ सिटी रेल लिंक कब है?
12: सिटी रेल लिंक अभी सितंबर में, 12 सितंबर या कभी ऐसे तो भी उसका डे. मैं ओपनिंग में गया था सैंडी वीकेंड पे.
13: ओके.
12: जो एक स्टेशन है नाम लेना बहुत मुश्किल है बट आना चाहिए.
13: या इट वाज क्वाइट डीजे था वहां पे राइट.
12: ट्रेन के अंदर था वो डीजे.
13: ट्रेन के अंदर डीजे था.
12: स्टोरी देखी ना
13: मैंने? स्टोरी देखी इससे पता चला मुझे.
12: डीजे बाहर भी था. वो हाईलाइट नहीं है, स्टेशन हाईलाइट है सैंडी.
13: ऑलराइट.
12: हां नहीं अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही ऐसा बढ़िया.
13: मुझे पता नहीं था कि ट्रेन है. आई जस्ट थॉट कि तुम किसी जगह पे गए हो जो ट्रेन जैसे बनी हुई है.
12: ओ आपको ऐसा लगा? अच्छा.
13: मुझे ऐसा लगा टू बी ऑनेस्ट. बट नाइस, अगर अच्छा बनाया है.
12: मैं उसमें भी गया था, वहाँ पे वो लोग ने ऑप्शन दिया था वो अंदर वो बोगी में जाके, मतलब ट्रेन जहाँ से ड्राइवर बैठता है ना ट्रेन का, तो वो सब पूरा सिस्टम समझा के क्या सिस्टम होता है क्या नहीं.
13: तो नेक्स्ट अप्लाई कर सकते हो करियर.
12: नहीं उसका क्वालिफिकेशन होता है मुझे ऐसा लग रहा है.
13: एनीवे सो अगर ये होते हैं तो चार्जेस ऑप्शंस वुड बी अराउंड $3 to $4 इन द मॉर्निंग पीक एंड $2 to $3 इन द आफ्टरनून पीक. इस वजह से आपके तकरीबन $7 बनने वाले हैं एक दिन के.
12: देखो ड्राइव शो सस्ता ही है इसलिए मैं ड्राइव शो कर रहा हूँ, मैं सस्ता इंसान हूँ.
14: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड. गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ. मैं लाऊं अपना ए गेम. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: with Sandy and Rusbe. Brought to you by Beds R Us Monaco and Phuket-Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Phuket-Koi.
1: Attention everyone, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग है हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
1: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
1: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
0: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर। Accurate traffic.
3: Queen Anne chocolates for Father's Day.
4: Cloudy overnight for Auckland, a low of 11. On the northern, it's heavy heading north through Esmond Road. The northwestern just low through Rosebank to Massey from town, 29 minutes. On the southern to Manukau, 39 minutes. Drury in hour 4. Heavy heading north from Ellerslie Panmure to Green Lane and south from Green Lane to East Tamaki Road. Southwestern slow heading south from Puhinui Road to the southern.
3: Any dad would love a Queen Anne chocolate treat. Find Queen Anne at your local supermarket.
5: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है।
7: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
5: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
8: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
9: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
10: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है, सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
9: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए, मेरे दोस्त ने भी की थी। अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
10: पर डेवलपमेंट के पैसे
9: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
11: NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800 4 NZPMI।
12: 2 PM call out, we're on your way. Heading back to the office? We're on your way there too. Commute to site? Yep, you guessed it, we're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
13: Score more Smeg with Smeg bonus stickers at New World North Island. Get Nature's Fresh Muffin Splits 6-pack, $3.99 each. Or Cadbury and More Chocolate Blocks, $6.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
14: Mike here from Novus Glass. When this happens,
15: Novus,
14: just contact your local Novus branch direct. We make it easy with the latest equipment, tested products and trained technicians. We'll even handle your insurance claim. Novus Glass also make it easy on the environment. We're proud to be pioneering windscreen recycling in New Zealand. Plus, for every repair or replacement, we make a donation towards planting native trees. Notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
16: Show us your crack.
17: Ah, Novus!
18: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry! Visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.

0: Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
2: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Super Se Upar ye show jari hai aur 4:30 baj chuke hai abhi. And abhi aapko mauka de rahe hai to participate in the Raksha Bandhan competition.
3: Yes, Raksha Bandhan ka competition do hai aapke liye. Ek hamare Facebook page par hai aur ek abhi aap yahan pe call kar payenge. Remember, isi Friday ko hum draw karne wale hain. फेसबुक पेज पे जाके करना क्या है रुजबे, बहुत सिंपल है. वहाँ पे एक ऐसी इमेज आपको ड्रॉप करनी है, एक रक्षाबंधन की पोस्ट हमने की है फेसबुक पेज पे, उसके कमेंट सेक्शन में पोस्ट एनीथिंग, कोई मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट जो आपको अपने भाई या बहन की याद दिलाता है, उनके बारे में कुछ लिखना है, उस मेमोरी अटैच के बारे में कुछ लिखना है. एंड टैग योर सिबलिंग, दैट्स इट. और आपका नाम इस ड्रॉ में जाएगा जहाँ पे $300 कैश आपके नाम हो सकता है. नो, यहाँ पे आपको क्या करना है, रेडियो पे
2: यहाँ पे आपको आपके सिबलिंग का परफॉर्मेंस रिव्यू करना है. एक कोई किस्सा आपके सिबलिंग के अराउंड आपको जो शेयर करना है यहाँ पे हमारे साथ, आप वो कर सकते हो. 0800-004-866 आप यहाँ पे कॉल करके आपका वो किस्सा शेयर कर सकते हो. एंड मैंने कल इसके बारे में बात की सैंडी कि इट इज़ अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं मतलब जब भी हम अभी मैं इंडिया से हूँ ना, इंडिया में इतना ईजी नहीं होता है रेडियो पे अपने सिबलिंग के बारे में बात करना है. इट्स वेरी डिफिकल्ट.
3: इट इज वेरी डिफिकल्ट.
2: सो यहाँ पे आप वो करके रिकॉर्ड करके देन यू कैन शेयर इट विद योर सिबलिंग के, देख भाई मैं तो तेरे बारे में रेडियो पे बात की.
3: और कमाल की बात ये है कि ये लिमिटेड नहीं है कि आपके सिबलिंग्स यहीं पे होने चाहिए.
2: या इट कुड बी एनीवेयर, दे कुड बी एनीवेयर एंड यू कुड टॉक अबाउट एनीथिंग, यू नो, यू कुड टॉक अबाउट वन मोमेंट दैट दे मेड यू फील वेरी स्पेशल, या उन्होंने आप की वाट लगा दी.
3: किसी भी वे से आप उसका देखो, रिव्यू जो है वो किसी भी वे पे जा सकता है. सो बेसिकली आपको परफॉर्मेंस रिव्यू देना है.
2: जी,
3: परफॉर्मेंस रिव्यू में आपको बस बेसिकली उनके साथ कोई ऐसी चीजें शेयर, उनके बारे में शेयर करनी है यहाँ पे कॉल करके.
2: 0800-004-866 नंबर है, यहाँ पे आप कॉल करें और शेयर करें. मीनवाइल हम इनसे बात करते हैं. हाय, स्वागत है आपका.
4: हेलो,
2: कैसे हो जी आप?
4: मैं अच्छी हूँ. मुझे लास्ट टाइम भी कॉल करके ना मेरे भाई की हरकतें बता रही थी. हाँ. तो कभी कभी ना मतलब अच्छा है,
2: कभी कभी अच्छा है,
4: पर वो कभी कभी नहीं,
2: कभी कभी भी नहीं अच्छा.
4: वंस इन अ वाइल
2: अच्छा है वो. अच्छा, ठीक है,
4: ये बचपन की बात है ना.
2: हाँ हाँ, अभी बिल्कुल भी नहीं अच्छा.
4: अभी तो बहुत अच्छा है,
2: अभी बहुत अच्छा,
4: अब तो बड़े हो गए, डिस्टेंस भी हो गया इतना, तो अभी इतना नहीं करता हुआ. पर वो मुझे बच्चों ने बहुत डराता था, हर एक बाप पे डराता था.
2: आपका बड़ा भाई कि छोटा भाई है?
4: मेरा बड़ा भाई है. छोटा भाई होता तो चप्पल लगा के चुप कर देती मैं उसको.
2: आप टीचर हो ना, ये अलाउड नहीं है सब करना इस कंट्री में.
4: घर में, अपने घर में अलाउड होता है, अपने घर में तो वो कुर्ता भी नहीं रहता है ना.
3: अच्छा, आपको बलविंदर सबसे पहला आपको रक्षाबंधन का गिफ्ट क्या मिला था, आपको याद है?
4: जब से हम लोग थोड़े बड़े हुए हैं तब से we don't do रक्षाबंधन गिफ्ट. वो गिफ्ट कभी भी आ सकता है, it's not just रक्षाबंधन.
2: क्या बात है.
3: नहीं, सबसे पहला आपको याद नहीं है?
4: नहीं, सबसे पहला मुझे याद नहीं है, पर एक वन ऑफ देम मुझे याद है. जब हम छोटे थे तो उसने मुझे 5 रुपए दिए थे.
2: वाओ,
3: नाइस.
4: वो 5 रुपए से हमने जाके क्या लिया था उस टाइम पे ना, नए तरह के हेयर बैंड आए थे, पीछे लास्टिक लगी होती थी उनके, तब वो न्यू आए थे. और वो था 5 रुपए के थे.
3: वाओ, तो मतलब अच्छा गिफ्ट मिला था.
4: वो और मैं गए, नहीं बताते उसकी बात भी, वो और मैं गए थे मार्केट, हम दोनों ही गए थे क्योंकि मम्मी ने तो नहीं लेके देना था ना कि 5 रुपए वेस्ट कर दिए. तो उसने मुझे लेके दिया और मैंने सिर्फ 2 ही बार डाला होगा और पीछे से लास्टिक टूट गया उसका. आई वाज लाइक, तभी मम्मी कहती है कि पैसा वेस्ट है चीजें. पर उसकी मैंने उसकी बातें बता रही थी एक दो.
2: हाँ हाँ, बताइए.
4: वो पता क्या करता था, वो ना मुझे डराता बहुत था भूतों से और किसी भी सिचुएशन से. तो वो क्या करता था, वो आगे होता था, मैं पीछे होती थी. कभी अगर हम रूम से निकल रहे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तो वो बोलता था मैं बड़ा हूँ पहले मैं जाऊंगा, है ना. तो वो आगे निकल के जल्दी से भाग के दरवाजा बंद कर देता था, कहता भूत आ गया तेरे पीछे। और मैं चीखे मार मार के रोती थी। जैसे मेरे नाना वगैरह गांव में रहते थे ना, मेरे दादा तो शहर में थे पर नाना गांव में थे। अच्छा, गांव में टॉयलेट्स वगैरह घर के अंदर नहीं होती है, मतलब पेरिफेरी में होती है पर कमरों से बाहर होती है, है ना, उस टाइप पे, बहुत पुरानी बात है ये। तो मैं बोलती थी कि मुझे बाथरूम जाना है, तो वो कहता था अच्छा मैं चलता हूँ ना। जब मैं बाथरूम जाना, मुझे छोड़ के भाग आता था, कहता मैं जा रहा हूँ, भूत आ गया। अरे बाबा,
2: बाप रे,
4: इतना डराता था, है ना। और यू नो उस टाइम पे जब मतलब गांव इतने एडवांस भी नहीं होते थे, मतलब 98 90s की बात बता रही हूँ आपको, इतनी लाइटें भी नहीं होती थी वहां पे, कमरों में होती थी और कमरों से लेके जो बाहर तक वॉशरूम का एरिया था, हार्डली किसी के यहाँ लाइट होती होगी।
2: और हमारे हाथ में फोन भी नहीं होता था कि हम फ्लैश लाइट ऑन कर दे।
4: फोन तो बिल्कुल भी नहीं, वो जमाना ही नहीं था फोन का,
2: वही तो,
4: बच्चों के लिए स्पेशली। अंधेरे में छोड़ के भागा था। अरे बाप रे। फिर अभी जब मैं न्यूजीलैंड आई थी ना, तो जैसे मेरा वीजा खत्म होने वाला था, तो मुझे डराता बहुत है, अभी भी वो डराता बहुत है सबको।
2: अच्छा,
4: जब मेरा वीजा खत्म होने वाला था, मुझे बोलता तूने वीजा डाल दिया? मैंने कहा नहीं, मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा सर्टिफिकेट आ जाए ग्रेजुएशन का ना। कहता है डाल दे, तेरे को पुलिस ने पकड़ लिया ना, अगर वो इंडिया में मूवीज ऐसी आती है ना कि फॉरेन में जेल में डाल दिया और आपको लॉयर नहीं मिल रहा है ना, कहता तुझे जेल में डाल देंगे, बैठी रहना फिर, ना तू किसी को जानती है, मुझे मत फोन करना। वैसे तो फोन भी कैसे ही करेगी, तुझे जेल से फोन ही क्यों करने देंगे इंडिया में ना। इतना डराता था ना वो, इतना डराता था। फिर उसके बाद ना मैं थोड़ा शुरू से ही ना थोड़ा मतलब हंसी मजाक केयरफुली टाइप की हूँ। टेंशन मुझे होती है, मैं फेस पे आता नहीं है मेरे को ना फेस पे।
2: वो इसलिए आपको टेंशन देता था ताकि आपको थोड़ा टेंशन आए जिंदगी में।
4: तो अभी ये सुनो क्या बोलता था, प्लस टू के बोर्ड एग्जाम होते हैं इंडिया में ना, और मेरा वो था पीसीबी था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ना, मुझे बोलता है पढ़ ले, फेल होगी ना बोर्ड एग्जाम में फिर तेरी हम शादी कर देंगे किसी पंचर बनाने वाले से।
3: लेकिन उसको ये बताया नहीं अभी तुमने परविंदर कि वो शायद हमसे भी ज्यादा कमाते हैं यहाँ पे अभी।
2: कौन, पंचर वाला?
4: तो ऐसे
3: मतलब
2: पॉइंट है, बढ़िया। परविंदर थैंक यू सो मच यार, आपके थैंक यू आपकी कॉल के लिए। हाँ बताइए,
4: पढ़ाई वढ़ाई वाली चीजें तो चलो ठीक है, पर जो नॉन पढ़ाई वाली चीजें ट्रेड जॉब टाइप, वो ज्यादा पैसे कमाते हैं, मैंने आपको
2: बताया। अच्छा लगा परविंदर आपसे बात करके, थैंक यू। आपका नाम ड्रॉ में शामिल कर दिया, दो बार दो एंट्री डाल दी आपके नाम के, क्योंकि आपने तीन कहानियां सुना दी ना हमें, तो बनता है दो दो बार आपका नाम देना। बस सभी ठीक है,
4: अरे अच्छा है,
2: क्या बात है, वेरी नाइस,
3: थैंक यू।
2: आपके भाई को आप जरूर भेजना कि आप कितनी बुराइयां कर रही है आपके भाई की, सुबह शाम कॉल करके रेडियो पे।
4: हाँ, ये बचपन के एक्सपीरियंस है, अभी के नहीं है।
2: अच्छा तो ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स। अच्छा चलो अभी गाना भी सुन लेते हैं, सोनू निगम की आवाज आपके लिए। यू आर लिसनिंग टू हम्पलिंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स, ड्राइव शो आपके लिए जारी है, फादर्स डे कॉम्पिटिशन भी है आपके लिए थोड़ी देर में, वो भी खेलेंगे आपके साथ। और याद रखिएगा, बोर्डिंग कॉल में कभी भी क्यों बच सकता है,
3: 5 बजे के बाद।

0: Yo, yo, Hani Singer का आप गाना सुन रहे थे only on हम playing Bollywood's biggest hits. वैसे Sandy आज Tuesday है और Tuesday का दिन मंगलवार काफी stressful होता है
1: क्योंकि आज character guest है और रुज़मी की turn है आज.
0: आज मेरी turn है character guest में.
1: Stressful तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए ना, stressful तो मेरे लिए होना चाहिए क्योंकि मुझे guess करना है.
0: पर पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया है कि मेरा इस segment, मैं बहुत excited था इस segment के लिए, हमेशा से बहुत होता था लेकिन
1: जब से आ रहे हो तुम, तुम्हारा ये हो गया कि भाई
0: हो गया है मेरे ऊपर. आज मुझे किसी की हेल्प चाहिए यहाँ पे. सैंडी अभी एक कॉल पे जाने वाली है थोड़ी देर में, तो
1: अगर कोई कॉल करता है यहाँ पे रुज़बे को हिंट देने के लिए कि यू नो ऑफ योर, अगर आप इसको सजेस्ट करना चाहते हैं किसके ऊपर कर, तो आई विल डेफिनेटली गो आउट द स्टूडियो एंड यू कैन लिसन द कॉल.
0: हाँ मतलब मैं
1: यू कैन लिसन टू द कॉल एंड आई विल जस्ट गो आउट from the studio and then आप डिस्कस कर लेना रुज़बे के साथ किसको कैरेक्टर गेस्ट में किसके ऊपर करना चाहिए.
0: या लेट्स टैग टीम टुडे.
1: या एनीवे वैसे बॉलीवुड के बारे में बातें करते हैं तो कुछ मूवीज भी आने वाली है. बाय द वे मैंने कॉकटेल 2 देखी लास्ट आवर में, इसके बारे में बात कर रही थी मैं. नॉट बैड मूवी एक्चुअली.
0: या एग्जैक्टली ना, मेरे को ऐसा लग रहा था.
1: मुझे मतलब जैसे जब उसके रिव्यूज आए जो उसके बारे में बोला गया मूवी के बारे में ऐसी नहीं थी.
0: बिकॉज द वे इट स्टार्टेड ना, मैंने ना मैं सिर्फ स्टार्ट देख पाया हूँ. द वे इट स्टार्टेड मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो मूवी.
1: तुमने अभी फिनिश नहीं की?
0: नहीं. और मैं मैंने कल शुरू किया वो देखना यार. आई रियली वांट टू नो यार ये मुसाफिर कैफे सुना है आपने इसके बारे में?
1: मैंने सुना, मैंने देखी नहीं है सीरीज अभी तक.
0: मेरा दोस्त बोला कि अरे बहुत बढ़िया है, ये है वो है,
1: मिक्स रिव्यूज है उसके.
0: मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या है, ये क्या बना है,
1: क्यों क्या है,
0: कुछ अलग ही है ये सैंडी.
1: मतलब इन अ गुड वे और बैड वे?
0: बैड वे. कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को तो. मतलब समझ नहीं आ रहा है, मतलब यार मैं आई कांट गेट माय हेड अराउंड द कांसेप्ट. तो
1: मैंने पढ़ा, मैंने देखी नहीं है सीरीज.
0: मैं बोल नहीं सकता हूं इसके बारे में क्योंकि स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा.
1: जितना मैंने पढ़ा है इट्स अबाउट चूजिंग अ करियर और लव, समथिंग लाइक दिस रिवॉल्व्स अराउंड दैट.
0: या बट वो जो स्टोरी वो लोग दिखा रहे हैं तो ये विक्रांत मैसी है ना, उसकी कोई आई थिंक दो है गर्लफ्रेंड्स ऐसा कुछ तो भी, एक थी बाद में एक है ऐसा कुछ तो भी. मैं अब तक उधर ही पहुंचा हूँ और मैं दिमाग ही नहीं मेरे को लगा पा रहा हूँ क्योंकि मैं वो देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रेड फ्लैग, ये तो रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग है. दिस इज नॉट रेड फ्लैग, दिस इज रेड फॉरेस्ट.
1: तुम्हें अलग बोलना चाहिए अभी, क्लॉक इट ब्लॉक इट.
0: हाँ वही ब्लॉक इट था वो पूरा सब कुछ. एंड देन या लाइक पता नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ कि ना बोलूँ क्योंकि क्योंकि वो फिर लोग देखने उनका वो हो जाएगा ना.
1: टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट क्लाइमेक्स
0: जो है, क्लाइमेक्स नहीं पहुंचा हूं मैं अब तक.
1: तो ट्रेलर में जितना है उतना तो बोल सकते हो ना.
0: ट्रेलर नहीं देखा मैंने ना, वही तो गलती हो गई ना मेरी. ट्रेलर देखा रहता तो शायद.
1: एंड नाउ यू हैव टू फिनिश द सीरीज.
0: I don't think so now I'm going to finish.
1: Okay, इतना invested नहीं हो तुम.
0: मतलब ठीक है, मतलब it's not picked up yet for me.
1: Okay,
0: maybe there's something nice out there. मतलब मैं शायद ये नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन वो जो जो हो रहा है उसके साथ जो वो कर रहा है
1: विक्रांत मैसी के character के साथ,
0: विक्रांत मैसी जो कर रहा है हो रहा है जो समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि वो क्या हो रहा है. Like it's too
1: same feeling right now.
0: same feeling नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ.
1: नहीं समझ में आ रहा है.
0: नहीं explain कर पा रहा हूँ मैं. Anyway आपको गाना सुनाते हूँ और फिर उसके बाद आपके लिए हम यहाँ पे लेकर आएंगे
1: कैरेक्टर
0: गेस्ट 5 बजे के बाद.
1: Remember 5 बजे के बाद हम बोर्डिंग कॉल भी आपके लिए कभी भी प्ले हो सकता है. मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करवा देती हूँ
0: प्लीज बताओ क्योंकि आज दोपहर को लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए.
1: सो हम बोर्डिंग कॉल में क्या होता है, यू कैन विन 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू 1 or 2 विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी. नो पार्टिसिपेट कैसे करना है, यहाँ पे एक स्पेशल बोर्डिंग कॉल प्ले होगी. यू नो जब आप फ्लाइट लेने लगते हो तो वहाँ पे बोर्डिंग कॉल प्ले होती है कि इट इज रेडी टू बोर्ड नाउ, आप आ जाइए. तो वैसे ही होगा, आपको बोला जाएगा कि रोवा ऐप पे चले जाओ, वहाँ पे बोर्ड नाउ लिख दो, सबमिट कर दो. ऐसा बोर्डिंग कॉल आपके लिए प्रॉपर प्ले होगा 5 बजे के बाद. 4 टाइमिंग्स पे होते हैं, बिटवीन 8 AM टू 9 AM, 11 AM टू 12 PM, 1 PM टू 2 PM एंड 5 PM टू 6 PM. इन चारों टाइमिंग्स के बीच में प्ले होता है, कभी भी हो सकता है, वो आपको फिगर आउट करना है. जैसे ही प्ले होगा रोवा ऐप पे जाइए, हमारा कॉम्पिटिशन पेज है हम बोर्डिंग कॉल, वहाँ पे 5 बजे के आगे, मतलब क्योंकि अब 5 बजे के बाद होगा, उसके आगे टाइप कर दो बोर्ड नाउ एंड क्लिक सबमिट. इतना आपको करना है. कॉम्पिटिशन पेज का लिंक अगर आपको चाहिए BC लिख के भेजो, एक ही वर्ड है BC 5599 पर आपको लिंक मिल जाएगा. सो रिमेंबर ये आपको करना है, इसका कोड वर्ड एक ही है, कभी चेंज नहीं होता है, इट्स सिंपल बोर्ड नाउ, दैट्स इट, बोर्ड स्पेस नाउ. So, hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu. Visit solomons.com. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-4624. First home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: Napier and Hastings, resulting in two arrests. To sport, Kiwi star Brandon Smith thinks Adi Savea is the perfect target for the PNG Chiefs. The new franchise is reportedly chasing the AB skipper for their NRL entry in 2028. Rugby league with Machinery House and a league of their own. And New Zealand's Erin Routliffe and her English partner face an all-star combination in the opening round of the mixed doubles at the US Tennis Open. On the other side of the net will be Serena Williams and Carlos Alcaraz.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
3: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
4: वेदर का हाल बहुत ही कमाल आज महसूस अभी आप कर रहे हैं 15 डिग्री 14.6 एक्चुअल टेम्परेचर एंड ओवरनाइट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी एज लो एज 10 डिग्रीज टुनाइट. एक हाथ शावर का चांस हो सकता है मतलब नहाने का नहीं शावर गिर सकता है एक वेस्टर्लीज का भी साथ होगा एंड 5:56 को होगा सनसेट.
1: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बे ब्रॉट टू यू बाय बेड्स अ रस मोनाको एंड पुकेकोई वेयर स्लीपी हेड कंफर्ट मीट्स एक्सेप्शनल वैल्यू बेड्स अ रस मोनाको एंड पुकेकोई. Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
5: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
4: Power Drive at 5. Good evening. 5:03 aur aapka swagat hai. Hi Sandy. How's it going?
6: Hi Rusbe, it is going good. तुम कैसे हो?
4: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ Sandy. अभी तक तो बीमार नहीं फील हो रहा है मेरे को. And I'm hoping that it continues this way.
6: Yeah, it will.
4: आज आप बीमार भी नहीं लग रहे हो वैसे. आपने ऐसी गुठली मारी कल.
6: बहुत ज़्यादा खांसी थी यार.
4: अच्छा. No, it's okay. It's good to have a break.
6: Yeah.
4: Very important. Anyway, बहुत सारी चीजें हमने की है. हमने एक एपिसोड रिलीज किया है recently. आज ही मतलब अभी करने वाले हम रिलीज. एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल एपिसोड बिकॉज एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे आई थी बनी थी न्यूजीलैंड में पंजाब टू आउतेरावा.
6: So, ये डॉक्यूमेंट्री जो यहाँ पे बनी दो लोगों ने मिलकर इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है
4: जी
6: लाइक प्रॉपर जो ग्राउंड वर्क है.
4: हाँ, देयर हैज बीन अ टीम इन्वॉल्वड बट जब हमने इनसे बात की ये जो दो लोग हैं इन्होंने लिटरली फ्रॉम द स्क्रिप्ट टू वीडियो टू एडिटिंग टू मीटिंग पीपल इंटरव्यूज करना सब कुछ करना सिर्फ दो लोगों ने मेनली सब किया है.
6: मतलब हिस्ट्री ना कि जब यहाँ पे कौन सबसे पहले यहाँ पे आया था लाइक इट इज 1840s में भी ये लोग गए मतलब 1840s के बारे में हम बात कर रहे हैं.
4: 1840s मतलब
6: वे बैक एंड उस समय के टाइमिंग पे यू नो यहाँ पे एक शादी होती है जहाँ पे बैंड बाजा बारात होता है न्यूजीलैंड की सड़कों में जब पूरा का पूरा टाउन बंद कर दिया जाता है बिकॉज बैंड बाजा बारात के साथ एक शादी हो रही है. ऐसी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे शेयर की है ऐसी हिस्ट्री यहाँ पे शेयर की है. मुझे लगता है कि ऐसी हिस्ट्री के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है.
4: सैंडी यू नो आई वॉज द लाइक मोस्ट अमेज्ड अबाउट कि कैसे एक रग्बी का स्टेडियम उसका नाम वॉज आफ्टर यू नो समवन फ्रॉम पंजाब
6: या समवन फ्रॉम इंडिया जिनके नाम पे स्टेडियम का नाम है रग्बी स्टेडियम का नाम है यहाँ पे
4: stand,
6: हमें पता ही नहीं स्टैंड है सॉरी नॉट स्टेडियम स्टैंड का नाम है और कितने लोगों को उसके बारे में पता है.
4: या
6: This is such a proud thing.
4: It's a very proud moment, yeah. And it just shows कि कितने involved थे community में because जो मतलब ये documentary में आपको दिखेगा पंजाब टू आउतेरावा आप इसको YouTube पे भी ढूंढ सकते हैं.
6: लेकिन इसके बाद जो podcast है ये must listen है because ये सारी बातें हमने share की है drive लिख के भेजेंगे तो फुल एपिसोड आपको मिलेगा.
4: हमने बात की है हरजोत सिंह जो प्रेजेंटर और रिसर्चर थे इसमें और गगन संधू जो डायरेक्टर एडिटर वीडियोग्राफर
6: एवरीथिंग
4: यू नो वन पर्सन आर्मी.
6: या सो इन्होंने काफी अनटोल्ड स्टोरीज शेयर की है इसमें करेज की सेक्रीफाइस की यू नो ऐसी स्टोरीज भी शेयर की है कि आपको गूज बम्प आ जाएंगे. मैंने शेयर अबाउट दैट पर्सन जो वापस जाना चाहते थे कभी जा नहीं पाए और कैसे गए वो. सो तो उनके बारे में इन्होंने शेयर किया एंड यू नो हमारे कह सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी के जो लोग इतने सालों सदियों पहले जो यहाँ पे पहुँचे थे कैसे शुरुआत की उन्होंने वहाँ पे यहाँ पे वो हिस्ट्री एक्चुअली

0: में निकाली है.
1: One other thing that Harjot also spoke about is that how every 100 years history repeats itself.
0: Yes.
1: And इसके बारे में बहुत ही एक मतलब और documentary में भी बहुत lovely way में उन्होंने उसको दिखाया है. So documentary definitely you should watch it if you haven't watched it. It's a beautiful masterpiece, I would say. And मेरे को honestly वो documentary देखने के बाद ऐसा लगा कि यार, you know, we need more such documentaries.
0: 100%. Like, और वो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं.
1: वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम तभी उनका मतलब you know रंग लाएगा अगर हम जो उन्होंने ऑलरेडी काम किया उसको जाकर सराहेंगे, उसको देखेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गो एंड वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री. इफ यू हैवंट वॉच्ड इट येट, यू शुड डेफिनेटली वॉच द डॉक्यूमेंट्री.
0: एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यू विल टेक अवे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट गाइस. सो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये डॉक्यूमेंट्री सुनना बहुत जरूरी है. इट्स इन हिंदी. एंड
1: कौन सी डॉक्यूमेंट्री?
0: सॉरी, डॉक्यूमेंट्री कह रही हूँ, ये पॉडकास्ट. पॉडकास्ट क्या, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की हमने. सो लेकिन इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने और रुजबे ने नोटिस किया ना, कि उस समय पर जब हमारी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आए थे, इंडियंस या साउथ एशियन कह लो कि जब यहाँ पे आए थे, वो बहुत इंक्लूसिव थे यहाँ पे कल्चर के साथ. सो दे वर वेरी इंक्लूसिव ऑफ एक्सेप्टिंग यहाँ का कल्चर. सो दे वर गिविंग बैक टू कम्युनिटी. इसलिए यहाँ की कम्युनिटी उनके लिए बहुत कर भी रही थी. लाइक यू नो, टाउन बंद कर दिया एक शादी के लिए.
1: दे वर नॉट ट्राइंग टू मेक न्यूजीलैंड इंडिया.
0: यस.
1: और यू नो एनी अदर place that they have come from, but they were making New Zealand their own.
0: Yeah.
1: And adding their color to it, their you know, and making it New Zealand basically.
0: मतलब कि घुल मिल गए साथ में एक ही कल्चर में, जहाँ पे अपने कल्चर को भी नहीं भूल ले और उस कल्चर को भी इम्ब्रेस किया. मेरे को लगता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अभी के टाइम पे थोड़ा मिस हो रहा है.
1: और ये शायद हमें भी इससे काफी सीखने की जरूरत है.
0: यू
1: नो हाउ वी कैन इंक्लूड मोर ऑफ द न्यूजीलैंड वे in broadcasting as well.
0: Yeah.
1: And how we can use maybe more Maori words in our presentation.
0: Yeah, जो कि यहाँ की language है उसको तो हम अभी तक proper way से accept भी नहीं कर पाए हैं.
1: Yeah, so
0: कितनों को आती है, वो बच्चों को फिर भी आती होगी because of school.
1: Yeah.
0: थोड़ी बहुत, लेकिन कितनों को ही आती है.
1: But I think it's important for us to also learn and you know adapt. And I think काफ़ी बार ये भी होता है ना, जब हम वापस जाते हैं जहाँ पे भी, जहाँ से भी हम आए हैं, हम जब वापस जाते हैं तो काफ़ी बार लोग भी बोलते हैं ना कि अरे क्या अलग क्या है मतलब.
0: Yeah.
1: And there should be something different ना, if you are going 17,000 kilometers away.
0: Yeah.
1: कुछ तो अलग भी होना चाहिए वहाँ से, कुछ अलग हमने वे ऑफ लिविंग होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे सब सेम ही है.
0: हाँ वही ना, ऐसा नहीं. अरे बाकी लैंग्वेजेस के बारे में भी तो हम बोलते हैं ना रुजबे, कि मैंने स्पेनिश सीखी है, मैंने फ्रेंच सीखी है, मैंने ये सीखी है. रैंडम लैंग्वेजेस के बारे में हम कई बार बात करते हैं. Then why not this? जहाँ पे रह रहे हैं हम.
1: So to listen to the episode, all what you need to do is message drive on 5599 and we will send you the link for the episode. और अगर आप रोवा पे जाते हो तो हमारा एक आर्टिकल है और रोवा के आर्टिकल के थ्रू आपको लिंक भी मिल जाएगा for the
0: video. मैं फेसबुक पर भी पोस्ट करने वाली हूँ, रोवा पे, स्पॉटिफाई पे, हर जगह पे ये लिंक आपको मिल जाएगा.
1: फटाफट जाके चेकआउट कीजिए. यहाँ पे 5599 पे drive लिख कर भेजिए if you want the link. But for now,
2: gentlemen, broadcast.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. वैसे Father's Day competition हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे you can give us a call and participate in Father's Day competition, जहाँ पे $500 fathers can win.
1: Yeah, dad's reverse grill हम यहाँ पे खेल रहे हैं.
0: जी.
1: अक्सर dad पूछते हैं ना, इसका जवाब दो, इसका जवाब पता है तुम्हें, इसका जवाब दो, बहुत हो गया टेस्ट यार. अब उल्टा क्वेश्चन आप पूछोगे.
0: कल मैंने पूछा कुछ फादर्स को ये क्वेश्चंस अबाउट यू नो सर्टेन स्लैंग वर्ड्स स्लैंग्स एंड क्या परफॉर्मेंस रहा.
1: क्या बात है,
0: बहुत ही टेरिबल. But let's see, today you have a chance again to participate. 0800-004-866. Fathers, you need to give us a call. Fathers, अगर आप है, अगर आप एक पिता है, आप यहाँ पे कॉल करें एंड पार्टिसिपेट करें, आपका नाम ड्रॉ में शामिल हो जाएगा टू विन $500 कैश. सिंपल है. हम आपको सवाल पूछेंगे, सम टर्मिनोलॉजीज जो जेन जी जेन अल्फाज यूज करते हैं,
1: और आपसे पूछेंगे और आपको बताना है इसका मतलब क्या है. सो वी हैव सम क्वेश्चंस रेडी, सो कॉल कीजिए 0800-004-866 हम पर. वैसे बता देते हैं कि क्यों आपको कॉल करना चाहिए, बिकॉज आपका नाम इस ड्रॉ में जाएगा जहाँ पे $500 कैश आपके नाम हो सकता है. $500 कैश, वेल इससे $500 रिचर हो सकते हैं दिस फादर्स डे. आपको अपने लिए परफेक्ट कुछ खरीद सकते हैं, अगर आप बारबेक्यू सेट खरीदना चाहते थे उसमें कंट्रीब्यूट हो सकता है, कुछ और DIY खरीदना चाहते थे, या फिर अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, यू नो लाइक इट कैन बी वॉच, इट कैन बी एनीथिंग, क्लोथिंग्स हो सकती है, परफ्यूम हो सकता है, एनीथिंग. सो $500 रिचर आप हो सकते हैं दिस फादर्स डे, इसलिए आपको यहाँ पर कॉल करना चाहिए 0800-004-866.
0: हाय.
2: हाय रुस्मे. हाय सैंडी.
1: यस हाय, क्या नाम है आपका?
0: नाम है आपका
2: गौरव.
0: क्या नाम है?
2: गौरव. गौरव
0: गौरव बोलिए. गौरव
1: नहीं, गौरव को हम पूछेंगे.
0: अरे हाँ गौरव. पहले गौरव आप बोलिए, आप पहले आप किसके मतलब आपके बच्चे कितने, हाउ ओल्ड है?
2: I'm 35.
0: नहीं नहीं, बच्चे बच्चों की उम्र क्या है?
1: उम्र के
2: 32.
0: बच्चों की उम्र
1: कर रहे हो यार
0: आप.
1: गौरव
2: मेरी बेबी है ना.
0: अच्छा बेबी, आपकी बेबी. मैं बेबी की बात नहीं कर रहा हूँ.
2: बेबी नहीं, बीवी, वाइफ.
0: हाँ वो आपकी बेबी है ना. मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ.
1: बच्चों की उम्र क्या है?
2: जैसे मेरे पापा मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते थे, वही चीज मैं उससे पूछता रहता हूँ. तेरे को पता है, तेरे को पता है.
0: अच्छा तो आपके बच्चे नहीं है?
2: नहीं नहीं अभी तो नहीं है.
0: अच्छा कोई बात नहीं यार. तो भाई इसके लिए थोड़ा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है.
2: अभी प्रोग्रेस में हम.
0: अच्छा ठीक
2: है, प्रोग्रेस में भी
0: ठीक है. ठीक है,
1: थैंक यू गौरव फॉर कॉलिंग.
0: थैंक्स गौरव फॉर योर कॉल यार. थैंक यू. हाय.
1: आपको 14 फेब को कॉल करना था.
0: क्यों 14 फेब को? क्यों?
1: वैलेंटाइन्स डे.
0: अच्छा अच्छा ओके. हाय
3: हाय नमस्कार.
0: अरे फादर्स डे में अभी विनय फर तुम तो
3: फादर, फादर मेरे पास है, मेरे पास है, उसको बोलना चाहिए
0: लेकिन वो बोलता नहीं है ना.
3: शर्माता है.
1: तो आप और उसको बोलो कि हाय बोल दे, बाकी सवाल का जवाब आप दे सकती है.
3: लिटरली
1: ही सेड हाय.
0: अच्छा
1: क्या मोटिवेशन थी.
0: अच्छा
1: ऑलराइट. सो सवाल है.
0: सवाल
1: द क्वेश्चन इज What is ghosting?
3: What is what?
1: Ghosting. Ghost होता है ना भूत, उसके आगे ing लगा दो. Ghosting.
3: Ghosting. Ghosting.
1: Ghosting.
3: Ghosting. Porous.
1: हाँ.
3: नहीं porous को पूछ रही हूँ. हाँ. Answer देने का.
1: हाँ good good. हाँ good job.
3: So what is ghost? G-O-S-T.
1: ing.
3: What is ghosting? चलो बोलो. Ghost आवे रातना, ghost आवे ना के ghost.
0: हाँ.
3: के फली ghost.
0: अच्छा. Okay. Next, Sandy. Next. Porous
3: बोल रहा है. Porous बोल रहा है. फली ghost. फली ghost.
1: Okay. Okay. The next one is. What is Riz?
0: What is Riz?
3: R-I-Z.
0: R-I-Z-Z.
3: R-I-T-Z. R-I-T-Z.
0: नहीं नहीं नहीं, वो तो गाड़ी का है नाम.
1: चलो मैं और भी इजी कर देती हूँ. व्हाट इज लॉल? एल ओ एल.
0: अच्छा ये तो पता होना चाहिए, ये तो पोरस को बोलना पड़ेगा.
3: लॉल तो मालूम है मुझे.
1: हां
0: हां
3: लॉल इज व्हाट? लाफ आउट लाउड.
0: अरे यार पोरस यार, जो बिनाइफर करती है हमेशा. All right. Anyway.
1: Thank you, Boris.
0: Thank you, Boris, and thanks, Binay.
1: Thank you.
3: Bye.
1: At least they tried, yeah.
0: They tried. Yeah. Well done. अभी थोड़ी देर में आपके लिए हम यहाँ पे कैरेक्टर गेस्ट लेकर आएंगे. I'm almost ready.
1: You're almost ready. 90% ready or 80%?
0: 80% ready right now.
1: So guys, आज आपको मेरी help करनी है 0800 00 हाँ पर, because आज रुज़बे ready है.
0: आज मैं ready हूँ और देखते हैं.
1: Let's crack it.
0: देखते हैं कितने hints में आप guess कर पाओगे.
1: Yeah, let's see.

0: inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. Hum, accurate traffic.
2: City Rail Link opening soon.
3: Cloudy overnight for Auckland, a low of 11. On the northern, it's heavy heading north through Albany from the centre of town to Silverdale, 47 minutes. On the northwest into Massey, 34, just slow from Waterview to Rosebank. The southern to Manukau, 41 minutes. Drury, just over an hour. Slow heading north from Mount Wellington to Green Lane and south from Green Lane to East Tamaki Road. Southwestern slow, Pukenui Road to the southern.
2: The new City Rail Link is opening September 13. All aboard, Auckland.
4: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's Works with an X.
5: Radio pe gaano ki farmaish ki ja sakti hai. Apno ke naam sandesh bheje ja sakte hain. Magar radio pe apne tradition ki khushbu bhejni ho to nahi bhej sakte na. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
6: Naya hybrid dhoon rahe ho? To Havel Hilo. Right now, Andrew Sims Merugao mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance lo. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Merugao. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
7: Farmer's massive Red Dot sale ends Wednesday. There's now 60% off Red Dot clothing, 50% off Red Dot beauty, lingerie and men's underwear, 40% off Red Dot toys and 30% off Red Dot Lego. Farmer's Red Dot sale ends Wednesday. Conditions and exclusions apply.
8: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
9: Are you ready to go home?
10: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe.
11: Power Drive at 5.
12: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
13: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits, and now is time for
12: Character Guess.
13: कैरेक्टर गेस में होता यह है कि हम आपके लिए यहाँ पे पांच हिंट लेकर आते हैं अबाउट एक कैरेक्टर. हम गलत बोला मैंने, मैं आज लेकर आऊंगा आपके लिए पांच हिंट
14: और पांच सवाल हम पूछेंगे रुजबे से
13: और पांच सवाल आप पूछेंगे और जो सवाल के जवाब होंगे वो आइदर मैं यस या नो ऐसे ही मैं दूंगा. सो आर यू गाइस रेडी? बिकॉज आज लेट्स सी कितने लोग पकड़ पा रहे हैं ये. सो शैल वी स्टार्ट?
14: I think we should, yeah.
13: Yeah, we should start.
14: Yeah.
13: Okay. So, pehla hint. ठीक है. So, pehla hint ये है Sandy के इस character का जो पहला business venture था वो बहुत बुरी तरह डूबा था.
14: So, इसका जो पहला business venture था वो बहुत ही
13: बुरी तरह डूबा था.
14: बुरी तरह डूबा था.
13: Yeah.
14: Okay. The first business venture of this person was like इसका मतलब है कि बिजनेस पर्सन है, इतना तो हमें पता चला है इसमें, ठीक है।
13: सो मैं और थोड़ा हिंट देता हूँ,
14: इसको थोड़ा इलेबोरेट करना चाहोगे तुम।
13: सो जो पहला हॉस्पिटैलिटी वेंचर था, इट वेंट अप इन स्मोक फास्टर देन अ बर्नट नान।
14: ये जस्ट इसने कुछ ऐड नहीं किया है, वही चीज है बेसिकली, इसने थोड़ा सजा के बोला है उसको,
13: सजा के बोला है ना
14: बेसिकली। इसका जो पहला बिजनेस वेंचर था इस इंसान का, वो डूब गया था,
13: डूब गया था,
14: ये इसका पहला हिंट है। सो दिस पर्सन इज अ बिजनेसमैन, इतना वी नो। मुझे ऐसा फीलिंग है कि दिस पर्सन इज इंडियन। कॉल करो 0800 हम पर, क्या लगता है क्या सवाल पूछना चाहिए, एंड मैसेज भी करो 5599 इज द नंबर, जहां पे आप
13: मैसेज करके आप
14: पहले मैसेज करो, थोड़ा नैरो डाउन करते हैं, फिर उसके बाद कॉल लेते हैं, एंड लेट्स सी, बिकॉज थोड़ा हमें फिर समझ में आएगा कि हम कहां पे जा रहे हैं। सो मैसेज गाइस 5599 पर, आपको क्या लगता है कि हमें क्या सवाल पूछना चाहिए। सो पार्थ कहता है कि नेशनैलिटी पहले पूछनी चाहिए।
13: अच्छा, ओके।
14: पार्थ इसी टाइम पे एक्टिव होता है।
13: पार्थ बहुत एक्टिव होता है, उसका ये फेवरेट गेम है, मेरे को
14: समझना है। करेक्टर गेस में ही उसके मैसेज आते हैं। सो ओके, इज दिस पर्सन इंडियन?
13: ये सवाल है आपका?
14: या
13: यस।
14: ओके, सो दिस पर्सन इज इंडियन, ठीक है, नेशनैलिटी हो गई पार्थ, इट्स ऑल डन।
13: सो अभी आपको दो चीजें पता है इनके बारे में, इनका पहला बिजनेस डूबा था और ये इंडियन है।
14: एंड सेकंड हिंट भी लेते हैं, चलो
13: सेकंड हिंट भी देना है आपको, चलो ठीक है, सेकंड हिंट भी देता हूं मैं आपको। तो सेकंड हिंट है इनका कि ये, इनका जो ट्रू एम्बिशन था वो था एक एथलीट बनने का, लेकिन वो एथलीट नहीं बन सके।
14: इनका एम्बिशन था एथलीट बनने का, लेकिन एथलीट नहीं बन सके,
13: फिजिकल लिमिटेशन, ये एथलीट नहीं बन सके,
14: फिजिकल लिमिटेशंस। ओह, या तो चश्मा लग गया होगा, क्योंकि फिजिकल लिमिटेशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स आई साइट, लाइक व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स पर्सन की, या आई साइट का पंगा हो सकता है, या फिर
13: क्यों भागने में आई साइट क्यों चाहिए ज्यादा?
14: नहीं, भागने का इतना नहीं होता है ना, मतलब कि भाग, एथलीट तुमने बोला है, ओके एथलीट, या एथलीट में ये भी हो सकता है कि यू नो ट्रैक उतने टाइम में कवर नहीं किया।
13: अच्छा, ओके ओके,
14: पर तुमने क्या बोला, फिर से बोलना, फिजिकल,
13: ये पहले इनका पहला पैशन था टू बी एन एथलीट, लेकिन वो एथलीट नहीं बन सके ड्यू टू सम फिजिकल लिमिटेशन,
14: फिजिकल लिमिटेशन,
13: फिजिकल लिमिटेशन ही है ना यार, ये थोड़ी ऐसा नहीं है क्या यार, मयूर ने भी यहाँ पे नाम लिया है।
14: या मयूर का कहना है कि दीपेंदर गोयल जोमैटो। वाओ,
13: इंटरेस्टिंग, जोमैटो
14: हो सकता है मयूर, क्योंकि ये वो बहुत देखता है शार्क टैंक, तो हो सकता है कि वहां का कोई करेक्टर्स ने उठाया हो,
13: राइट।
14: मुझे नहीं लगता दिस पर्सन इज इन्वॉल्वड इन बॉलीवुड, एक का आया है कि इज दिस पर्सन इन्वॉल्वड इन बॉलीवुड,
13: इट्स अ गुड क्वेश्चन दो,
14: इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो मेरे को लगता है मयूर ने बहुत अच्छा यहाँ पे हिंट दिया है, जोमैटो का पर्सन है दीपेंदर गोयल, मुझे भी उसके पर्सन के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। खैर, बेनेफर ने सचिन बोला है, बेनेफर सचिन तो गया स्पोर्ट्स में ना, वो पर्सन स्पोर्ट्स में नहीं गया,
13: ये सही बोल रहे हो आप, यस,
14: तो इसलिए सचिन नहीं हो सकता है उसमें, तो स्पोर्ट्स ना, जस्ट एथलीट,
13: एथलीट,
14: एथलीट, या या स्पोर्ट्स, वही, सो एनीवन हु इज ऑलरेडी अ स्पोर्ट्स पर्सन डजंट क्वालिफाई फॉर दिस,
13: दैट्स राइट,
14: ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये होगा रुजबे,
13: कोई कॉल करके अगर आपको मदद करे, मुझे लग रहा है वो बेटर रहेगा, बिकॉज़ राइट नाउ
14: यू कैन कॉल, नाउ वी हैव नैरो डाउन 0800 हम, विकास खन्ना भी हो सकता है यार, वो जो शेफ है, लेकिन वो क्यों नहीं, उसको चश्मे लगे है क्या, वो क्यों नहीं बन सका एथलीट?
13: और गूगल करना अलाउड नहीं है आपको, प्लीज गूगल मत कीजिए,
14: गूगल नहीं करना है, ये जस्ट हम अपने दिमाग से खेल रहे हैं,
13: दिमाग से खेल रहे हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला है
14: सो फार, हमारे पास गाइस नाम आ रहे हैं, विकास खन्ना, विजय माल्या, दीपेंदर गोयल, जोमैटो, मतलब जोमैटो वाला पर्सन दीपेंदर गोयल, और तुमने क्या पहला हिंट बोला था कि हॉस्पिटैलिटी,
13: हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस उन्होंने पहले शुरू किया था, वो डूब गया था उनका, बहुत बुरी तरह डूबा था।
14: तो रेस्टोरेंट खोला था उस पर्सन ने जो कि डूब गया।
13: हाँ।
14: तो अब कॉल लेते हैं, देखते हैं फोन लाइन पे कौन है।
13: हाय
15: हाय रुज़बे, हाउ आर यू?
13: वेरी गुड, हाउ आर यू?
15: गुड गुड। इट इज रिलेटेड टू म्यूजिक देन आई थिंक इट्स वरुण कोला।
13: कौन? वरुण
15: कोला।
14: वो कौन है?
15: आई थिंक दैट्स इट। If it's rare, because I think he was injured and he went into music. He wanted to become an athlete.
14: Okay.
13: Hmm.
14: Hmm. So, वो अभी कौन सी field में है? Music में.
13: अच्छा, वो पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो music में है?
14: तो basically कि ये entertainment industry में है कि नहीं है, right?
13: हाँ, ऐसा.
14: ऐसा चाहते हो आप पूछना?
15: Yes.
14: क्योंकि उससे थोड़ा हमें पता चल जाएगा कि this person अब जिसने बिजनेस भी डूबे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एक्टर्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने पहले अपना बिजनेस खोलने की कोशिश की है और डूब गया है।
13: या
14: और कौन आपके माइंड में आ रहा है राजेश भाई?
15: अभी तो एक ही आवाज, दैट्स ऑल माय गुड थिंग।
14: ओके ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। थैंक यू राजेश।
13: ठीक है,
14: तुमने दो हिंट्स दिए ना?
13: मैंने दो हिंट्स दिए। तो एक काम करते, गाना सुनते एक,
14: उसके बाद एक और सवाल
13: उसके
14: पूछते।
13: एक और सवाल।
16: Bollywood's most wanted.
17: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
18: मैं लाऊं अपना A game.
16: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं को एक ही बात बोलनी है आपसे, ये character guess हम जो खेल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सारे prompts आपके AI agent को दो और फिर उसको बोलो कि भाई अभी मेरे को बताइए कौन सा है।
1: क्योंकि आपके AI agent जो आप उनसे पूछ रहे हो ना, मतलब जो आपसे वो पूछ रहा है AI agent, वो ही यहाँ पे भेज रहा है। Anyway, different answers आए हैं मेरे पास. विकास खन्ना आया है, एंड देन संजीव कपूर आया है, राहुल ने लिख के भेजा है. इंटरेस्टिंग. सुरुज भाई, मेरा सवाल तुमसे ये है कि जिस पर्सन के बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या इस पर्सन ने अपने सर्विसेज के लिए, अपने बिजनेसेस के, अपने बिजनेस के सर्विसेज के लिए ऐप ओपन की है?
0: अपने बिजनेस के सर्विसेज के लिए एक ऐप ओपन की है? नहीं.
1: Oh no, तो Zomato गया. जो भी Zomato वाला था वो गए. तो मुझे लगता है विकास खन्ना भी, बट विकास खन्ना की भी ऐप है.
0: एक काम करता हूँ, मैं आपको एक हिंट देता हूँ.
1: ओके, लेट्स सी अनदर हिंट.
0: सो ये हिंट बहुत इंपॉर्टेंट हिंट रहेगा सैंडी, ठीक है? तो इनकी जो पहली ऑफिस जॉब थी, यहाँ से इनको सीधे फायर किया था. और वो फायर इसलिए किया था, ये सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि वो काम पे लेट गए थे और उनको टाइम पे आने से वो सख्त खिलाफ थे.
1: टाइम पे आने के सख्त खिलाफ थे?
0: हाँ, लाइक पंक्चुअल नहीं है वो. बेसिकली दिस पर्सन
1: वाज
0: नेवर पंक्चुअल, एंड यू हैव kind of experienced it first hand.
1: जो तुम करते हो.
0: मतलब आपने ये एक्सपीरियंस किया है?
1: मैंने ये एक्सपीरियंस किया है.
0: आपने भी एक्सपीरियंस किया है?
1: तो मैंने इस पर्सन की इंटरव्यू की है क्या? ये सवाल नहीं पूछा मैंने.
0: आई डोंट नो, अगर आपको सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो वो सवाल. आई डोंट नो, बट एनीवे. But yeah, it is like a tricky one. But yeah, if you think
1: okay,
0: about it.
1: Okay, so repeat this hint again. इस person की जो पहली job थी.
0: इसकी इनकी जो पहली job थी.
1: उसे इसको निकाल दिया क्योंकि
0: fire
1: कर दिया. Fire कर दिया क्योंकि ये time पे नहीं पहुँचे.
0: क्योंकि ये time पे नहीं पहुँचे.
1: और मेरा इसमें personal like first hand experience है.
0: आपका first hand experience है ये चीज़.
1: Late होने का तो मेरा है first hand experience ना तुम्हारे साथ.
0: हाँ.
1: वो तो तुम आते हो late या.
0: Yeah.
1: अब ये उसमें से कह रहे हैं गाइस, या फिर ये इसमें से कह रहे हैं कि इस पर्सन की इंटरव्यू की हुई है, तो नहीं पता यार. शेफ कौन है? संजीव कपूर है कि संजीव खन्ना है? संजीव खन्ना है.
0: शेफ रणवीर ब्रार कौन है पता है ना आपको?
1: वो तो मुझे पता है
0: कौन. वो अभी जो रिसेंटली इसमें भी आए हैं, माँ कसम में.
1: माँ कसम में भी है वो. माँ
0: कसम में रणवीर ब्रार है शायद से. हाँ.
1: वो तो शेफ, वो तो सबसे पहले रील्स में फेमस हुए, देन एक्चुअली में यूट्यूब.
0: अभी वो एक्टर बन गए ना.
1: अभी वो एक्टर भी बन गए. या इज अ वेरी गुड शेफ. सो
0: अगर वेरी गुड होते तो फिर एक्टिंग क्यों करनी. सॉरी,
1: बिकॉज़ ही लुक्स गुड ना, तो इसलिए इज इनटू एक्टिंग नाउ.
0: जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग. आरुनी, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. आरुनी इज लवली नेम.
1: या सो अभी कॉल चाहिए मुझे गाइस. 0800 00 HUM, 0800 00 4866. सो मैंने दो सवाल पूछे ना तुमसे. मेरा तीसरा सवाल
0: नहीं,
1: ये
0: दो,
1: है.
0: तीन तीन पूछ लिए ना आपने.
1: तीन कैसे पूछे मैंने?
0: पहला क्या पूछा आपने कि ये इंडियन है कि नहीं है.
1: हाँ.
0: दूसरा आपने क्या पूछा कि ये एंटरटेनमेंट में है कि नहीं ना.
1: मैं क्या पूछा था गाइस मैंने?
0: आप आज नोट्स कैसे नहीं बना रहे हो?
1: वही ना.
0: हाँ. एनीवे, चलो तीसरा सवाल पूछ लो. चलो
1: तीसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ये पर्सन, ये अभी मैंने पूछना है कि क्या ये पर्सन एंटरटेनमेंट की फील्ड में इन्वॉल्व्ड है, जैसे कि हमारे कॉलर ने भी पूछा था.
0: एंटरटेनमेंट में ये है कि नहीं है? यस, एंटरटेनमेंट में है.
1: तो पक्का इंटरव्यू किए मैंने, इसलिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है. तो लेट आए होंगे इंटरव्यू के लिए. या शो में लेट आए होंगे,
0: पता नहीं. अभी वो आप अभी, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट. एनीवे,
1: शाहरुख खान आंसर भी आया है मेरे पास. शाहरुख खान का पहला बिजनेस हो भी सकता है, क्योंकि शाहरुख खान ने बहुत पापड़ बेले हैं यार. मतलब अच्छा. वो बंदे ने बहुत कुछ किया है. तो गाना सुनते हैं.
0: टाइम शॉर्ट है मेरे पास, प्लीज.

0: अमाल मलिक की आवाज और आप सुन रहे थे ये बहुत बढ़िया सा गाना गुलाबी 2.0। आज कैरेक्टर गेस में काफी सारे हिंट्स ऑलरेडी हो गए हैं।
1: दो सवाल मेरे बाकी है, दो हिंट बाकी है। ये पर्सन इंडियन है, इन्होंने पहला बिजनेस ओपन अप किया जो कि डूब गया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो अपने बिजनेस की सर्विसेज है उसकी कोई ऐप नहीं है। जॉब पे लेट आने से ये फायर हो गए थे एंड रुजबे ने बोला कि मेरा इसमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अब वो किस रिलेटेड है नहीं पता। ये एथलीट नहीं बन पाए ड्यू टू फिजिकल लिमिटेशंस। नाउ रुजबे, योर फोर्थ हिंट।
0: माय फोर्थ हिंट इज समथिंग अराउंड इनका वहम या इनका बिलीफ या इनका जो भी है, बट ये नंबर्स को लेकर बहुत पर्टिकुलर है।
1: नंबर्स को लेकर पर्टिकुलर है,
0: नंबर्स को लेकर बहुत पर्टिकुलर है ये।
1: ये क्या हिंट हुआ यार?
0: हाँ, नंबर्स को लेकर बहुत पर्टिकुलर है।
1: सभी है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, नाम को लेके, नाम के भी वो स्पेलिंग चेंज कर देते हैं।
0: हाँ, तो नंबर्स का, इनका नाम के नहीं है, मैंने नंबर्स का बोला है। नंबर्स को लेकर ये बहुत पर्टिकुलर है।
1: या नंबर्स को लेके ये पर्टिकुलर है। करण जौहर तो नहीं हो सकता है। ये नंबर को लेके कैसे पर्टिकुलर कौन हो सकता है? विराट कोहली हो सकता है, पर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है। और कौन है नंबर को लेके? क्योंकि जर्सी नंबर वाले तो ज्यादा होते हैं नंबर को लेके। सो मैसेज करो गाइस नंबर को लेके पर्टिकुलर। लेट्स सी द कॉल पे कौन है।
0: अच्छा ठीक है, हाय, फटाफट बोलो। हां,
2: ओरस ने किया है अक्षय खन्ना।
0: अक्षय खन्ना, अच्छा, ऐसा क्यों लगता है अक्षय खन्ना?
2: सिंगापुर गए थे एंड ही ओपनड अप हिज ओन शेफ बिजनेस।
0: अक्षय कुमार की अक्षय खन्ना?
1: अक्षय कुमार होगा।
2: कुमार
0: अक्षय कुमार थाईलैंड गया था। और
1: राजीव भाटिया।
0: हाँ, अच्छा ठीक है, ओके ओके। और नंबर्स को लेकर बहुत पर्टिकुलर है, तो अक्षय कुमार उसमें फिट होते क्या क्राइटेरिया में?
2: फिजिकली फिट के लिए क्राइटेरिया में फिट होते हैं।
0: फिजिकली फिट में कैसे फिट होते हैं? अक्षय खन्ना तो, अक्षय कुमार तो बहुत फिट है।
1: वही ना, एथलीट में बोला कि ये नहीं बन पाए।
0: अक्षय कुमार वुडंट वांट टू बिकम एन एथलीट। वो तो
1: इसका मतलब अक्षय कुमार नहीं है मेरे पे। किसने बोला? ही डिडंट वांट टू।
0: नहीं नहीं, आई डोंट नो,
1: इसी ने बोल दिया।
0: मे बी ही वांटेड टू, सॉरी, आई डोंट नो।
2: हां,
0: ही वांटेड टू, ही वांटेड टू, यू आर राइट। आप कॉल करके बता सकते हो। अभी सैंडी फाइनल हिंट भी दे दूं कि क्या करूं यार?
1: तो मेरे दो सवाल अभी बाकी है ना।
0: हाँ,
1: तो अगला सवाल मैं तुमसे ये पूछती हूँ। अच्छा, फिजिकल लिमिटेशंस को लेके ये वो नहीं बन नहीं पाए यार, एक तो कोई ना। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि सो फार जितने मैसेजेस आए हैं,
0: अच्छा,
1: क्या उसमें से राइट आंसर है?
0: हाँ।
1: ओह माय गॉड, ओके गाइस, अभी जो मैसेजेस आए हैं ना इसमें है।
0: आप थोड़ा पहले पूछते रहे तो बहुत ही
1: थोड़ा पहले, मतलब
0: सैंडी के मन में, सैंडी के मन में आ गया था ये सवाल पहले,
1: पूछा नहीं,
0: उसने पूछा नहीं वो सवाल।
1: सो मेरे पास सो फार जो आंसर आए हैं ना, नाउ यू डिसाइड।
0: एक और हिंट देना ना मेरे को,
1: एक मिनट रुको। दीपेंद्र गोयल नहीं हो सकते क्योंकि उसकी जोमेटो की ऐप है। विजय माल्या एक कंटेंडर है, उसने क्या खोला था नहीं मुझे पता है। विकास खन्ना I mean, क्या बिजनेस खोला जो नहीं चला नहीं पता है वो।
0: उसने जो बिजनेस खोला वो नहीं चला सैंडी,
1: वो भी है
0: नहीं, नहीं चला उसका।
1: विकास इसका मतलब वो भी गया। विजय माल्या भी
0: नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। दारू का बिजनेस चला उसका सैंडी, लेकिन पहला वो मतलब एयरलाइंस डूब गया ना।
1: लेकिन हॉस्पिटैलिटी का नहीं था। विकास खन्ना हो सकता है, विकास खन्ना इज वन कंटेंडर। संजीव कपूर इज सेकेंड वन। रणवीर बरार, मुझे ऐसा लग रहा है कि रणवीर बरार है बिकॉज इसने बहुत बोला उसके बारे में। सो व्हाट इज योर टेक? ओके, तो रुजबे अपना अगला हिंट दो।
0: अगला हिंट तो इनका नाम जो पहले था वो अलग रखा गया था।
1: ये ऐसे ऐसा हिंट नहीं चलेगा, कैंसल। कुछ और बताओ यार, अगर नाम नहीं पता चल रहा तो पुराना नाम कैसे पता चलेगा? नो
0: चलो मैं और डीप हिंट देता हूँ उसमें।
1: हाँ।
0: कि इनका जो पहला नाम उनकी नानी ने रखा था।
1: ये नानी पे पहुंच गए। प्लीज यार, हमें नाम नहीं पता चल रहा है, नानी का कैसे पता होगा?
0: नहीं, नानी का नाम नहीं जानना है आपको, नानी ने एक अलग नाम रखा था, फिर उसके बाद उनके पापा ने बोला कि नहीं नहीं मैं ये नाम नहीं रखूंगा, नाम चेंज किया।
1: मेरी भी नानी ने एक नाम रखा था, पता है तुम्हें क्या?
0: अच्छा ठीक है,
1: ये कैंसिल है यार।
0: चलो ठीक है, तो क्या अभी एक और हिंट दूं मैं?
1: एक और नहीं, अच्छा हिंट दो।
0: ये कैरेक्टर, ये इंसान ने अपेरेंटली आज तक कभी आइसक्रीम नहीं खाई। तंग करके रहूंगा मैं।
1: मैंने आज तक क्या नहीं खाया है उसमें?
0: जल्दी फटाफट आप यहाँ पे मैसेज करके बताइए।
1: गाइस कॉल करो इसको यार, कैसे हिंट दे रहा है यहाँ पे?
0: कॉल करो, कॉल करो, फटाफट कॉल करो।
1: आइसक्रीम नहीं खाई कभी, सोया है क्या कभी जिंदगी में? The Drive Show with Sandy and Rusbay, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe,
0: where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe. सोने में भी इसका हाथ बहुत टाइट है, ये एक्चुअली में रात को बहुत कम सोते हैं। Accurate traffic. Seville's Academy, hairdressing, makeup and barbering courses. Cloudy overnight for Auckland, a low of 11. On the northern, it's heavy heading north from Esmond to Northcote Road. From Tarn to Silverdale, 42 minutes. The northwestern to Massey, 33. It's just heavy Waterview to Rosebank. The southern to Monaco, 43 minutes. Drury in hour 3. It's heavy southbound Market Road to East Tamaki Road. On the southwestern, slow from Pukenui Road to the southern. Tarn to the airport, 34 minutes.
3: Looking for a creative career? Seville's Academy, 0800 Seville's or Seville's.com.
4: When your car starts making a funny noise, bringing it into Mida stops your mind spinning. With thoughts like, should you just ignore it? Pray? Ask your sister's husband's mate's cousin Greg to look at it? Hang around Henderson with a hood up, hoping a friendly brogan will offer advice? Or hope your local mechanic doesn't find extra stuff to fix? Which brings us back to praying. So save the mental gymnastics and bring it into Midas for straight answers and mates rates prizes. Midas, for peace of mind motoring.
5: Cheer, Midas!
6: डॉक्टर ने क्या बोला?
7: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
6: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
8: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
9: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North Endville Advisory Limited trading as Assured One is a licensed financial advice provider.
10: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
11: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है, सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
10: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए, मेरे दोस्त ने भी की थी। अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
11: पर डेवलपमेंट के पैसे
10: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
12: A safe night can change everything. That's why Contact donates the energy to power Women's Refuge. This winter, when you donate a safe night for someone seeking safety, we'll match it up to 5,000 nights. Donate now at safenight.nz.
13: You won't be able to resist these Meat Week deals. Ah, smell that. Ah, hang on. Do you have the smell on your radio turned up? Ah, that's okay. I'll describe it. It is yum. Smell it yourself at Meat Week. On now at Pack and Save.
14: Knock knock, it's me Dash, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash. And you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
15: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds, like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
5: Are you ready to go home?
16: The Drive Show with Sandy and Rusbay, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe.
17: Power Drive at 5.
18: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
19: Let's go.
18: Straight from the heart.
20: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
0: आज कैरेक्टर गेस में मुझे लग रहा है कि मेरा वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको,
1: सक्सेस, मतलब ऐसा कमबैक हो गया
0: रुस्बी का.
1: बिकॉज़ आल्सो बिकॉज़ ऑफ द हिंट्स यू आर गिविंग रुस्बी,
0: हिंट्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट ना. आई हैव टू अदरवाइज इतना इजी एक आध दो हिंट में गेस हो जाता है. एनीवे, वी जस्ट वांट टू क्विकली टेल यू कि थोड़ा सा वी हैव रन ओवर टाइम एंड दैट्स व्हाई we will be giving the answer of just after 6 o'clock. हमारे पहले लिंक में
1: 6 बजे की न्यूज़ के बाद
0: 6 बजे के न्यूज़ के बाद आपको हम आज आंसर बता देंगे. And Sandy has got still one question to go and one more hint to go.
1: Yes, and so, I think this is the final one. मेरे को शायद पता चल गया कि कौन है.
0: So 6 बजे के बाद आप यहाँ पे फटाफट यहाँ पे 6 बजे तक आप यहाँ पे कॉल करके सैंडी से बात कर सकते हो एंड यू कैन चेक विथ हर कि यू नो एक्चुअली मैं क्या है क्या नहीं है.
1: या मैसेज कीजिए 5599 पर.

0: 13. And New Zealand's Erin Routliffe and her English partner will face the all-star combo of Serena Williams and Carlos Alcaraz in the opening round of the mixed doubles at the US Tennis Open.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
3: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस
4: सूचित किया जाता है स्वर्गीय जॉर्ज केदारनाथ और राजमती के पुत्र करिश्मा सिंह कविनय लाल और कविता लाल के पिता मंजिला लाल की पति भूतपूर्व नवा निवासी फ्लैटबुश के हीरा लाल उर्फ बुडा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार फ्राइडे दोपहर 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा जानकारी के लिए कविनय लाल को 021-053-4317 पर कांटेक्ट कीजिए स्वर्गीय जॉर्ज केदारनाथ और राजमती के पुत्र करिश्मा सिंह कविनय लाल और कविता लाल के पिता मंजिला लाल के पति भूतपूर्व नेताता नवा निवासी फ्लैटबुश के हीरा लाल उर्फ बुड्ढा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार फ्राइडे दोपहर 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा जानकारी के लिए कांटेक्ट कीजिए कविनय लाल को 021-053-4317 पे
3: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी
2: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
5: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
1: Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe.
2: The Drive Show with Sandy and Ruzbe.
5: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा फाड़ देंगे.
4: गर्दा फाड़ दिया आज यार 6:04 हो गए एंड अभी तक हम लोग ने कैरेक्टर गेस का आंसर नहीं दिया है बिकॉज इट्स बीन अ वेरी हेक्टिक डिस्कशन और अब तक कोई ऐसा जवाब ऐसा क्लियर नहीं आ रहा है ना सैंडी
6: यस सो मिस आउट किया है अगर आपने तो रुज़बे अपने हिंट्स पहले बताओ
4: चलो मैं फटाफट बताता हूँ तो पहला हिंट था कि इनका जो बिजनेस था पहला एक हॉस्पिटैलिटी वेंचर वो डूब गया था फिर जो दूसरा हिंट था ये एथलीट बनना चाह रहे थे बट वहाँ पे भी वो नहीं कामयाब हो पाए क्योंकि फिजिकल लिमिटेशंस थी पहले जॉब से इनको निकाला गया था बिकॉज ऑफ पंक्चुअलिटी जो आज भी उनके साथ एक इश्यू है
6: ओके
4: और इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सैंडी ने भी किया है ये वाज पार्ट ऑफ माय हिंट
6: मे बी जहां पे मैं टू कंफ्यूज मेरे को समझ में नहीं आया जहां पे इसने मेरे को और कंफ्यूज कर दिया
4: या
6: एंड इंडियन है ये इन्होंने अपनी सर्विसेज की कोई ऐप ओपन नहीं की है ठीक है एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी है
4: और अभी जो हमें यहाँ पे गेसेस आए हैं उसमें उनका नाम शामिल है और नंबर्स को लेकर वो बहुत मतलब नंबर्स के लेकर वो काफी कनेक्टेड है
6: काफी ज्यादा नंबर्स के ऊपर क्यों इतना फोकस कर रहा है ये
4: मतलब एक ऐसे कुछ नंबर्स है जो उनके साथ है काफी टाइम से एंड ही इज आल्सो अ नंबर्स पर्सन
6: यही तो नहीं समझ में आ रहा है ना अच्छा तो तुमने बोला था ना कि तुम एक लास्ट हिंट देने वाले हो यहाँ पे
4: लास्ट हिंट मैं देने वाला हूँ नहीं मैंने और भी हिंट दिया ना वैसे वो आपने बोला नहीं इन्होंने आज तक कभी आइसक्रीम नहीं खाई
6: ये हिंट नहीं है नाम चेंज हुआ इनका बचपन में
4: नाम
6: आधे से ज्यादा जनता के नाम चेंज हो गए बचपन के
4: बचपन में नानी ने इनका अलग नाम रखा था फिर उनके डैड ने बोला कि नहीं ये नाम नहीं चाहिए
6: ये नहीं नाम रखेंगे थोड़ा अच्छा हिंट दो
4: नहीं आप पहले आप क्वेश्चन पूछो आपका
6: ओके माय क्वेश्चन इज
4: यहाँ पे कोई कॉल करके भी अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कुछ नैरो डाउन करना चाह रहा है तो 0800-004-866 इज द नंबर व्हाट डू यू थिंक ये सारे हिंट सुनकर आपको क्या लग रहा है कौन है ये
6: कौन हो सकते हैं ये सो 0800-00 हम पर कॉल करो ये सारे हिंट सुनने के बाद कौन है आपके दिमाग में आ रहा है मेरा क्वेश्चन ये है
4: क्वेश्चन पूछो आप हाँ लास्ट क्वेश्चन है
6: लास्ट क्वेश्चन हैव दिस पर्सन एवर बीन इन ऑकलैंड
4: Has this person ever been in Auckland?
6: Yeah. इन्होंने ये कभी ऑकलैंड आए हैं
4: अच्छा एंड द आंसर इज यस
6: ओके मुझे दो लग रहे हैं शाहरुख खान
4: अच्छा
6: या संजीव कपूर
4: अच्छा
6: फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दोनों के केस में हुआ है जहाँ पे दोनों लेट थे पंगा ये है बट द ट्रिकी पार्ट इज कि संजीव कपूर लेट था ये रुज़बे को नहीं पता है शाहरुख खान लेट था ये रुज़बे को पता है पूरी रात इंतजार किया था शाहरुख खान की शेड्यूल्ड इंटरव्यू के लिए, सुबह जाके हुई थी। सो

0: आई थिंक दिस इज अ शाहरुख खान. और इसने जो हिंट दिए है ना, इतने बेकार हिंट दिए तुमने आज ना.
1: बेकार हिंट लगे आपको?
0: मुझे ऐसा लग रहा है ये शाहरुख खान ही है अभी. सो ये कॉल उठाना है.
1: हाँ हाँ उठाइए.
0: हाय
2: हाय, आई एम सेइंग संजीव कपूर.
1: आप बोल रहे हो संजीव कपूर?
0: संजीव कपूर क्यों आपको लग रहा है कि?
2: बिकॉज ही हैज कम टू ऑकलैंड, आई ओनली ब्रॉट हिम हियर एंड लॉन्चेस खाना खजाना का प्रोडक्ट्स.
0: ओ हाँ, अच्छा मेरे को बात बताओ बेनेफर, क्या संजीव कपूर लेट थे?
2: I took him to radio Tarana. That time it was radio Tarana.
0: Thank you बेनेफर, you rock यार. इतनी भी honest नहीं होना था.
2: And he was late on radio. Why? Because it was raining profusely.
0: तो मेरा first time experience नहीं हुआ ना फिर ये?
2: तुम्हारा समझ रहे हो, एक्सपीरियंस नहीं था. अपन दूसरा चैनल का
0: वही ना, इसने बोला कि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है. शाहरुख खान के मामले में क्या हुआ था कि पूरी रात बैठे थे, फिर सुबह जाके इंटरव्यू हुआ था.
2: शाहरुख खान तो पची, शाहरुख खान तू होगा तो, शाहरुख खान
1: तू होगा तो. अच्छा ठीक है, थैंक यू बेनेफर, थैंक्स फॉर योर कॉल.
0: थैंक यू बेनेफर.
1: अच्छा तो बताइए अभी क्या लग रहा है आपको? सनी ने भी यहाँ पे एसआरके भेजा है, नितिका ने यहाँ पे लिखा है आंसर शाहरुख खान.
0: क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हार ही जाएंगे. इससे बुरा क्या ही हो सकता है?
1: एक और हिंट बाकी है.
0: तुम्हारा एक और हिंट कैसे बाकी है?
1: एक और हिंट बाकी है.
0: व्हाई नॉट,
1: नहीं देना है क्या?
0: नहीं बोलो.
1: सो बेसिकली एक और हिंट ये है कि बहुत एविडेंट हो जाएगा ना ये, बट ठीक है.
0: हाँ
1: तो वन ऑफ दिस पर्सन्स मोस्ट पॉपुलर वर्क का जो नाम था वो इनको काफी क्रिंज लगा था. इस इंसान का एक बहुत जो पॉपुलर एक काम था वो इस इंसान को उसका नाम बहुत क्रिंज लगा था.
0: कोई मूवी इनको अपनी बहुत क्रिंज लगी है शाहरुख खान को?
1: नाम,
0: उस मूवी का नाम बहुत क्रिंज लगा.
1: मैं मूवी नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो ये. मैं तो मेरा हिंट मैंने सिंपल रखा है.
0: ओके लेट्स से शाहरुख खान, गलती हो जाएंगे हम ना, कोई बात नहीं गाइस, इट्स ओके. चलता
1: है. आर यू श्योर? कोई और आपको यहाँ पे कॉल करके सपोर्ट करना चाह रहा है ये चीज पे?
0: आई थिंक इट इज शाहरुख खान. आई थिंक दिस इज शाहरुख खान. शाहरुख खान बीन टू ऑकलैंड, टेम्पटेशन रीलोडेड इन्होंने शो किया था यहाँ पे, बहुत ही अच्छा शो था इनका. एंड लेट तो ये मतलब थे काफी. वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी इसीलिए रुजबे को याद है. नहीं तो ऐसे एक्सपीरियंस कहाँ याद रहते हैं ना. मुझे लगता है कि दिस इज शाहरुख खान. और मेरे को ये देखना है कि शाहरुख खान किसने भेजा मुझे सबसे पहले.
1: जी
0: सबसे? मुझे सबसे पहले शाहरुख खान काफी लेट आया एक्चुअली मेरे पास. ओ नहीं, मेरे को हाँ किसी ने भेजा था शाहरुख खान.
1: 8189 ने भेजा था सबसे पहले.
0: 8189 ने शाहरुख खान भेजा था. ओके द आंसर इज शाहरुख खान.
1: एंड दैट इज राइट, इट इज शाहरुख खान. यस इट इज शाहरुख खान.
0: अब गाइस मेरे को बताओ ऐसा कौन सा हिंट दिया है रुजबे ने जिससे हमें पता चले कि ये शाहरुख खान था?
1: भाई मालूम है बहुत डिफिकल्ट, बट आई हैड टू प्ले द गेम. दिस इज द गेम, व्हाट टू डू,
0: जस्ट बिकॉज़ ही वांटेड टू रीक्लेम द टाइटल. Trend makers में चलो आगे बढ़ते हैं आज.
1: नहीं, इस उससे पहले थैंक यू सो मच सभी को यार.
0: थैंक यू सो मच गाइस,
1: बहुत ही यहां पे गेस किया.
0: कैटरीना कैफ भी आंसर आया था, जॉन अब्राहम भी आंसर आया था. सो या थैंक यू सो मच गाइस आपकी मेहनत के लिए. अमिताभ बच्चन भी आंसर आया था हमारे पास, बट शाहरुख खान इज द आंसर. मुझे नहीं पता था कि स्टार्टेड रेस्टोरेंट जो कि जल गया था.
1: ये रेस्टोरेंट था वो जल गया था. मैंने और भी सारे बहुत सारे हिंट्स को रिजेक्ट कर दिया था. क्या आपको पता है कि इनकी पहली कमाई जो थी वो कॉन्सर्ट पे सीट दिखाने वाली थी. कॉन्सर्ट पे के टिकट्स दिखाने अशर का काम किया था इन्होंने. 50 रुपए कमाए थे.
0: और तो मैं ये हिंट देना चाहिए था कि वो बोलते बहुत अच्छा है, मोटिवेशन स्पीच बड़ी अच्छी देते हैं.
1: बट वो आप इजी नहीं करना था ना मुझे आपके लिए.
0: एनीवेज देखी जाएगी अगले ट्यूसडे को इसका बदला लिया जाएगा.
1: ये नहीं
0: क्या अब तुम देखना अगले ट्यूसडे जो मैं हिंट देने वाली हूँ ना यहाँ पे. आई वाज प्लेइंग नाइस, आई विल नॉट बी नाइस एनीमोर.
1: ओके ठीक है.
0: नाउ ट्रेंड मेकर्स शुरू करते हैं गाइस. ट्रेंड मेकर्स में आज हम आपके लिए कोर्ट ड्रामा थीम्स लेके आ रहे हैं, ऐसी मूवीज जो कि कोर्ट ड्रामा के ऊपर बेस्ड है, उन मूवीज के गाने. टू स्टार्ट ऑफ एक मूवी जो कि सिग्नेचर है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. फुल को ड्रामा थी बट ब्रिलियंट मूवी
1: यार. वो डायलॉग सुनाना चाहिए हमने यार,
0: ढूंढो
1: अभी टाइम नहीं है लेकिन अपने पास.
0: दामिनी मूवी,
1: दामिनी मूवी का ये गाना सुनते हैं, उसके बाद हम देखते हैं अगर आपके लिए कोई डायलॉग प्ले कर सके तो.

0: You're listening to Hum Trendmakers. आपके लिए आज हम कोर्ट रूम ड्रामा स्पेशल लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे कोर्ट रूम ड्रामा मूवीज के गाने आपको सुना रहे हैं। काफी ऐसी मूवीज भी है कोर्ट रूम ड्रामा वाली जिसके गाने नहीं इतने पॉपुलर है,
1: जिसके गाने नहीं है, लेकिन उनके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल आपने दीवानगी मूवी का गाना सुना, जो कि अनदर
0: एपिक मूवी मैन।
1: या अक्षय खन्ना शाइन कर रहा था इस समय पर ना।
0: अक्षय खन्ना तो था ही, और अजय देवगन ने भी बहुत बढ़िया रोल। एंड आई थिंक अक्षय खन्ना का वो कोर्ट वाला, मतलब वो उसमें अलग कैरेक्टर वो जो प्ले कर रहा था, जो आगे चल के उसने बहुत वैसे मूवीज की है। यार एक और मूवी थी सैंडी जिसमें अमिताभ बच्चन है, और याद है वो ऐसी मूवी है जहाँ पे वो लोग सब दोस्त लोग होते हैं साथ में, कोई एक स्ट्रैंडेड आता है वहाँ पे कपल, और वहाँ पे वो बोलते हैं कि ये हमारा गेम है जहाँ पे हम तुम्हारे ऊपर केस।
1: एतराज मूवी?
0: नहीं, एतराज
1: ही थी ना, दो कपल्स होते हैं उसमें।
0: नहीं यार, एतराज अमिताभ बच्चन नहीं है।
1: अमिताभ बच्चन,
0: अमिताभ बच्चन और
1: बोलूं।
0: बहुत बढ़िया मूवी थी वो भी।
1: तो अगर आपको पता चलता है कोई किस मूवी के बारे में रुजबे बात कर रहे हैं, करेक्टर गेस तो खत्म हो गया, लेकिन मूवी गेस आप बता सकते हैं। 5599 इज अ नंबर। बट देयर इज अनदर वन, ये जो मैंने मूवी देखी है, जैसे ऑफिशियल रीमेक ऑफ 12 एंग्री मैन, एक रुका हुआ फैसला।
0: अच्छा,
1: यूट्यूब पे रुजबे ये मूवी है, कभी टाइम मिले जरूर देखना। 1986 की मूवी है, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी मैन। सो इंडिया ने अबॉलिश किया था जूरी ट्रायल्स इन 1960s, लेकिन ये जो मूवी है उसे पहले की कहानी को बताती है, जिसमें पंकज कपूर भी है। बहुत, मतलब ऐसे क्लासिक एक्टर्स हैं ना इस रुका हुआ फैसला में। 12 वहाँ पे जूरी मेंबर्स है जो कि एक फैसले पे नहीं आ पा रहे हैं।
0: Oh, wow.
1: सिर्फ एक रूम की कहानी है ये।
0: Wow, that's...
1: फुल मूवी इन वन रूम, 12 जूरी मैन जो कि एक फैसला लेने चाहते हैं, वोटिंग नहीं हो पा रही है, मतलब वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। ओमपुरी भी है वन ऑफ द एक्टर। 1986 की मूवी है ये। सो कभी टाइम मिले जरूर
0: क्या
1: देखना।
0: क्या है इस मूवी का नाम?
1: एक रुका हुआ फैसला।
0: ओ वाओ, क्रेजी,
1: वेरी नाइस मूवी।
0: और मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रहा था सैंडी, यहाँ पे मैसेज आ गया, थैंक यू। इट इज चेहरे। यस, दैट्स द मूवी।
1: चेहरे,
0: हाँ, बहुत, उसमें इमरान हाशमी है, बहुत बढ़िया वो उन्होंने भी रोल प्ले किया है। एंड अनु कपूर है उसमें, और धृतिमन चैटर्जी, रघुबीर यादव, तो इन सब का बहुत ही अच्छा ये क्या बोलते हैं मूवी है ये।
1: एंड मेरा सवाल है यहाँ पे अभी ऑडियंस से, रियल लाइफ बेस्ड के ऊपर कोर्ट ड्रामा मूवी कौन सी बनी है?
0: रियल लाइफ, हाँ, फटाफट भेजिए।
1: रियल लाइफ, एक का तो गाने सुनने वाले हैं लेकिन मूवी का नाम नहीं बताएंगे। और एक और मूवी है,
0: और भी काफी मूवीज है एक्चुअली में।
1: या 5599 इज अ नंबर।

0: ट्रेंड मेकर्स।
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
3: डॉक्टर ने क्या बोला?
4: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
3: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
5: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
6: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North Endville Advisory Limited, trading as Assured One, is a licensed financial advice provider.
7: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin-binning. And you need to know about it.
8: Join the Tribe!
7: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
8: join the Tribe!
9: No matter how you wrap it, make Dad's Day with the perfect gift from Mitre 10. Get a sweet deal on a Bosch 3.6-volt cordless air compressor pump, now $79. Or pick up a 150-litre No. 8 heavy-duty storage box for only $35. And for the lawn-obsessed dads, grab a 140cc Lawnmaster petrol lawnmower, now just $529. Or let Dad decide with a gift card. Shop now at Mitre 10.
10: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
11: Oh hey, if you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
12: Enrol, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
13: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quick Step. Visit your local Flooring Extra showroom today.
14: Flooring Extra, adore your floor.
15: Of Bollywood.
16: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
17: Are you ready to go home?
18: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe.
19: You're listening to हम playing Bollywood's biggest hits. Jolly LB 2 का ये टाइटल ट्रैक आप अभी सुनने वाले हैं. जो कोर्टरूम ड्रामा स्पेशल में आपके लिए हम प्ले करेंगे. जॉली एलएलबी भी एक ऐसी बढ़िया सीरीज बनी है. मेरे को वन भी बहुत अच्छी लगी, टू भी काफी अच्छी थी एक्चुअली, एंड थ्री आल्सो वाज गुड.
9: थ्री इज आल्सो गुड टाइम पास.
19: आई लाइक इट, इट इज नाइस. लाइक मुझे एक बात अच्छी लगी थ्री की, कि अक्षय कुमार होते हुए भी उन्होंने अर्शद वारसी को काफी लाइमलाइट दी उस मूवी में.
9: दैट्स
19: अ गुड थिंग टू सी.
9: Yeah.
19: But yeah, one का तो अपना ही बात है यार.
9: Yeah, that is classic.
19: I think the main hero for this Jolly LLB series is the judge.
9: Judge और अर्शद वारसी भी. अर्शद वारसी is the, मतलब कोई भी साथ में आ जाए लेकिन अर्शद वारसी ही दिखाई देता है.
19: अर्शद वारसी is he's quite good.
9: So हमने सवाल पूछा था रुजबे की, रियलिटी बेस्ड कोर्ट ड्रामा मूवीज कौन सी बनी है. काफी लोगों ने जवाब भेजा है. नो वन किल जैसिका इज द वन आंसर. या जिसका गाना भी आप थोड़ी देर पहले आपने सुना था. एंड देन आल्सो तलवार मूवी
19: इज आल्सो अनदर वन. इरफान
9: खान थे इसमें.
19: या
9: सो यस,
19: और तलवार की बहुत अलग अलग टाइप की मूवीज बनी है ना, मतलब बहुत अलग अलग इसकी बनी है. ए एक्चुअली मैं एक रिसेंटली अभी मैंने देखी जिसमें के मेनन है. एंड इट इज अगेन अबाउट अ चाइल्ड एंड समथिंग. But I don't know if it is a reality based movie, but okay. It's very similar to Talwar, I think. But a very old movie.
9: Okay, quite old movie.
19: KK Menon is in it. Yeah, I don't remember the name. I'm very bad with names today. I don't know why.
0: So, Mulk movie bhi another code drama movie hai. Rishi Kapoor, Tapsee Pannu hai is movie mein. It's a social drama basically. It's really a nice movie as well. Shahid movie yaad hai tumhe, Rajkumar Rao ki.
19: Oh my god, yeah, that is also quite a good
0: one. So, आप भी अपने suggestions यहाँ पे भेज सकते हैं. आपको ऐसी कौन सी movie है जो court drama movie based है, बहुत अच्छी लगी.

0: with Sandy and Rusbe. Brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: Rusbe, tickets book ho gaye.
2: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
1: Sunset, beach club और थोड़ा सा सुकून भी
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
4: हेलो एवरीबॉडी
0: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
5: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे ओनली ऑन हम Accurate traffic.
6: Fly Solomon Airlines, cloudy overnight for Auckland, a low of 11 on the northern. It's just a bit slow, heading north from Esmond to Northcote Road, from town to Silverdale, 32 minutes. The northwestern, 18 minutes to Massey. On the southern to Manukau, 26 to Drury, 38. Just a bit heavy southbound around Ellerslie, Panmure and Mount Wellington. Southwestern, slow from Whitty Station Road to the southern, from town to the airport, 25 minutes.
7: Auckland to Vanuatu, from $925 return. Selected dates, conditions apply. Fly Solomon.

0: the what's legit.
1: Send us your cat photos.
2: A Kogan fan is just like a fan. Both fans do very similar fan things, but with slightly different little logos, shapes, and chords. One fan's a Kogan Smarter Home Heating and Cooling Bladeless Purifier fan. The other fan has a price you will not be a fan of. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith, and Kogan.com. Clickin' awesome.
3: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
4: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
3: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
4: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
6: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercenter, Cavendish Drive, Manukau.
7: When India comes to town, Aotearoa feels different. Join the Cricket Nation pre-sale at nzc.nz and secure your tickets first, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
8: Are you ready to go home?
9: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe.
8: Let's go! 3, 2, 1.
10: Trend Makers.
11: You're listening to Trend Makers, एक ऐसा शो जहाँ पे हम आपके लिए थीम्स लेकर आते हैं और आज का थीम है कोर्ट रूम ड्रामा जहाँ पे सारे गाने जो आप सुन रहे हैं वो कोर्ट रूम ड्रामा मूवीज के हैं
12: Yes, and remember Father's Day का कॉम्पिटिशन भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पे आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं रक्षाबंधन का कॉम्पिटिशन भी है जहाँ पे डिफरेंट कैश प्राइजेज आप जीत सकते हैं सो हमें फेसबुक पे फॉलो करना भूलेगा हम 104.2 FM हमारे फेसबुक पेज का हैंडल है एंड इसी के साथ साथ वैसे आज हमने जो नया अपना पॉडकास्ट रिलीज़ किया ये भी आप जाके ज़रूर सुनिएगा जहाँ पे आपको हमारे कम्युनिटी की जो हिस्ट्री है ये समझ में आएगी न्यूजीलैंड में
11: एक बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट्री के जो क्रिएटर्स हैं उनसे हमने बात की है पंजाब टू आउतेरोवा और हरजोत सिंह एंड गगन
12: संधू
11: उनके साथ हमारी बात हुई बहुत ही अमेजिंग टॉक है इसको आप ज़रूर सुनिएगा आपको मज़ा आएगा और उनकी डॉक्यूमेंट्री आप ज़रूर चेकआउट कीजिए यूट्यूब पे है फ्री आप देख सकते हैं इसको it's so much hard work that they've put in to make this documentary. I think you'll feel very proud जब आप इस documentary को देखेंगे.
12: Yeah, so ज़रूर जाके देखिएगा. Court drama movies के गाने आज आपके लिए हमने यहाँ पे play किए. जाते जाते रुस्तम movie का गाना आपके लिए play कर रहे हैं. रुस्तम is I think the another movie जो कि reality based थी.
11: Oh yeah.
12: It was a reality based movie. Yeah. So इसमें बताया गया
11: था. पता नहीं वो सच हुआ है कि सच था क्या वो?
12: ऐसा बोला गया था बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स
11: है बट जाने से पहले सैंडी एक अपडेट दे देते हैं हम जा रहे हैं बाली और बैंकॉक एंड वी आर गोइंग ईस्टर 2027 में
12: या
11: एंड हम जा रहे हैं आपके साथ मतलब हमारे कुछ लिसनर्स के साथ आप भी उसमें जुड़ सकते हैं अभी थोड़े और टिकट्स अवेलेबल है सो गेट इन योर टिकट्स देयर इट्स अराउंड 7995 फॉर वन
12: या
11: व्हिच इंक्लूड्स 4 to 5 star अकोमोडेशन
12: So, हर एक टिकट इंक्लूड है यानी कि यहाँ से बाली से बैंकॉक
11: एंड रिटर्न सारे टिकट्स प्लस इसके साथ साथ अकोमोडेशन 4 to 5 star होटल वाला वो इंक्लूडेड है
12: एंड एक्टिविटीज एज वेल
11: एक्टिविटीज जो हम वहाँ पे करेंगे सारा वो सब इंक्लूडेड है
12: गाइडेड टूर्स एज वेल
11: खाना पीना सब कुछ इंक्लूडेड
12: है इसमें बेसिकली वन टाइम पैसे देने हैं दैट्स इट
11: So, yeah,
12: trip is sorted.
11: It's a great deal, जो मुझे लग रहा है कि
12: Plus, अगर आप इसी महीने आप बुक करते हैं which is like $500 तो आपको न्यूजीलैंड में वन नाइट अकोमोडेशन फ्री में मिल रही है
11: फॉर दिस मंथ ओनली सो यू हैव लिटरली ओनली 5-6 days left
12: yeah.
11: अगर आप इसमें बुक कर लेते हैं तो आपको मिलेगा वन नाइट अकोमोडेशन
12: प्लस अगले दिन के लिए दो लोगों का ब्रेकफास्ट।
11: तो अनिल भाटिया को आप कॉल कीजिए, उनका नंबर है 0800 फॉर संतोर्स और वो आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। सो गेट इन टच विद अनिल भाटिया।
12: या सो इसी नोट पे आपको कहते हैं टाटा बाय बाय। अब आपसे कल मुलाकात होने वाली है।
11: जी कल इज गोना बी वेनसडे जहाँ पे वील हैव फ्यू फन एक्टिविटीज फॉर यू, जहाँ पे हम आपके साथ खेलेंगे।
12: या कल एक नई गेम भी आपके लिए लेके आएंगे।
11: नई गेम लेकर आने वाले,
12: मतलब कि डिफरेंट गेम, आज से कोई डिफरेंट गेम
11: रहने वाली। कल हम सिचुएशनशिप लेकर आएंगे आपके लिए।
12: सो आपके लिए एक सिनेरियो लेके आने वाले हैं जहाँ पे अगर आप रिलेटेबल फील करते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं कि इस सिनेरियो में आप क्या करते हैं।
11: जी विद दैट हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर इवनिंग and we'll see you soon.
12: Hi, take care, bye.
11: Bye.

0: गया, मुलाकात हो गई आपसे। हम
1: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है, सब चलता है। आधी नींद में हूँ मैं।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Thing.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: Attention everyone. हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
3: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
2: क्या आपकी

0: biggest hits.
1: Yo, boys, I am singing song. Soup song. Flop song.

0: Breakfast with Logic.
1: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Ryan. Local Government NZ is labelling the proposed rates cap as a blunt tool that will not address cost drivers. The legislation would limit rises to 4%. Auckland councillors will take the next step with three potential options for congestion charging, which could cost drivers between $2 and $7. The options target the central part of the city. A serious crash on Auckland's North Shore this evening. Emergency services called to Woolworths Sunnynook at the intersection of Sunnynook Road and Sycamore Drive. The crash involved a car and a pedestrian. The pedestrian has been seriously injured. In sport, the Warriors matchday squad for the home clash against the Knights on Sunday. Halfback Tamira Martin is back from injury. He'll partner Chanel Harris-Tavita in the halves. Luke Hansen back to the reserves. On the wing, a Warriors debut for Luke Laulili. Rugby league with Machinery House in a league of their own. And New Zealand's Erin Routliffe and her English partner face an all-star combination in the opening round of the mixed doubles at the US Open tomorrow. They'll be facing Serena Williams and Carlos Alcaraz.
2: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
3: World's best. Hamari good brands nahi
0: hai. Night Cafe on Hum. A moment. Krishka Magic. Only on Hum.
4: A very good evening, everyone. Welcome to the show. मैं क्रिश आ गया हूँ आपके साथ देने के लिए हम पर नाइट कैफे लेकर. और आज 25th अगस्त है, ट्यूसडे नाइट है. और जब भी ट्यूसडे नाइट आता है तो 8 टू मिडनाइट का ये प्रोग्राम मैं लेकर आ जाता हूँ. लेकिन आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड अबाउट प्रेजेंटिंग टू यू द मोस्ट अवेटेड शो जो हमारा होता है ऑन ट्यूसडे नाइट्स, व्हिच इज कोक स्टूडियो रीलोडेड.
0: ये है कोक स्टूडियो रीलोडेड ऑन हम.
4: A very big welcome, everyone. Welcome to Coke Studio Reloaded, जहाँ पर Coke Studio songs हम लेकर आते हैं. Coke Studio पाकिस्तान और इंडिया के songs भी आपके लिए एक के बाद एक हम लेकर आते हैं. आपके favorite artist ने जो गाया है, जो कुछ गाने आपने बहुत कम बार सुने होंगे, वो सभी कुछ एक एक करके हम लेकर आते हैं आपके लिए. और बहुत पहले आपने सुना होगा ऐसे भी म्यूज़िक को हम आपके लिए पेश करेंगे, ताकि आपकी यादें ताज़ा हो सके और आप याद कर पाए ऐसे गाने, कोक स्टूडियो के सॉन्ग्स जो बहुत पॉपुलर रह चुके हैं बाय लिसनिंग टू देम अगेन हमारे शो में. तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं कोक स्टूडियो के बारे में लेकर आया हूं, जो आप आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा. लेकिन फिलहाल दो बैक टू बैक सॉन्ग्स मैं आपको सुनाता हूं. एंजॉय एवरीवन. मैं क्रिश

0: Coke Studio Reloaded.
1: Coke Studio Reloaded में आपका स्वागत है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. Enjoy किया होगा आपने फर्स्ट बैक टू बैक सॉन्ग्स, और भी ऐसे बैक टू बैक सॉन्ग्स हम आपके लिए लेकर आएंगे. लेकिन कोक स्टूडियो पर कुछ रेयर और फन फैक्ट्स मैं आपको देना चाहूँगा. क्या आपको पता है कि बोहिमिया कोक स्टूडियो पाकिस्तान के फर्स्ट रैपर थे? ये सीजन 5 में अपीयर हुए थे 2013 में. और अनयूजुअल मूव एट ए टाइम व्हेन द शो वाज स्टिल हेवीली एसोसिएटेड विद क्लासिकल फोक और पॉप म्यूजिक, लेकिन उसमें रैपर को भी मौका दिया गया था और बहुत ही बड़ा हिट हुआ ये जो इंट्रोडक्शन था ऑफ बोहिमिया. और बहुत ही फेमस नाम है क्योंकि ये काफ़ी गानों को गा चुके हैं और हम सुन चुके हैं इनको. और अली जफर एक्चुअली हैज़ एन अनयूजुअली लॉन्ग कोक स्टूडियो हिस्ट्री, इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा. अली जफर जिनको आपने बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा है, बॉलीवुड गानों को में भी सुना है, इनका भी एक अनयूजुअली लॉन्ग कोक स्टूडियो हिस्ट्री रहा है, इस पर जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा. फिलहाल कुछ और बैक टू बैक सॉन्ग्स आपके लिए.

इश्क भी आरा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ई बढ़िया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में, पर जिंदगी में सुकून।

वेलकम बैक एवरीवन, यू लिसनिंग टू कोक स्टूडियो रिलोडेड और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ 8 to 9 ये सेगमेंट चलता रहेगा बैक टू बैक कोक स्टूडियो इंडिया और पाकिस्तान के सॉन्ग्स भी आपके लिए हम पेश कर रहे हैं विद योर फेवरेट आर्टिस्ट. कुछ रेयर और फन फैक्ट्स भी हम लेकर आए हैं आपके लिए. अली जफर का जो हिस्ट्री है विद कोक स्टूडियो अनयूजुअली लॉन्ग रहा है. ये पहले अपीयर हुए थे इन द वेरी अर्ली सीजन्स एंड देन ही रिटर्न्ड इयर्स लेटर फॉर सीजन 8 और यहाँ पर इनका जर्नी खत्म नहीं हुआ. सब्सिक्वेंटली He appeared again in season 10 और इनका season 1 to 2 performances अगर देखा जाए तो both originals रहे हैं और a tribute रहा है to मोहम्मद जुमान. आपको याद होगा एक गाना है आफरीन आफरीन, कहा गया है कि this is a much longer song than most modern pop songs. जो कोक स्टूडियो वर्जन है it runs about 6 minutes 40 seconds while the performance is essentially a carefully बिल्ट वोकल डायलॉग जो राहत फ़तेह अली खान और मोमिना मुस्तशां के दरमियान हुआ था और बहुत ही पॉपुलर ये सॉन्ग है आफरीन आफरीन. ये गाना मैंने आपके लिए पहले प्ले भी किया है तो आपको याद होगा. बहुत ही प्यारा ये ट्रैक था जो कोक स्टूडियो पाकिस्तान ने रिलीज़ किया है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें बहुत ही जल्दी आपके लिए.

0: Studio Reloaded on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपके नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स कोक स्टूडियो रिलोडेड को आगे बढ़ाते हुए और भी बैक टू बैक सॉन्ग्स लेकर आए हैं। बट फर्स्ट कुछ और जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। हमेशा कोक स्टूडियो के बारे में जब कोई सुनते हैं तो आपको लगता है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट सिंगिंग लाइव टुगेदर, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है। इसके प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही वास्ट है और बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि सेपरेट म्यूजिकल अरेंजमेंट्स होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, मिक्सर्स, मास्टरिंग इंजीनियर्स होते हैं और वीडियो डायरेक्टर्स को भी रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सीजन 15 ब्लॉकबास्टर सॉन्ग कुल्फी के बारे में बात करूं, तो प्रोड्यूसर के तौर पर यहां पर तलाल खुरेशी थे। कुल्फी ने प्रोड्यूस किया था और तलाल खुरेशी ने को अरेंज और प्रोड्यूस भी किया था। एक और कलाकार थे क्रिस गहरिंगा, इन्होंने मास्टरिंग किया है और वहीं पर जिशान परवेज ने वीडियो को डायरेक्ट किया है। तो ज़रा सोचिए कि कितने लोगों का हाथ होता है जस्ट टू क्रिएट दैट पीस जो हम अभी पर्दों पर देखते हैं, सुनते हैं और कितना मज़ा आता है। कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा कि जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट का क्या और भी मतलब निकलता है, क्यों था ये कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था और क्या मकसद था, इस पर जानकारी मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। कुछ और गाने आपके लिए

0: Cafe on Hum.
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइड the best home loan advice for the last 20 years. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
3: Naya hybrid dhoond rahe ho? To Havel hi lo. Right now, Andrew Sims Merugao mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance lo. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Merugao. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
4: Night Cafe on Hum. Coke Studio Reloaded. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
5: Coke Studio Reloaded आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो पार्टली अबाउट ब्रिजिंग जनरेशंस और Coca-Cola's क्रिएटिव टीम ने स्पेसिफिकली देखा कि पाकिस्तानी म्यूज़िक वॉज ए वे टू कनेक्ट यंगर और ओल्डर ऑडियंसेस और दिस हेल्प्स एक्सप्लेन कि अनयूजुअल पेयरिंग कैसे हुआ ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिशंस विद कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। जरा सोचिए कि म्यूज़िक से भी बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, बहुत सारे मैसेजेस भी पास किया जा सकता है। तो वहीं पर ओल्डर ट्रेडिशनल म्यूजिशंस को यंगर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के साथ एक फ्यूजन गाना बनाकर कितने लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, कितने यंगर लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे, साथ ही में ओल्डर ऑडियंसेस भी अट्रैक्ट होंगे क्योंकि गाना ही ऐसा कुछ बन के निकला है। आर्ट लोगों को खींचता है अपनी तरफ और आर्ट से ही सभी कुछ कम्युनिटी जुड़ता है। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट रहा है अबाउट कोक स्टूडियो रिलोडेड। कुछ और जानकारी मैं आपको दूंगा बहुत ही जल्दी। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो कोक स्टूडियो रिलोडेड ऑन हम।

0: Reloaded. We are almost at the end of Coke Studio Reloaded program, जो 9 p.m. तक आपके लिए चलता है. कुछ और गाने आपको सुनाएंगे जाने से पहले, लेकिन एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है. पसूरी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन ये सिर्फ एक पाकिस्तानी सक्सेस स्टोरी नहीं है. ये Spotify का मोस्ट स्ट्रीम्ड पाकिस्तानी सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम रहा है, अकॉर्डिंग टू द बिलबोर्ड रिपोर्ट साइटेड. और कहा गया है कि दिस इज टर्न्ड कोक स्टूडियो कोलैबोरेशन इनटू एन इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग फिनोमेनन. और कहा गया है कि जिस तरह से कोक स्टूडियो के गाने हैं, वहीं पर पाकिस्तानी वर्जन ने लगभग मोर देन 260 ओरिजिनल सॉन्ग्स को प्रोड्यूस किया है. बाय इट्स 15 सीजन प्रोग्राम हैड अक्यूमुलेटेड ओवर 5 बिलियन यूट्यूब स्ट्रीम्स, जिसमें यह कहा गया है कि ये रीच वास्टली बिगा रहा है देन सोचा गया था, जितना उम्मीद नहीं रखा गया था उससे बढ़कर इसको सक्सेस मिला है.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी, बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी, ब्रांड हो गया ना.
1: रुजबे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
4: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
5: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें.
4: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
5: पर डेवलपमेंट के पैसे
4: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
6: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all four weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply.
7: Get the Skinny!
8: Oh hey, if you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
9: Enroll, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
10: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Good evening to you with the latest at 9. I'm Jeff Ryan. Local Government NZ is challenging central government to do better with reform work as a rates cap is proposed. As one example, President Rehit Stoltz says councils face around $860 million in implementation costs for the new RMA system. Labour's health spokesperson Aisha Verrill says the party, if elected, will reinstate its smoke-free generation policy that was repealed by the current government in 2024. And a wintry blast set to hit parts of the South Island from tomorrow. The storm will bring prolonged downpours. In sport, the Warriors match day squad to play the Knights on Sunday afternoon. Halfback Tamira Martin comes back from injury and will partner Chanel Harris-Tavita in the halves. And winger Dallin Watene-Zelezniak broke his collarbone last weekend. Replacing him on debut is Luke Laulili. Rugby league with Machinery House in a league of their own. And the All Blacks play the Lions at Ellis Park from 5 in the morning. This game could serve as a decider for a lock vacancy for that second test in Cape Town this Sunday morning.
0: Sports News,
10: brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits.
0: You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Swagat hai aapka Night Cafe mein. Aur raat 12 tak ye aapke liye chalta rahega. Kuch samajik soochnaen hamare paas hai. Divya Shakti Charitable Trust Shri Krishna Janmashtami Utsav celebrate karenge from 29th August to 4th September at the Cave. 5x57 Cavendish Drive, Manukau, opposite warehouse from 7:30 PM. Iske alawa Ram Krishna Mandir, 25 Onslow Avenue, Manukau. Sabhi dharm premier ko sadhara mantran de rahe hain. Shri Janmashtami Utsav ke liye jo 29th August to 4th September rahega at Ram Krishna Mandir, 25 Onslow Avenue, Manukau, from 7:30 PM. Sathi mein New Zealand Sangam, NZ Sangam, is pleased to invite Krishna Janmashtami ke liye sari devotees ko, jo 28th August to 4th September rahega, Deco of Elegance mein, 16 Lembi Drive, Manukau. 7:30 PM se ye puja shuru hoga. Katha vyas rahenge Nalesh Naidu. Sathi mein Shri Ram Mandir, 11 Brick Street, Henderson dwara sadhara mantran hai. Krishna Janmashtami ke liye jo 29th August se shuru hoga aur khatam hoga Friday 4th September. यहाँ पर भी आप जा सकते हैं. आचार्य रहेंगे श्री कैलाशचार्य जी और सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है. सुनते रहो हम, मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ. वी आर प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स फॉर यू ओनली ऑन हम.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hun. Unfiltered Drive podcast sunna na bhule kyunki bahut interesting conversation yahan par hoga. Yuvraj Singh ke saath mein, from classroom to company, young entrepreneurs exploring New Zealand. Ye topic par baatein hogi. Kya hota hai jab a group of secondary school students decide karte hain to turn an idea into a real business? Pure magic hota hai. Aur yahi Yuvraj Singh, a member of Explore, ye batayenge. Ek student run business hai, taking part in New Zealand's Young Enterprise Scheme. Yes, inko kaha jata hai. Explore ko create kiya gaya tha as an innovative card game jo encourage karenge tourists aur locals ko ki ve discover kare New Zealand's hidden gem aur lesser known destinations. Through the game, players learn about stories, culture aur attractions जो इन जगहों को बहुत यूनिक बनाता है और जो यूजुअल टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स के से हटकर इन डेस्टिनेशंस को भी प्रमोट किया जा रहा है ताकि लोगों को इनके बारे में पता चले. फ्रॉम कमिंग अप विद द आइडिया टू अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स और कैसे ये प्रोडक्ट को बिल्ड किया गया और कैसे ये कम्पीट कर रहे हैं इन येस ये एपिसोड में आप सुनेंगे कि इनका जर्नी कैसे रहा है ऑफ ए न्यू जनरेशन कीवी बिजनेस माइंड्स जो ये बात प्रूव करता है कि आपको अडल्ट होने की ज़रूरत नहीं है टू स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग मीनिंगफुल. आप इस उम्र में भी ये कर दिखा सकते हैं. ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर फॉर ए फुल ऑडियो और सर्च अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुज़बे ऑन रोवा और स्पॉटिफाई और ये पॉडकास्ट का एक्सेस आपको मिल जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वी गॉट टू गो आर यू रेडी
3: कम एंड टेक अ ट्रिप विद मी
4: Please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now. To lock in your entry to win, to return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
5: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
6: Let's go.
5: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
8: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
7: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846 9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई

0: कैफे ऑन हम।
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। फादर्स डे प्रमोशन भी हम पर शुरू कर दिया गया है। डैड्स रिवर्स ग्रिल के बारे में आपने सुना होगा। क्या आपको लगता है कि आपको डैड को सब कुछ पता है? लेट अस पुट हिम टू टेस्ट। हम हमारे साथियों द्वारा आपके डैड से कुछ सवाल, कुछ फन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनफैक्ट अबाउट मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज किबरी, या फिर वॉट एग्जैक्टली इज एन ईसिम। इस तरह से आप एंटर हो पाएंगे। डैड कॉल कर सकते हैं ऑन 0800-004-866 पर टू आंसर दी क्वेश्चंस। अगर वो करेक्टली आंसर करते हैं तो फिर उनका नाम ड्रॉ में शामिल हो जाएगा। 4 सितंबर को एक लकी डैड को का नाम ड्रॉ से निकाला जाएगा और वो $500 कैश जीत पाएंगे। इमेजिन कीजिए, $500 कैश आपके डैड को मिल सकता है। सो वी वांट टू नो, इज़ योर डैड एक्चुअली अप विद द टाइम्स, या फिर इज ही स्टिल ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट, जैसे हम काफ़ी लोग करते हैं। डैड को कहिए कि वो हम सुनते रहे और गेट हिम टू आंसर क्वेश्चन, और वो $500 रिचा हो सकते हैं दिस फादर्स डे। ड्रॉ 4 सितंबर को होगा। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ रक्षाबंधन स्पेशल सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू. आपने जो एक्चुअल वर्क होता है उनका रिव्यू के बारे में सुना होगा, लेकिन अपने सिबलिंग को रिव्यू करना ये भी एक टास्क है आपके लिए जो हम लेकर आए हैं. थिंक योर ब्रदर और सिस्टर डिजर्व्स अ ग्लोइंग रिव्यू और नीड्स अ सीरियस अप्रेजल. आप कॉल करें जब हमारे साथ ही आपको इन्वाइट करते हैं टू गो लाइव ऑन एयर और ऑफिशियल परफॉर्मेंस रिव्यू आप उनको दे पाएंगे. रिव्यू में आप उनको मतलब इन चीज़ों पर इंक्लूड कर सकते हैं, बेस्ट और वर्स्ट सिबलिंग एवर, बोरोइंग योर स्टफ़ विदाउट आस्किंग, या हमेशा ट्रबल में होना, या आपका बिगेस्ट सपोर्टर बनना, या आपको अनॉय करना 24/7. आप अपने रिव्यूज़ को शेयर करें और ड्रॉ में शामिल होकर कैश जीतने का मौका है. टू लकी विनर्स को $250 ईच दिया जाएगा. 28 अगस्त को ड्रॉ होगा और दो विनर्स को चुना जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
4: डॉक्टर ने क्या बोला?
5: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
4: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
6: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
7: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North Indian Advisory Limited trading as Assured One is a licensed financial advice provider.
8: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein, plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes, or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09 277 6644. T's and C's apply.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Hum boarding call is now open. Dream Island Escape jeetne ka mauka hai. It could be just one boarding call away. Do return air tickets to Vanuatu with Solomon Airlines plus $1,000 spending money jeetne ka mauka hai. Is tarah se aap enter kar payenge. Aap hum ko sune every weekday aur apne kaan ko khule rakhe for the special boarding call. 8 a.m. 11 a.m., 1 p.m. और 5 p.m. होगा. जैसे आप ये बोर्डिंग कॉल सुनते हैं, आपके पास 30 मिनट्स है टू हेड टू रोवा एंड एंटर बोर्ड नाउ. दैट्स इट. आपको बस बोर्ड नाउ लिखना है और आप ड्रॉ में शामिल होकर अनफॉरगेटेबल वनुआतू गेटअवे जीत पाएंगे विद सोलोमन एयरलाइंस. और अपना फ्लाइट ना मिस करें, बिकॉज दिस कुड टेक यू टू पैराडाइज थैंक्स टू सोलोमन आइलैंड्स फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनुआतू. आप विजिट कर सकते हैं flysolomons.com पर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम। Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
6: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
7: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
8: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
9: Join our tribe!
8: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
9: join our tribe!
1: The beat of Bollywood.
2: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
1: Night Cafe.
10: You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hun. Imagine kijiye two countries, one epic adventure, zero stress. Sirf 12 spaces rahe gaye. Bali aur Bangkok getaway with Sandy and Rusbe March 2027 mein hone ja raha hai. Bali ka visit karna, Bangkok mein tuk tuk mein safar karna, majestic temples dekhna, bargains inke colorful market se lena. माउथ वाटरिंग स्ट्रीट फूड का भी मज़ा लेना और वहीं बाली में वाटरफॉल्स, वॉकिंग थ्रू ब्रेथ टेकिंग राइस टेरेसेस, स्विंगिंग अबव लश जंगल्स, ये सभी कुछ हो सकता है। तो ट्रेवल विद सैंडी और रुस्बे, ये आपको लेकर जाएंगे ऐसे हॉटस्पॉट्स पर जिसका आपने जिक्र सुना होगा लेकिन कभी आप गए नहीं हैं। इट्स ऑल प्लान्ड, इट्स ऑल इंक्लूसिव, ऑल यू हैव टू डू इज़ पैक योर बैग्स। अर्ली बर्ड बोनस भी यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर आप ट्रिप अगस्त के दौरान बुक करते हैं तो वन फ्री नाइट्स अकोमोडेशन कहीं पर भी न्यूजीलैंड में आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट फॉर टू। सीट्स लिमिटेड है, बहुत ही जल्दी सीट्स भर जाएंगे। ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर फॉर दी ऑल एक्सक्लूसिव टूर प्राइस, या सन टूअर्स को कॉल करें 0800-4SUN-TOURS यानी 0800-4786-8688 पर, और बिफोर द स्पॉट इज गॉन आपको सिक्योर कर लेना है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम।

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Ek aur Father's Day promotion hamare paas hai. Very interesting one. Dad's AI upgrade. Ye Father's Day, hum aapke dad ko ek superhero ke avatar mein dekhna chahenge. I know ki har ek dad mein ek superhero unke andar chupa hota hai. Aapko creative hona hai. Ek dad ka photo lijiye aur unko badaliye into an AI generated superhero. और हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाकर पोस्ट कीजिए. $300 कैश जीतने का मौका है. तो कैसे आप एंटर कर पाएंगे? एक AI जनरेटेड सुपर हीरो फोटो ऑफ योर डैड बनाए और पोस्ट कीजिए इन द कमेंट्स ऑफ द कंपटीशन पोस्ट हमारे फेसबुक पर, हम 104.2 FM पर. और अपने डैड को टैग करना ना भूले, ये बहुत ज़रूरी है. एंड गेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लाइक योर डैड्स फोटो और कॉम्पिटिशन पोस्ट. मतलब फ्रेंड्स और फैमिलीज को लाइक करना पड़ेगा. और याद रहे, जो भी आपके डैड के फोटो को लाइक करता है, दे मस्ट बी फॉलोइंग हम फेसबुक पेज और उनको कॉम्पिटिशन पोस्ट को लाइक करना होगा. सारे एंट्रीज को ड्रो में शामिल किया जाएगा और उन एंट्रीज को ही जो सारे रिक्वायरमेंट्स मीट करेंगे टू विन $300 कैश. 4 सितंबर को ड्रो होगा. टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे वेबसाइट पर आपको मिलेगा. तो अपने डैड के लिए एक AI जनरेटेड सुपर हीरो फोटो आप ज़रूर बनाएं, द मोस्ट क्रिएटिव वे यू कैन. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
2: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
3: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 8 years.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
0: Changing lives with logic.
7: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Ryan. Local Government NZ says capping rates will hamstring already constrained councils. The government's moving ahead with its plans to cap the amount councils can increase rates by to a maximum of 4%. Local Government Minister Simon Watts says his proposed rates cap is another step towards the basics. A serious crash on Auckland's North Shore this evening, with emergency services called to Woolworths Sunnynook. At the intersection of Sunnynook Road and Sycamore Drive, a pedestrian has been seriously injured. And a significant winter storm looming for parts of the South Island, warnings and watches kick in tomorrow. In sport, the Warriors match day squad for the home clash against the Knights on Sunday afternoon. Halfback Tamaira Martin is back from injury and will partner Chanel Harris-Tavita in the halves. Luke Hanson's in the reserves. On the wing, a Warriors debut for young Tigers recruit Luke Laulili. Rugby league with Machinery House and a league of their own. And the last of the non-test matches for the All Blacks on the greatest rivalry tour. The ABs taking on the Lions. They're back at Ellis Park. Kick off at 5 in the morning.

0: Murphy on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: You're with Krish on Hum, playing Bollywood's biggest hits. Raksha Bandhan ke dauran, aap $300 cash jeet payenge. Hamare Facebook page par jaye. Sibling bonds ko expensive gifts se nahi dekha jata hai ya tola jata hai. In fact, ordinary objects aur extraordinary memories hi hamare liye kafi hota hai. Jaise old cassette tape ho ya ek shared key ho, stolen t-shirt ho shayad. रक्षाबंधन पोस्ट हमने फेसबुक पेज पर डाला है, हम फेसबुक पेज पर. आप हमारे फेसबुक पेज पर जाए, एक फोटो अपलोड करें ऑफ वन मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट इन द कमेंट सेक्शन. दो तीन सेंटेंसेस आप जरूर लिखें अबाउट द मेमोरी जो इससे जुड़ी है, और टैग योर सिबलिंग. ड्रो में शामिल होकर $300 जीतने का मौका है. विनिंग स्टोरी को लाइव रेडियो पर पढ़ा जाएगा ऑन एयर ऑन फ्राइडे 28 अगस्त, और $300 कैश गिव अवे अनाउंसमेंट भी विनर को दिया जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना. अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilieservices.nz पर विजिट करें. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.
2: लव यू अनकंडीशनली सोनिया. लव यू अनकंडीशनली.

0: Murphy on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. Ek aur Father's Day promotion hamare paas, a very interesting one. Dad's AI upgrade. Ye Father's Day, hum aapke dad ko ek super hero ke avatar mein dekhna chahenge. I know ki har ek dad mein ek super hero unke andar chupa hota hai. Aapko creative hona hai. Ek dad ka photo lijiye aur unko badaliye into an AI generated superhero. और हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाकर पोस्ट कीजिए. $300 कैश जीतने का मौका है. तो कैसे आप एंटर कर पाएंगे, एक AI जनरेटेड सुपर हीरो फोटो ऑफ योर डैड बनाए और पोस्ट कीजिए इन द कमेंट्स ऑफ द कंपटीशन पोस्ट हमारे फेसबुक पर, हम 104.2 FM पर. और अपने डैड को टैग करना ना भूले, ये बहुत ज़रूरी है. एंड गेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लाइक योर डैड्स फोटो और कॉम्पिटिशन पोस्ट. मतलब फ्रेंड्स और फैमिलीज को लाइक करना पड़ेगा. और याद रहे, जो भी आपके डैड के फोटो को लाइक करता है, दे मस्ट बी फॉलोइंग हम फेसबुक पेज और उनको कॉम्पिटिशन पोस्ट को लाइक करना होगा. सारे एंट्रीज को ड्रो में शामिल किया जाएगा और उन एंट्रीज को ही जो सारे रिक्वायरमेंट्स मीट करेंगे टू विन $300 कैश. 4 सितंबर को ड्रो होगा. टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे वेबसाइट पर आपको मिलेगा. तो अपने डैड के लिए एक AI जनरेटेड सुपर हीरो फोटो आप जरूर बनाएं, द मोस्ट क्रिएटिव वे यू कैन. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे यहीं पर खत्म होता है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. कल हमारी मुलाकात होती है, कल वेंसडे है तो मिड वीक मसाला लेकर आएंगे जिसमें बॉलीवुड गॉसिप भी हमारे साथ होगा. अपना बहुत ही ख्याल रखे, कृष्ण बहुत प्यार से मुलाकात होती है.
2: आपकी क्लास लेते थे लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की.
0: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल.
2: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश.
0: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300. डैड को रेडी करो, खुश करो.
2: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स.
3: व्हाई जस्ट गेट थ्रू विंटर व्हेन यू कैन स्पार्कल थ्रू इट. Enjoy the winter sparkle celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
4: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. TCs, fees and credit criteria apply.
5: Floor

0: ब्रांच में है।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूँ।

0: हमारी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
3: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years. Night Flight.

0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: Playing Bollywood's biggest hits.
4: Budget gaane.

0: नाचना
1: यार नाचना।
2: अरे
1: अरे
2: छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा
3: नाचना। भैन की सगाई चे तो भाईनू नचना ही पैंदा।
2: हाँ हाँ, तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
4: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
5: ऐ गल चंगी बोली।
6: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं, मुझे नहीं नाचना।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very
2: acceleration. That's a very acceleration.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

एक पल में जो आकर गुजर जाता है, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।

0: Attention everyone, हम बूडरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूडरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए।

0: को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल. रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंटेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स. PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स. अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर.
1: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
1: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
3: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
4: चॉइस आपकी है एट विंगर मोटर्स. सेलेक्टेड नए ओमुडा और जेकू मॉडल्स पर पाइए 3.9% फाइनेंस या $2,000 कैशबैक. प्रीमियम डिजाइन, टेक्नोलॉजी और जबरदस्त वैल्यू. सुपर हाइब्रिड सिस्टम.

ही पूछ है किसकी बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ। अच्छा
6: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
0: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the winter sparkle celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन। प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर, तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए। हरी, विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर, ऑकलैंड।
1: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
2: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: हाँ।
0: नाइट फ्लाइट।

मैट्रेस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines, plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88-600.
4: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
5: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
6: अब हमारा क्या होगा?
7: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
5: तो क्या करें?
8: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
9: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the winter sparkle celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए हरी विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर ऑकलैंड
10: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

0: Driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: Commonwealth Vault aapke precious belongings ko rakhta hai safe aur secure. Gold, bullion aur precious metals ki value jab all time high pe hai, tab ye pehle se kahin zyada zaruri hai ki aapke assets theft aur natural disaster se protected rahe. Jab aap apne valuables Commonwealth Vault ko entrust karte hain, to aapko milta hai peace of mind. Ye jante hue ki wo safe, secure aur protected rahenge. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.co.nz. That's commonwealthvault.co.nz.
3: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
4: Indelible Homes, your building expert.
5: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge 10kg front loader and heat pump dryer, sleek grey set, $11.99. Huge black stainless steel side-by-side fridge freezers, $6.99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
2: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.
6: डॉक्टर ने क्या बोला?
7: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
6: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
8: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक. हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अश्योर वन. माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड.
9: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे. कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA. दैट्स HIRA. और विजिट ashurevan.co.nz. नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अश्योर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर.
6: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
7: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
6: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
6: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा.
9: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
10: हम टाइम चेक.
11: गुड मॉर्निंग, इस समय 2 मिनट हो रहे हैं 6:00.
10: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक.
12: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. The election countdown could be putting pressure on Parliament to pass legislation quickly. Around 100 bills are still waiting approval, with the House to dissolve in just 5 weeks. Professor Alexander Gillespie says the government should give a detailed breakdown.
13: It is an ethical obligation, I think, to be as clear as you can in a democracy with the decision-making bodies. The more the public knows what's going on, the better it is.
12: An Auckland supermarket is closed until further notice after a serious incident in its car park. Police reported a crash between a car and a pedestrian on the corner of Sunny Nook Road and Sycamore Drive last evening. Sunny Nook Woolworths followed with a statement saying it's closed and it's cooperating fully with authorities. South Whited Upper's Whip Mayor warns the government's 4% rates increase cap could mean less money for roads and services. Dame Fran Wild wonders how councils will be able to keep up.
14: You can't spend no money for many years and then expect your infrastructure to be working. But if it's a hard cap on 4%, that will be very difficult for us.
12: And the Australian music industry is cracking down on AI-produced songs. Those largely or wholly created by using the tech are banned from the country's music charts. ARIA says it's not interested in promoting or celebrating the success of AI-generated music. In sport, the All Blacks are in danger of losing their first game on the tour of South Africa. The Lions scored 2 tries in the first 7 minutes and lead 21-17 at halftime in Johannesburg. Ethan Blackadder narrowed the scoreline just before the break on Sky Sport.
15: Now the All Blacks keep it alive. Oh, this is sensational! Play by the All Blacks, and Ethan Blackadder has another try for them here at Ellis Park tonight.
12: Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. Exclusive Bledisloe Cup packages selling now.
10: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
0: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस।
16: सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय जोज केदारनाथ और राजमती के पुत्र यानी करिश्मा सिंह, कविने लाल और कविता लाल के पिता तथा मंजिला लाल के पति नईता तरनावुआ के भूतपूर्व निवासी फ्लैटबुश के हीरा लाल उर्फ बुड्ढा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार के दिन में 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-534-317 पर संपर्क कर सकते हैं। स्वर्गीय जोज केदारनाथ और राजमती के पुत्र यानी मंजिला लाल के पति और करिश्मा सिंह, कविने लाल और कविता लाल के पिता नईता तरनावुआ के भूतपूर्व निवासी फ्लैटबुश के हीरा लाल उर्फ बुड्ढा की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार को 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-534-317 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
10: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
17: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
10: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
11: सुपर सिटी ऑकलैंड में फिलहाल टेम्परेचर है 10.3 डिग्रीज और आज हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर। ओवरनाइट टेम्परेचर आज का रहेगा 11 डिग्रीज। मौसम के लिए कहा गया है पार्टली क्लाउडी विद आइसोलेटेड शावर्स। सनराइज इसी घंटे 6:50 AM पर और सनसेट 5:57 PM पर होगा आज।
10: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
18: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजोरस मनको। English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
10: Breakfast catch up. The breakfast show with Vijay and Pooja.
19: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
11: Hello, Kiora. Good morning. Namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Aapke liye hum lekar aa rahe hain. Aaj ke safar mein, jahan par Wednesday 26th of August hai aaj. Good morning aapko.
16: Good morning.
11: कैसे आप?
16: I'm okay.
11: और कैसे हो रही है आज आपकी वेंसडे की सुबह की शुरुआत?
16: अच्छी शुरुआत है और एक बार फिर आगे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपका साथ देने के लिए। होपफुली आप सभी भी ठीक ठाक होंगे और एक नए दिन एक नई सुबह के लिए तैयार होंगे।
11: बिल्कुल, कहते हैं ना कि सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो दिन पूरा अच्छा बीतता है। और एक और एक चीज़ वो भी होती है कि किस तरह से हम अपनी सुबह की शुरुआत कर रहे हैं। अगर उठते ही कहीं ना कहीं एक अलग तरह का बिगिनिंग हो, एज इन इफ़ यू वेकिंग अप आप एकदम रश कर रहे हैं, एकदम भाग रहे हैं टू मीट योर डेडलाइंस इन द मॉर्निंग कि इतने बजे तक नहा लेना है, इतने बजे तक तैयार हो जाना है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं थोड़ी देर से आपकी आँख खुली है और रश रश में आप अपनी सुबह की शुरुआत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा दिन आपका वैसा ना बीते। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपने टाइम पर जाग चुके हैं या फिर टाइम से पहले जाग चुके हैं, मोर देन इनफ टाइम है आपके पास बाकी चीज़ों करने के लिए, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक।
16: तो चलिए, आज वेंसडे है और 26th of August, आज के ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो जहाँ कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं। इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इस दिन को अच्छी शुरुआत देने की कोशिश करने के लिए आपके साथ हम शामिल हो गए हैं।

0: Sunny Side Up.
1: आज की सनी साइड अप स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुल. इमेजिन कि आप 13 साल की उम्र के हैं और 13 साल में यू हैव डिसाइडेड कि आपको अपनी मम्मी के लिए एक गाड़ी जो है ये लेनी है. ये आपके लिए पॉसिबल है या नहीं ये थोड़ा मुश्किल है अभी जानना, पर ऐसा एग्जैक्टली हुआ नेवाडा यूएसए के एक टीनेजर विलियम रुबिलो के साथ. विलियम की मम्मी जो है क्रिस्टल, बैक इन 2019 शी वाज स्ट्रगलिंग अलॉट और उनके पास इनफैक्ट खुद की गाड़ी भी नहीं थी टू कम्यूट टू वर्क एंड ऑल. तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती थी जिसमें उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती थी, पैसे भी काफ़ी खर्च होते थे एंड शी वाज अ सिंगल मम. तो विलियम जो है इन्होंने ये जाना था कि उनकी मम्मी जो है ये बहुत मेहनत करती हैं और इनको सरप्राइज करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि वो अपनी मम्मी को एक गाड़ी जो है ये गिफ्ट करेंगे.
2: ओके.
1: और अपेरेंटली उन्होंने एक सेकंड हैंड 1999 शेवरले मेट्रो जो है ये ढूंढ भी ली फेसबुक पर. और उन्होंने जो गाड़ी के मालिक है उनके साथ नेगोशिएट किया और काफ़ी अनयूजुअल डील जो है ये इनको मिली. इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश विलियम ने अपना जो एक्सबॉक्स है ये ट्रेड किया और जो गाड़ी के मालिक है उनसे वादा किया कि बदले में, पैसों के बदले में वो उनके लिए उनके यार्ड में कुछ काम कर देंगे, साफ सफाई का काम जो ये कर देंगे.
2: अच्छा.
1: तो लेबर जो है ये कर देंगे उनके लिए, लेबर वर्क क्लीनिंग के मामले में, और अपना एक्सबॉक्स जो है ये भी उनको दे देंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे. सो द इंटरेस्टिंग थिंग वॉज दैट द कार ओनर एक्चुअली अग्रीड और ही केप्ट द होल थिंग सीक्रेट फ्रॉम हिज मम. और एक दिन वो अपनी माँ को अपने घर के बाहर लेकर गए और उनके हाथों में उन्होंने गाड़ी की चाबी थमाई, गाड़ी के पेपर्स जो है ये थमाए और ये कहा कि ये गाड़ी आज से आपकी. उनकी मम्मी कम्प्लीटली ओवरवेल्म हो गई और फिर उन्होंने डेफिनेटली रोना जो ये शुरू कर दिया बिकॉज शी जस्ट कुडंट होल्ड हर इमोशंस इन दैट मोमेंट. बाद में चलकर उन्होंने ये पूरी कहानी जो है ये ऑनलाइन शेयर की और इट वेंट वायरल दिस पर्टिकुलर स्टोरी. और जब विलियम से यू नो आसपास के न्यूज़ चैनल्स वालों ने भी उनसे यही सवाल किया कि ये ख्याल आपके मन में एक्चुअली आया कहां से कि मम्मी को गाड़ी गिफ्ट करनी है. जिस पर उन्होंने यही कहा कि उन्होंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे थे ऑफ पीपल सरप्राइजिंग देयर पेरेंट्स विद कार्स, तो वो भी ऐसा कुछ अपनी माँ के लिए करना चाहते थे. एंड जस्ट बिकॉज उनकी मम्मी का सिचुएशन ऐसा था भी जहां पर शी एक्चुअली नीडेड अ कार, तो उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी ये सपना जो है पूरा करने के लिए.
2: The story is really sweet,

0: डॉक्टर, यू नो आई एम सरप्राइज्ड कि गाड़ी का मालिक इस तरह के डील के लिए मान गया।
1: हाँ, क्योंकि बच्चा था और शायद गाड़ी का वैल्यू जो है उनके लिए उस बच्चे के इमोशन से ज्यादा थे। Probably that's why. And he might have found this reason ना कि क्यों वो ये गाड़ी लेना चाहता है।
0: Okay.
1: कभी कभी ऐसा होता है, you come across such people who change your life and make you believe in kindness a little bit more.
0: तो मानवता जो है, इंसानियत जो है, दुनिया में है, लोग अभी भी इमोशंस की कद्र करते हैं, चाहे वो अपने हो, पराए हो, और ये कहानी इसका एक जीता जागता सबूत है।
1: तो आज की सनी साइड अप स्टोरी खास आप सबके लिए, जिसके साथ एक पॉजिटिव शुरुआत हम और आप एक साथ मिलकर कर रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live out your California dreams in LA or San Francisco. Take a relaxing break in stunning Honolulu. Or why not finally take that trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong? Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
4: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोगांव में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविस हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोगांव हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: A safe night can change everything. That's why Contact donates the energy to power women's refuge. This winter, when you donate a safe night for someone seeking safety, we'll match it up to 5,000 nights. Donate now at safenight.nz.
6: You filled the pinata before I sealed it, right?
7: No, you did.
6: Oh, I thought you did.
8: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
9: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
10: The beat of Bollywood.
11: World's best, hamari koi branch nahi hai.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
13: Global Headlines.
14: सुबह के मुख्य समाचारों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीजा पर $103,265 की नई फीस लगाने का प्रपोजल दिया है जिसका मकसद अमेरिकन वर्कर्स की हायरिंग को बढ़ावा देना और इमिग्रेशन कॉस्ट रिकवर करना है. पहले जून में एक फेडरल जज ने $100,000 फी लगाने के फैसले को रद्द कर दिया था ये कहते हुए कि प्रेसिडेंट के पास ऐसा टैक्स लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है. ये प्रपोज्ड रूल अभी फाइनल नहीं हुआ है और 30 दिनों के पब्लिक कमेंट पीरियड के बाद ही आगे बढ़ेगा. जबकि इकोनॉमिस्ट का मानना है कि H-1B प्रोग्राम US कंपनीज की ग्रोथ के लिए जरूरी है. एयर इंडिया ने अपने ओनर्स टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस से $1.5 billion की फ्रेश इक्विटी फंडिंग मांगी है जबकि हाल ही में एयरलाइन को एक रिकॉर्ड एनुअल लॉस का सामना करना पड़ा है. मार्च में खत्म हुए फिस्कल ईयर में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को कुल मिलाकर $2.33 billion का नुकसान हुआ है जिसका असर सिंगापुर एयरलाइंस के प्रॉफिट्स पर भी पड़ा है. फाइनेंशियल चैलेंजेस के बावजूद एयरलाइन अपने फ्लीट के मल्टी बिलियन डॉलर रिफंड के लिए ये फंड्स चाहती है और फिलहाल इस फंडिंग रिक्वेस्ट पर दोनों शेयर होल्डर्स के बीच बातचीत चल रही है. फिजी में नांदी में टैक्सी ड्राइवर पर हुए हमले और लूट के मामले में शामिल एक आरोपी ने सरेंडर कर दिया है जबकि बाकी दो सस्पेक्ट्स की तलाश जारी है. पुलिस ने बताया कि सरेंडर करने वाले आरोपी से लोटो का पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही है और वेस्टर्न डिवीजन टास्क फोर्स बाकी आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई है। ICP कसियानो वुसनी इलावे ने कहा कि इनोसेंट लोगों पर होने वाले ऐसे बुजदिलाना हमलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑल ब्लैक्स और साथ में लायंस के बीच फिलहाल अभी एक बहुत ही जबरदस्त मैच खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका में हो रहे ये मैच अभी दूसरे हिस्से में जारी है और लायंस की जीत ऑल ब्लैक्स के खिलाफ 35-31 से हो रही है। इस मैच पर और भी अपडेट्स हम आपको बारी बारी से देते रहेंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
2: Bollywood's most wanted.
15: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
16: मैं लाऊं अपना A game.
17: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: बेनी दयाल और साथ में शालमली खोलकड़ी को आप सुन रहे थे. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स जिस साल ये गाना रिलीज हुआ, आई थिंक उस साल का सबसे फेवरेट सॉन्ग जो है ये गाना साबित हुआ था. द मूवी ऑफ कोर्स रेस 2 जिसका ये गाना आज आपको हम सुना रहे थे और उम्मीद है कि आपने ये गाना एंजॉय किया. चार्ट बस्टर्स में आपके लिए हमने इसे पेश किया. राइट नाउ बॉलीवुड की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है ये आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं वेरी क्विकली. देयर इज अ लॉट दैट्स हैपनिंग बट रीसेंट अपडेट्स जो सामने आए हैं वो है इन रिगार्ड्स विद रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच हो रहा जो यू नो डिस्प्यूट इन रिगार्ड्स विद डॉन 3. आपको इसके बारे में पता है?
1: या ग्लोबली इसके बारे में बहुत बातें चल रही हैं ऑलरेडी.
0: तो अभी कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं एंड द डिस्प्यूट सराउंडिंग रणवीर्स डिपार्चर फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की डॉन 3 को लेकर. इसमें कोई भी साइंस ऑफ सेटलिंग जो है ये अभी तक नज़र नहीं आए. इवन आफ्टर 8 मंथ्स जबकि ये पूरी की पूरी सिचुएशन शुरू हुई थी, इसके 8 महीने हो चुके हैं ये सिचुएशन शुरू हुए जहाँ पर रणवीर ऑप्टेड आउट ऑफ द मूवी एंड उसके बाद में चलकर इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेने जाने की बातें जो है ये भी हुई. तो लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि एक मीटिंग हुई है इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की, विच इज़ IMPPA, 18th of August को. और यहाँ पर रणवीर सिंह की लीगल टीम जो है रिपोर्टेडली वो मौजूद थे जिन्होंने उनका पोजीशन काफ़ी क्लियरली स्टेट कर दिया है. उनका कहना है कि इंडस्ट्री बॉडी शुड स्टे आउट ऑफ द डिस्प्यूट एंड एनी डिसीजन अगेंस्ट द एक्टर कुड प्रॉम्प्ट लीगल एक्शन.
1: ओके.
0: नई रिपोर्ट के अनुसार रणवीर सिंह के लॉयर्स ने सबमिट किए हैं फ्रेश लेटर ड्यूरिंग द मीटिंग और उन्होंने ये कहा है कि जो इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है डिड नॉट हैव द अथॉरिटी टू एडजुडिकेट इन द मैटर. और उसके बाद चलकर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो किसी भी तरह का या उनके एसोसिएशन का कोई भी किसी भी तरह का यू नो रेजोल्यूशन पास करते हैं अगेंस्ट रणवीर सिंह तो इनके खिलाफ लीगल एक्शन जो है ये लिया जा सकता है.
1: वाओ.
0: सो ही इज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने इनकी ओर से बातें जो है काफ़ी क्लियरली आम कर दी है. अब देखते हैं इसमें ये सिचुएशन जब सामने आया है तो आगे चलकर और क्या कुछ बातें जो है ये की जाती है इस मामले में.
1: ये तो वक्त ही बताएगा क्योंकि दिस मैटर डज नॉट सीम टू बी सेटलिंग और दोनों ओर से अपनी अपनी बातें जो है ये कही जा रही हैं. बट लेट्स सी अब एक नया ट्रेंड जो आया है, हाउ डज इट वर्क आउट फॉर रणवीर सिंह ओ फरहान अख्तर.
0: या एब्सोल्युटली. तो एनी अपडेट्स इन रिगार्ड्स विद दिस आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे. कमिंग अप नेक्स्ट, आज वेंसडे 26th of August के बारे में बातें करेंगे और हो सका तो आपके लिए एक और एक डिटेल लेकर आए हैं. दिस इज इन रिगार्ड्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ इमरजेंसी कॉल्स जो किए गए थे सेंट जॉन्स को फॉर एम्बुलेंस सर्विसेज लास्ट वीक. कितने कॉल्स गए हैं इनके पास, इस पर कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे.
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: अटेंशन हम पैसेंजर्स, योर नेक्स्ट बोर्डिंग कॉल कुड टेक यू टू पैराडाइज. लिसन आउट फॉर योर स्पेशल हम बोर्डिंग कॉल फॉर योर चांस टू विन टू रिटर्न टिकट्स टू वनुआटू विद सोलोमन एयरलाइंस.
4: लेट्स टेक अ वेकेशन
2: एंड $1,000 स्पेंडिंग मनी
5: थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस. फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआटू. विजिट flysolomons.com. Accurate traffic.
6: Need a mortgage? Get Buddy.
7: A high of 18. A few fine spells, a mostly cloudy one all day today. Into the city, northern motorway starting to slow Constellation through to Sunnynook and some other patchy spots. 18 minutes Constellation to the city. Northwestern, 19 minutes in from Massey. Bit of traffic west of there at Te Aratu and Grey Lynn. Southern, 22 minutes in from Mataco. 42 from Drury. Slow patches, Manurewa to Papatoetoe.
6: For expert mortgage advice without the stress, start with Buddy. Call 0800 Buddy M.
8: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलुकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट. नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलुकाउ. हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: When India comes to town, Aotearoa feels different. Join the Cricket Nation pre-sale at nzc.nz and secure your tickets first, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
9: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
11: हाँ। अच्छा
10: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
11: मिसेस सिंह
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
13: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
14: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800 233 111. Indelible Homes, your building expert.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
3: अभी 21 मिनट रह गए हैं 7 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा 104.2 एफएम और रोवर पर. और थैंक यू सो मच सुबह सुबह हमें याद करने के लिए मिस्टर माटा माटा. राम राम, हैप्पी वेंसडे एवरीवन, हैव अ गुड डे. ये सुबह आपको मुबारक हो. गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हैव अ ग्रेट डे. मैंडी का मैसेज आए हैं और विनीता जी आपको भी ये सुबह मुबारक हो. बॉबी मान जी, हर सुबह की तरह आज भी आपने हमें याद किया है, शुक्रिया आपके वक्त और आपके मैसेज के लिए.
4: इनका मैसेज बड़ा कमाल का है आज तो. इन्होंने कहा है कि गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, मे यू बोथ हैव द मोस्ट फॉर्चुनेट डे ऑफ योर लाइव्स, ब्लेस्ड बाय गणेशा, चीयर्स एंड मी टू.
3: आज वेंसडे है ना,
4: इसीलिए वो इंडिकेट कर रहे, यू नो. सो थैंक यू सो मच बॉबी जी वंस अगेन आपके मैसेज के लिए. फिलहाल चलिए अब बारी है आज 26th ऑफ अगस्त को क्या कुछ मार्क किया जा रहा है इसके बारे में भी कुछ बातें जो ये कर ले. देयर इज अ लॉट दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड, दैट इज बीइंग मार्क्ड. और अगर आज आपका बर्थडे है तो वो भी आप हमें जरूर बता सकते हैं, क्योंकि अगले घंटे हम आपको विश भी करने वाले हैं ना.
3: हाँ जी, 5599 पर अपने मैसेजेस आप हमें जरूर भेजें. वैसे 26 अगस्त जो दिन होता है, इस दिन कई कंट्रीज में बट स्पेशली स्पेन में बहुत ही स्पेशल चीज मार्क की जाती है.
4: क्या?
3: ला टोमेटिना.
4: वो टमाटर वाला फेस्टिवल.
3: ये इनफैक्ट 1940s में स्टार्ट हुआ था.
4: हाँ.
3: एक छोटा सा शहर है स्पेन में बुनोल, और एग्जैक्टली कौन से साल उसको तो लेकर डिबेट है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये 1945 में हुआ था एक लोकल परेड के दौरान. कुछ जब कुछ यंग लोगों ने फैसला किया था कि वो अनयूजुअल स्टाइल में ज्वाइन करेंगे द फेस्टिविटीज.
4: तो उन्होंने ऐसे गलती से टमाटर फेंक दिए?
3: नहीं, उन्होंने एक वेजिटेबल स्टैंड से टमाटर लिए और एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर दिया, और एक इनप्रॉम्प्टु फाइट जो है ये शुरू हो गया. एंड लोगों को इसमें बड़ा मजा आया.
4: अच्छा, तो बस उसे एक ट्रेडिशन बना दिया गया.
3: हाँ. एंड द फॉलोइंग ईयर उन्होंने ये सेम ग्रुप ऑफ पीपल वो इंटेंशनली टोमेटोज जो है ये लेकर आए फेस्टिवल में, ईगर टू रिलीव द फन. और ये ट्रेडिशन जो है काफ़ी तेज़ी से लोगों के बीच पॉपुलर हुआ और लोग टोमेटो फाइट में जुड़ने लगे. एंड इन द 1950s द फेस्टिवल वॉज ब्रीफली बैंड. इसको बैन कर दिया गया था क्योंकि उनको मज़ा नहीं आया कि ये बहुत अनरूली है. लेकिन लोग जो है इसको बहुत पसंद कर रहे थे और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें ये चाहिए. सो इस बैन को वापस हटाया गया. बाय 1980s ला टोमेटिना जो है ये एक ऑफिशियल इवेंट के रूप में तैयार हो चुका था, जिसमें दुनिया भर से लोग हिस्सा लेने के लिए जाते थे. तो नॉट ओनली स्पेन बट
4: ये उनका एक ऐसा फेस्टिवल बन चुका है जिसमें पार्ट लेने के लिए लोग इस दौरान स्पेन ट्रेवल करते हैं, बिकॉज़ दे वांट टू एक्सपीरियंस दैट ना. बट यहाँ न्यूजीलैंड में तो ये कभी नहीं चलेगा. टमाटर कितने महंगे यहाँ पे. लोग फेंकने के बजाय घर ले जाएंगे.
3: हाँ, मैं तो नहीं फेंकूंगा. मैं
4: भी एक थैला लेके जाऊंगी जस्ट टू कलेक्ट इट. आई वुड नॉट नेवर डू दैट बिकॉज़ ये बहुत एक्सपेंसिव है. टोमेटोज आर वेरी एक्सपेंसिव इन न्यूजीलैंड. आई मीन अभी थोड़ा ठीक है, बट देयर वाज अ टाइम जब $10-11 पर किलो भी टोमेटोज जो ये होता था ना.
3: हाँ.
4: हो सकता है वो टाइम वापस आने वाला हो भी.
3: और फिर इतनी बढ़िया चीज है खाने की,
4: फेंकना क्यों है. मुझे वैसे टमाटर उतना पसंद तो नहीं है.
3: आई लव टोमेटोज
4: पर I can't eat the whole tomatoes. मेरे को दिखने नहीं चाहिए वो. मैं उनको छोटे छोटे चॉप करके खा सकती हूँ, उनको पूरा गला दूँ अगर मैं कोई भी चीज़ बना रही हूँ उसमें. उसका सिर्फ टेस्ट आना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए. देन आई
3: कैन ईट. टमाटर नहीं खाती हैं आप?
4: खाती हूँ बट एकदम ऐसे लाइक आई डोंट लाइक द स्लाइस्ड वंस. बहुत छोटे छोटे होने चाहिए वो. एकदम टाइनी पीसेस में. देन आई कैन ईट.
3: आई लव टोमेटोज. तो आज ला टोमेटिना फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है. बहुत सारे लोग आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं मधुर भंडारकर.
4: ओके.
3: और इनके साथ आज एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था.
4: हाँ.
3: 1979 में पल्लवी जोशी.
4: ओके.
3: और एक एक्टर जो काफी कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ गए, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था, इंद्र कुमार.
4: हाँ.
3: और इनके साथ अभी एक एक्ट्रेस हैं जो स्मॉल स्क्रीन पर काफी पॉपुलर हैं।
4: कौन?
3: रुबीना दिलेक।
4: अच्छा, ओके।
3: ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। एक एक्टर थे 1980s में, बहुत पॉपुलर थे, राज किरण। वो भी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनके साथ पंजाबी फिल्मों में काफी अच्छा खासा नाम कमाया है नीरू बाजवा।
4: अच्छा, ये भी आज,
3: ये भी आज
4: अरे इतने सारे लोगों का बर्थडे आज।
3: एंड टू टॉप द लिस्ट, आज ही के दिन जन्म हुआ था मदर टेरेसा का।
4: ओह वाओ, इतने सारे लोग, माय गुडनेस। अच्छा, दूसरी ओर अभी साउथ अफ्रीका में चल रहा है मैच ना, ऑल ब्लैक्स और साथ में लायंस के बीच। तो वी आर नॉट वॉचिंग इट बट यहाँ पर हम देख भी रहे अभी। आई थिंक
3: वी आर नॉट वॉचिंग इट बट हम यहाँ पर देख रहे हैं।
4: हाँ, लाइक हम अटेंशन नहीं पे कर रहे उधर, बट देर इज लाइक हमारे स्टूडियो में जो टेलीविजन, इस पर हमने चलाया हुआ है जस्ट टू गेट अपडेट, सके हम आपको अपडेट दे सके इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड। अभी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर मैच पहुंच चुका है, 78 मिनट्स इनटू द मैच एंड न्यूजीलैंड।
3: कितने मिनट बाकी रह गए?
4: अब आई थिंक 80 मिनट्स का मैच होता है ना, तो दो मिनट बाकी होंगे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
3: हाँ, दो ही मिनट।
4: तो न्यूजीलैंड अभी फिलहाल जीत रहा है विद वन पॉइंट, क्योंकि 36 है न्यूजीलैंड के पास और लायंस के 35 पॉइंट्स है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फाइनल टू मिनट्स ऑफ द मैच। पर फिलहाल आपको हम ये बता दें आज का हमारा सवाल, आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे आपको पहचाननी है। अ मैन विद एम्नीजिया यूजेस बॉडी टैटूज एंड पोलराइड फोटोज टू ट्रैक डाउन द विलन हु मर्डर्ड हिज गर्लफ्रेंड। एक शख्स है,
3: आई थिंक मैंने ऐसी एक फिल्म देखी थी।
4: हाँ, तो आई थिंक देखी थी, क्या देखी होगी तभी
3: मैं,
4: तो
3: मैं भी इसकी तरह तो नहीं हो गया हूँ।
4: तो आई थिंक ये फिल्म एक जोक सा भी बन गया, जब किसी को थोड़ा ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे भूल
3: तो
4: जाते
3: हैं। फिल्म का टाइटल तुम ये हो गए।
4: हाँ, लाइक मजाक मजाक में लोग ऐसा बोलते हैं ना। तो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे। आई थिंक इतनी ईजी है यार, इतनी ईजी है कि आप सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक शख्स है जिनको थोड़े ऐसे भूलने की बीमारी हो जाती है, रह रहकर वो भूल जाती चीजें, और खुद को याद दिलाने के लिए कि वो कौन है, क्या उनकी कहानी है, वो अपने उन्होंने अपने शरीर पर टैटूज जो है ये कराए हुए हैं, और उनके पास एक पोलराइड कैमरा है जिसमें फोटोज वगैरह वो लेते रहते हैं, सबका नाम लिखते रहते हैं, जस्ट टू मेक हिमसेल्फ रिमेंबर ऑल द डिटेल्स, ताकि उनको याद रहे कि किस शख्स ने उनकी गर्लफ्रेंड की हत्या की थी और उनसे वो बदला ले सके। सो कौन सी फिल्म है? BF स्पेसियान से ये नेम, 5599 पर आप भेजे। और इधर जो मैच चल रहा है लायंस और ऑल ब्लैक्स के बीच, फिलहाल ऑल ब्लैक्स ने इसको कर लिया है, और अभी पॉइंट्स अगर देखे तो कितना हो चुका है। अरे यार, ये क्या कर रहे हैं,
3: 36 में अगर आप 5 ऐड कर दें तो वो 41 हो जाता।
4: हाँ,
3: है
4: 41 हो गया अभी, मतलब कन्वर्जन नहीं हुआ है ना।
3: हाँ, अभी कन्वर्जन लेना बाकी है।
4: ओके, विल सी व्हाट हैपेंस, बट विल कीप यू
3: ट्राई। किसने इसको किया?
4: मेरे को नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं। मैंने बोला मैंने देखा ही नहीं ना।
3: द गुड थिंग इज आई थिंक आफ्टर 3-4 इयर्स ऑल ब्लैक्स जेसी में नजर आ रहे हैं।
4: रिची मोंगा, यप, देयर यू गो। सो कन्वर्जन नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, सो 41 पॉइंट्स टू 35 राइट नाउ।

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Rewards rush only at BP.
4: Quite cloudy, just a bit of sun, a high of 18 today. Into the city, we're looking at fine on motorways. Northwestern, 22 minutes, Massey to town. Slow at Te Aratu and then Apache from the Causeway to the CBD. Northern, 22 and from Constellation. Slow there to Glenfield and at Esmond. Southern, 26 minutes, Manukau to town. Slow Papakura to Papatoetoe. Southwestern, okay, but heading to the airport, little traffic on George Bolt.
3: Scan everyday rewards for double points on fuel and shop. T's and C's apply.
5: White separated. Pockets checked. Cold wash. Gentle cycle. Powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūriki. All together Auckland.
2: गोवा की गलियों में एक नया बादशाह जन्म ले रहा है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश मयंक ताला कियारा अडवाणी तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी हेलो डैडी टॉक्सिक नाउ शोइंग इन सिनेमास
6: इट्स टाइम आई एम कमिंग
2: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग टीबीसी
7: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
8: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें
7: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
8: पर डेवलपमेंट के पैसे
7: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
10: तो याद रहे आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे आपको गेस करनी है और क्लू है कि अ मैन विद एम्नीशिया यूजेस बॉडी टैटूज एंड पोलराइड फोटोज टू ट्रैक डाउन द विलन हु मर्डर्ड हिज गर्लफ्रेंड कौन सी फिल्म ये हो सकती है जहां पर एक व्यक्ति जो है जिसकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है और उसके शरीर पर टैटूज है टू रिमाइंड हिम कि वो कौन है क्या है उसकी कहानी और साथ में उनके पास फोटोज वगैरह है टू ट्रैक डाउन द विलन जिसने उसने उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या जो है ये की है कौन सी फिल्म ये हो सकती है अपना जवाब हमारे पास आप भेजें BF लिखकर 5599 पर अपने नाम के साथ

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: याद रहे सुपर सिटी ऑकलैंड में आज वेदर थोड़ा क्लाउडी रहेगा, थोड़ी बहुत बारिश होगी और सनसेट 5:57 PM पर रहेगा। ओवरनाइट टेम्परेचर 11 डिग्रीज तक पहुंच सकता है जबकि हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर। राइट नाउ टेम्परेचर 10 डिग्रीज है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मोनाको। इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी living.
0: Morning madness. The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
4: 3 minutes ho rahe hain 7:07. Welcome to the breakfast show with Vijay and Pooja only on Hum playing Bollywood's biggest hits 104.2 FM ya Rover par aap hamare saath de rahe hain. Good morning and welcome. Is ghante to tamam cheeze hongi as usual, jaise aapko pata hai jo normal cheeze hain unke bare mein to hum aapko jo everyday hoti hain wo bhi hongi. Birthday anniversary greetings, please messages samay se pehle hi aap hame bhej dein.
1: We don't want a situation jahan par aaj agar apna special day celebrate kar rahe hain and because aapne sahi samay par nahi bheja and you're expecting us to wish, how would we even wish jab hame aapka message mila hi nahi na, to pehle se bhej denge, it'll be easier and we'll wish you on time. But right now humne aapse pichle ghante jo sawal pucha tha, having a look at that, kafi messages aaye hain. Sabse pehla jawab aaj Dheer ne hame diya tha, to inka jawab aaya. Saath mein Fiza hai, Sunny hai, Sumit hai, ohine wai yahan par filhal program jo hai ye koi sun rahe hain, 6327 inhone apna naam to nahi likha par गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, लिसनिंग फ्रॉम ओहिने वाई एट वर्क. सो थैंक यू आपके मैसेज के लिए. साथ में 6602 आपका भी मैसेज हमें मिला है, थैंक यू. आयरीन है, नितिका है, एस बी आपका भी मैसेज आया है, मैं हाँ थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए. तन्हा है, रिद्धि है, कवनीत है, राज गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर मैसेज टू. और साथ में हमारे पास 6234 आपने भी अपना मैसेज सेंड किया है, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू.
4: थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए. और मैं तो अभी ये देखने की कोशिश कर रहा था कि ओहिने वाई पहुंचने में कितना टाइम लगता है ओकलैंड से.
1: मैं तो भैया आज के बाद किसी भी जगह के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करने वाली हूँ. नहीं पता तो नहीं पता,
4: पर यू आर सुपर पॉपुलर ना.
1: ना मैं इस वजह से काफी पॉपुलर हो गई, लेकिन कुछ लोग थोड़ा मजाक भी उड़ाने लगे. अब मैंने कल देखा, हमने जो वीडियो फेसबुक पर डाला था ना, उसमें कोई एक शख्स है जो ऐसा लगता है कि हमें जरा भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उससे पहले भी इन्होंने कुछ बोला था कि इंग्लिश में बातें क्यों कर रहे हो, हिंदी में करो, ऐसे डाउन फैंसी ऐसे कुछ लिखा था ना. तो उन्होंने कल मैंने उनका कमेंट देखा, द गर्ल डजंट नो वेयर हुनवाइज ऐसा कुछ लिखा उन्होंने. लगता है इनको मैं जरा भी पसंद नहीं हूँ. बट नेवरदलेस आई मीन
4: भाई हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पता नहीं होता.
1: नहीं मैं तो खुल के बोलती हूँ भाई, कुछ ना कुछ क्या, मुझे काफी कुछ नहीं पता है.
4: एनसाइक्लोपीडिया नहीं है ना.
1: Slowly, slowly we learn.
4: But that's वही तो fun है.
1: हाँ.
4: उसी में तो मजा आता है ना.
1: Exactly.
4: खैर छोड़ो वो सारी
1: exactly.
4: चीजें. एक घंटे से ज्यादा लगेगा यहाँ से
1: ओहिनेवाई
4: पहुंचने में. इस घंटे और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम बातें करेंगे. केरला का एक मंदिर है
1: जी.
4: ये बहुत ही स्पेशल मंदिर है क्योंकि यहाँ पर ये इस मंदिर का नाम है गुरुवायूर श्री कृष्ण टेम्पल.
1: ओके.
4: और यहाँ पर पीक वीक वेडिंग डेज पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग शादियां करने के लिए आते हैं.
1: ओके.
4: गुरुवायूर टेम्पल वेडिंग जो है ये एक ट्रेडिशनल केरला हिंदू रिचुअल्स के जरिए शादी जो है यहाँ पर की जाती है. और एक बहुत ही डेजिग्नेटेड बहुत ही खास मंडप होता है मंदिर के अंदर ही, जहाँ पर पंडित जी जो है पुजारी जो है ये आपका विवाह संपन्न कराते हैं. इन प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड गुरु वायुरप्पन. मुझे मालूम नहीं कि ये कौन है. लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि 7 घंटों में वहां पर 416 कपल्स ने शादी की.
1: वाओ, 7 आवर्स में 416 कपल्स ने शादी की.
4: यस yes.
1: मतलब बहुत से लोगों की शादी एक साथ हुई होगी. दैट्स हाउ दे मस्ट हैव मेट दिस टारगेट. क्योंकि शादियां जो है ये वैसे भी करीबन 2 घंटे हो जाती है ना शादियां कराने में, अगर आप डिटेल तरीके से करते हो तो.
4: जो एलिबरेट वेडिंग सेरेमनीज है उसकी तरह नहीं है.
1: हाँ.
4: गुरुवायूर वेडिंग जो है ये बहुत ब्रीफ होता है, को रिचुअल्स पर फोकस करता है एंड ऑफन कंप्लीटेड विद इन मिनट्स.
1: ओके, दैट्स व्हाई इतनी शादियां हो पाई.
4: एकदम सिंपल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इसका होता है, जिसकी वजह से हजारों लोग इस मंदिर में शादी करने के लिए जाते हैं.
1: देखो यहाँ पर शादियों का रिकॉर्ड बन रहा है. न्यूजीलैंड में एम्बुलेंस सर्विस के लिए जो कह सकते हैं कॉल्स गए उसका रिकॉर्ड बना है लास्ट वीक. कहा गया है न्यूजीलैंड एम्बुलेंस सर्विस वाज अंडर ह्यूज प्रेशर लास्ट वीक, एकदम हाई डिमांड. और अगर देखा जाए तो एंडिंग ऑन 23rd ऑफ अगस्त व्हिच वाज लास्ट वीक फ्राइडे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नहीं लास्ट वीक संडे नॉट फ्राइडे, सो मंडे टू संडे यहाँ पर इतने ज़्यादा कॉल्स जो है ये रिसीव किए गए एम्बुलेंस क्रू द्वारा. ऑफकोर्स देर हैव बीन सिचुएशन जहाँ पर वो भी फेस कर रहे हैं ऑफ हैंडिंग पेशेंट्स ओवर टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, मेनली नॉकलैंड, हैमिल्टन, पामस्टन नॉर्थ एंड क्राइस्ट चर्च, जिसकी वजह से काफ़ी डिलेज भी हो रहा है. बट कहा गया है कि मंडे को 2,511 कॉल्स गए, ट्यूजडे को 2,374 कॉल्स, वेंसडे को 2,419 कॉल्स, थर्सडे को 2,368 कॉल्स एंड फ्राइडे को ऑलमोस्ट 2,600 कॉल्स जो है ये गए. टोटल ऑफ मोर देन 16,000 कॉल्स जो है एक हफ्ते में mainly in Auckland, not out of Auckland we're talking about. इतने ज़्यादा emergency calls जो है ये गए हैं ambulance services को, और इसकी वजह से ये most demanding week जो है ये रहा लास्ट वीक जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे. 9 minutes after 7 वेंसडे 26th of अगस्त की इस सुबह मॉर्निंग मैडनेस ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. और इस घंटे याद रहे 7:30 न्यूज हेडलाइंस, ये भी आपके लिए रहेगा.

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papio. Chubo jao.
0: Rashi Vibes.
2: मेष यानी एरीज नौकरी में नए लोगों से आज कांटेक्ट बनाने का मौका आपको मिलेगा. बातचीत के दौरान किसी से ऐसी बात ना कहें जिससे वो हर्ट हो सके और अचानक ही एक्सपेंसेस आज आपके कुछ बढ़ सकते हैं.
3: वृषनी टोरस, आपके लिए कहा गया है कि आपका जो भी तौर तरीका है, जिस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ये आपके काम में काफ़ी काम आ सकता है, मतलब सफलता दिला सकता है आपको आपकी नौकरी के मामले में. और दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि आज मैरिड लाइफ आपका जो है बहुत अच्छा रहेगा. सम वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट्स जो है आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ स्पेंड करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी मेमोरेबल दिन साबित होगा.
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज लाइफ पार्टनर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ये सेटल डाउन हो जाएगा, काफ़ी मिलेंगे आपके विचार, कुछ नए फाइनेंशियल ऑप्शंस जो है इस पर आप सोचेंगे और हो सके तो आज अपनी आंखों को आराम दें.
3: वैसे आज कर्क ने कैंसर, आपके लिए कहा गया है कि जिम्मेदारियां आपकी जो है ये बढ़ेंगी, लेकिन कुछ बुजुर्ग हैं आपके जीवन में जो आपको राइट गाइडेंस देंगे, जिसकी वजह से यू नो यू विल फील कि ओके थिंग्स आर गेटिंग ओके एंड आर ऑन ट्रैक. अपने बिजनेस रिलेटेड कोई भी डील्स अगर आप कर रहे हैं तो किसी को पैसे उधार ना दें आज के इस दिन. लोन देने से आपको बचना है आज.
2: सिंह यानी लियो, ऑफिस में आज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहेगा. बिजी रहेंगे जिसकी वजह से हो सकता है कि अपने लाइफ पार्टनर के लिए उतना टाइम आप नहीं निकाल सके, थोड़ा तो नाराज होना उनका बनता है. कैश फ्लो आपका अच्छा रहेगा आज.
3: वैसे कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि कुछ नए सौदे आप करने वाले हैं टू मेक योर बिजनेस ग्रो, और बहुत अच्छा दिन है आज. जो आप सोच रहे हैं, कोई ऐसे हेसिटेंस अगर आप फील कर रहे हैं तो मन से डाउट्स निकाल दें और अपना कदम जो है आप जरूर आगे रखें टूवर्ड सक्सेस. आर्थिक स्थिति आपकी जो है ये स्थिर रहेगी, मतलब ये क्या स्थिर का मतलब क्या होता है, मतलब
2: स्टेबल
3: रहेगी. यस, दैट्स द वर्ड.
2: तुला यानी लिब्रा, ऑफिस में कॉलीग्स के साथ तालमेल बिठाकर काम करें तो अच्छा खासा फायदा हो सकता है और आज पैसों का यू नो इनफ्लो अच्छा होगा आपके लिए, काफी पैसे आप रिसीव करेंगे. अपने गर्दन या कंधे का ख्याल रखें.
3: वृश्चिक ने कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि आज पुराने कुछ सौदे

0: है जो फाइनेंशियली आपको आज फायदा दिलाएंगे और इससे आप काफी खुश रहेंगे, बिकॉज यू नीडेड दैट फायदा. हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, बस कुछ फैसले आपको लेने हैं अपने हेल्थ को और भी बेहतरीन बनाने के लिए. कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल और आपको अच्छा रिजल्ट जो है ये हासिल होगा.
1: धनु यानी सेजिटेरियस, जो लोग इंटरनेशनली अपने बिजनेस को करते हैं आज अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. और आज एक दूसरे के प्रति शादीशुदा जिंदगी में विश्वास बढ़ेगा और कुछ ओवर एक्साइटमेंट जो है ये आपको बहुत जल्दी थका देगा.
0: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है कि आप जिस किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी. एक नोटिस आप ज़रूर करेंगे कि देयर इज़ अ ग्रोथ जो आपको पोटेंशियली काफ़ी फ़ायदा दिला सकता है, तो वहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, गो फॉर इट, इट्स अ वेरी गुड डे टू गेट दैट डन. और आज आपके लिए ये भी कहा गया है कि बजट अनुसार काम करने की कोशिश करें, अदरवाइज आपका फाइनेंशियल बजट अगर जो बिगड़ा, नेक्स्ट वीक पर्टिकुलरली आपके लिए कहा गया है डिफिकल्ट टाइम हो सकता है.
1: कुम्यानी क्वेरियस, आज आपके काम को प्रेज किया जाएगा और नए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ाएंगे और इनकम बढ़ाने का मौका भी आपको मिलेगा. ख्याल रखें कि यू नीड इनफ टाइम टू रेस्ट आल्सो.
0: और फाइनली मीन यानी पाइसेस, क्रिएटिविटी आज आपकी काम आएगी, आपको एक नए प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदारियां जो है ये दी जाएंगी एंड यूड बी एबल टू यूज योर क्रिएटिविटी एंड गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. और आपके परिवार में जो सदस्य हैं इनका पूरा सपोर्ट आज आपको मिलेगा, खास तौर पर फैमिली मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए. तो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स. उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ साथ फिलहाल 20 मिनट हो रहे हैं 7:00. कमिंग अप नेक्स्ट आज का सेलिब्रिटी अलार्म.
2: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
3: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
2: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
4: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की.
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल.
4: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश.
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300. डैड को रेडी करो, खुश करो.
4: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
5: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge 10kg front loader and heat pump dryer, sleek grey set, $11.99. Huge black stainless steel side-by-side fridge freezers, $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
6: TradeDepot.co.nz. At Macca's, you can get the new honey sriracha sauce on any breakfast. McMuffins, brekkie wraps, big brekkie burgers, hotcakes. Nah, that'd be weird. Honey sriracha, only for a limited time. T's and C's apply.
7: Coffee? The usual?
8: How about the unusual?
9: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
10: Choice aapki hai at Winger Motors. Selected nay Omuda or Jeku models par paye 3.9% finance ya $2,000 cashback. Premium design, technology or zabardast value. Super hybrid system.

0: Plus, credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Celebrity Alarm. Hit it.
3: 22 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. दिस इज द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा 104.2 एफएम या रोवर पर. अगर आप फिलहाल हमें सुन रहे हैं, आपको याद दिला दें मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. मॉर्निंग मैडनेस में अब बारी है आज की सेलिब्रिटी अलार्म की, जहां पर आपको सुनाएंगे एक आवाज और बस इनकी आवाज सुनकर आपको बताना है कि ये कौन है. और आज के ये जो शख्स जिनकी आवाज आपको सुननी है, पहले ये आपको सुनाए हम.
4: You have a noble purpose. It binds everybody together. And our purpose is to make India great.
3: तो चलिए आवाज हमने सुना दी है. अब आप में से कितने लोग इनकी आवाज को पहचानते हैं वो खैर अलग बात है. But if you've heard the voice and you think you know who the face is behind this voice, तो आप इनका नाम हमारे पास अपने नाम के साथ लिख भेजे 5599 पर.
5: इंटरेस्टिंग होगा आज क्या आप इनको, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर सिर्फ इंडियंस ही नहीं
3: वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी,
5: वर्ल्ड वाइड लोग इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं.
3: लोग इनका नाम जानते हैं, कई लोग इनका चेहरा शायद नहीं जानते होंगे. कई लोग इंटरनेशनल लेवल पर, आई एम सेइंग, पर नाम तो लोगों को इनका पता ही होगा. सो लेट्स सी इफ यू कैन फिगर आउट. एक आखिरी बार आपको इनकी आवाज जो है कि हम सुना रहे हैं.
4: When you have a noble purpose, it binds everybody together. And our purpose is to make India great.
3: तो चलिए अपने answers हमारे पास आप भेजे 5599 पर. आपको अपना जवाब भेजना है. BF लिखे सबसे पहले, then you answer your name. Let's see कौन पहचान पाता है आज के हमारी celebrity को.
2: Bollywood's most wanted.
6: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
7: मैं लाऊं अपना A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: News Headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में लेबर पार्टी लीडर क्रिस हिपकिंस ने नेशनल के अंडर 16 सोशल मीडिया बैन बिल को फर्स्ट रीडिंग में वोट देने का ऐलान किया है ताकि इलेक्शन से पहले सेलेक्ट कमेटी प्रोसेस शुरू हो सके। नेशनल के कोलिशन पार्टनर्स एक्ट और एनजेड फेस्ट इस बैन के विरोध में हैं, जबकि लीडर ऑफ द हाउस लुइस एब्स्टन ने कहा कि इलेक्शन से पहले पार्लियामेंट के पास इस बिल पर वोट करवाने का वक्त नहीं है। मैनिकाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक व्यक्ति को वायुकु और रदरफोर्ड कॉलेजेस पर 3D प्रिंटेड फायर आर्म से अटैक करने और पुलिस स्टेशन और पार्लियामेंट बिल्डिंग्स को तबाह करने की धमकियां देने के 12 मामलों में दोषी पाया है। टियडन हुओ को फायर आर्म्स, एक्सप्लोसिव्स और ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल रखने का भी दोषी ठहराया गया, जिन्होंने कोर्ट में खुद अपना डिफेंस फाइट किया था और उनका मकसद क्राइस्टचर्च मोस्क अटैक से भी बड़ा हमला करना था। पुलिस ने ईमेल मैनिफेस्टो की जांच के बाद हुओ को अरेस्ट किया था और ज्यूरी द्वारा सभी चार्जेस पर गिल्टी पाए जाने के बाद अब उन्हें अक्टूबर में सजा सुनाई जाएगी। रिची मुआंगा ने ऑल ब्लैक्स टीम में अपनी वापसी एक जीत के साथ की है। टीम की जीत आज सुबह साउथ अफ्रीका में हुए एक मैच में लायंस के खिलाफ 41-35 से हुई। ऑल ब्लैक्स का अगला मैच इसी रविवार की सुबह 3 बजे साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा, जिस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हमले कराएंगे। इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान अभी श्रीलंका 238 रन से पीछे है। तीसरे दिन के खेल के बाद इंडिया 500 पर है, जबकि श्रीलंका ने अभी 8 खिलाड़ी खोकर 265 रन बनाए हैं। इस मैच पर और भी अपडेट्स हम आपको बाद में चलकर देते रहेंगे। आज रात 10 बजे से इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच है ये शुरू होगा। इंग्लैंड अभी इस सीरीज को 1-0 से जीत रहा है। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच था उसमें ऑस्ट्रेलिया की जीत एंड इनिंग्स और 51 रन से हुई है। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
4: Your holiday boarding pass could be waiting. Keep listening for the next hum boarding call and you could be flying to Vanuatu with 2 return air tickets from Solomon Airlines and $1,000 spending money.

0: guarantees true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
1: 20 मिनट बाकी हिस्से में हमारे स्टूडियोज में 8 बजने में ठीक 8 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद आपके लिए हम लेकर आएंगे रश आवा ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. आज तो हमारा जो सेलिब्रिटी अलार्म है कमाल ही हो गया.
2: चार ही लोगों ने अटेम्प्ट किया ना.
1: हाँ बट मैसेजेस में लोगों ने अनुपम खेर का नाम भेजा हुआ है, साथ में पीयूष गोयल ये नाम भेजा हुआ है, और ये दोनों सही जवाब नहीं है. अनुपम खेर एंड पीयूष गोयल नहीं है.
2: आप वो आवाज थोड़ा सा फिर से सुना सकते हैं?
1: मैं सुना सकती हूँ, बिल्कुल सुना सकती हूँ.
2: सुनाइए देखें.
3: When you have a noble purpose, it binds everybody together. And our purpose is to make India great.
1: ये किसी भी एंगल से अनुपम खेर जैसा नहीं साउंड कर रहे. पीयूष गोयल कौन है? I have to
2: ये मंत्री हैं ना.
1: अच्छा ओके.
2: तो आप कोशिश करें, थोड़ा सा टाइम हम आपको दे रहे हैं अभी. BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं.
1: बिल्कुल. अभी आपने अनुपम खेर और पीयूष गोयल कहा, तो ये जिस इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं बेसिकली, वन इज फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, द अदर इज फ्रॉम पॉलिटिक्स. इस इंडस्ट्री के आज के हमारे सेलिब्रिटी तो बिल्कुल भी नहीं है. इज नाइदर अ पॉलिटिशियन नॉर एन एक्टर.
2: ओके, तो पॉलिटिशियन नहीं है, एक्टर नहीं है, कौन है ये? आप कोशिश करें अपना जवाब हमारे पास भेजें. सुना भी दिया है हमने आपको. वैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं जिनमें हिस्सा लेने का मौका आपको हम दे रहे हैं. इसी फ्राइडे को तो अब रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन का जो ड्रॉ है ये होना है. नेक्स्ट वीक फादर्स डे का ड्रॉ होना है. थोड़ी देर बाद किसी एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का मौका हम आपको देने वाले हैं जहाँ कैश इनाम आप जीत सकते हैं.
1: तो तैयार रहिएगा इसके लिए और सुनते रहिएगा इस अपॉर्चुनिटी में भाग लेते हुए कैश इनाम जीतने के लिए. फिलहाल तो एंजॉय करते हैं स्ट्रेट फ्रॉम आवर हार्ट टू योर्स, सत्य प्रेम की कथा. 2023 में ये फिल्म आई थी, उसका ये बहुत ही खूबसूरत गाना मनन भारद्वाज और तुलसी कुमार की आवाजों में.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हब ब्रॉट टू यू बाय इंटेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: Accurate traffic.
4: Wardrobes Direct, options to suit all budgets.
5: Fine today, cloudy patches, quite frequent, a high of 18. Citybound on motorway, southern 40 minutes, Manukau to town. Slow Papakura on and off to the city, heavier spots from Mount Wellington. Southwestern, little slow southbound at Mount Roskill, northbound through Whitty. Northern 26 from Constellation Drive, heavy at Silverdale, slow Constellation to the bridge. Northwestern 36 from Massey, slow from there, heavy from Point Chev.
4: Wardrobes and sliding doors for all budgets. Visit Wardrobes Direct, Mount Wellington and Silverdale showrooms.
6: 2 p.m. call out, we're on your way. Heading back to the office, we're on your way there too. Commute to site, yep, you guessed it, we're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
7: Blood and plasma are always precious, but in wintertime with sickness about, we need even more donors to fill the gaps others leave. If you can, please book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.

0: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
1: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
0: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
1: पर डेवलपमेंट के पैसे
0: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
2: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800 4 NZPMI।

0: by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: फिलहाल अभी समय की ओर देखें तो 11 मिनट रह गए हैं अब 8 बजने में. 8 पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे. बाय द वे सुख और खुश हर सुबह आप भी हमें याद करते हैं. थैंक यू सो मच. यू गाइस हैव अ वंडरफुल डे.
2: और इधर हमने आज जो आपसे सवाल किया था सेलिब्रिटी अलार्म में आवाज़ पहचानने के लिए, क्वाइट इंटरेस्टिंग. हमने कोशिश तो की आपको बताए कि इट्स नॉट अनुपम खेर, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने वही जवाब दिया. फिर हमने ये भी आपसे कहा कि ना तो एक्टर है ना तो पॉलिटिशियन है, आज के हमारे सेलिब्रिटी कौन हो सकते हैं. वेल सनी गॉट इट राइट एट द फर्स्ट ट्राई. और उसके बाद कुशल का मैसेज आया, शैलेश है साथ में, कुछ लोगों ने मैसेजेस किए, नाम नहीं लिखा है आपने पर शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. द करेक्ट आंसर फॉर टुडे वाज मुकेश अंबानी एंड सिंस सम ऑफ यू गॉट इट करेक्ट तो आज हम रिवील कर रहे हैं ये है आज के हमारे सेलिब्रिटी.
1: और हमने कहा था कि कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का मौका भी आपको देंगे, इनाम जीतने का मौका भी आपको देंगे. तो कौन सी अपॉर्चुनिटी है इस बार?
2: चलिए आज ना रक्षाबंधन के खास मौके पर, सिंस रक्षाबंधन जो इसी फ्राइडे को है मतलब अभी से दो दिनों में, तो यही सेलिब्रेट करते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं हमारे साथ $500 कैश में से अपना शेयर जीतने का. दो लोग जीत सकते हैं $250 ईच. आपको बस कॉल करना है 0800-004-866 पर और अपने सिबलिंग को रिव्यू करना है दैट हाउ गुड और बैड योर सिबलिंग इज व्हेन इट कम्स टू घर का काम करना या अपना काम करना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के मामले में उनको दी जाती है.
1: अच्छा,
2: यू नो कभी कभी क्या होता है कि अगर मम्मी बोले कि अच्छा घर में झाड़ू लगा दो तो वो लगा देते, पर कुछ मामलों में क्या होता है कि मेरे से नहीं होगा आप इसको बोल दो.
1: हाँ.
2: वो भाई और बहन पे डाल देते हैं
1: हमेशा, मुझे ही क्यों बोलते रहते. हाँ, इसको क्यों नहीं बोलते,
2: इसको क्यों नहीं बोलते. एग्जैक्टली. या फिर हाँ अभी कर दूंगा या अभी कर दूंगी, वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है. देन मम कम्स बैक टू यू कि अच्छा तुम ही कर दो, ये तो कर ही नहीं रहा है. सो व्हाट इज द सिचुएशन लाइक व्हेन इट कम्स टू हाउसहोल्ड चोर्स इन योर हाउस, या आपका जो एक्सपीरियंस रहा हो अगर आपके भाई और बहन अभी बड़े हो गए हैं, अब अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने परिवार के साथ है, लेकिन कुछ तो यादें होंगी ना बचपन के टाइम से इस चीज को लेकर, या फिर जब आप साथ रह रहे थे इवन एज एन एडल्ट तो उस चीज को लेकर कि घर का काम जो है जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती थी तो हाउ गुड और बैड योर सिबलिंग हैज बीन व्हेन इट कम्स टू फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन हाउसहोल्ड ड्यूटीज. तो 0800-004-866 पर कॉल कीजिए. 1 मिनट टाइम है हमारे पास. विद इन अ मिनट अगर किसी का कॉल आ जाता है वेल एंड गुड, आपका नाम हम ड्रो में शामिल कर पाएंगे $500 कैश में से अपना शेयर जीतने के लिए. अगर कॉल नहीं आता है तो विदाउट एनी एंट्री विल हैव टू मूव ऑन.
1: सो अपॉर्चुनिटी है $250 इसी फ्राइडे को आप जीत सकते हैं और आप में से दो लोग जीत सकते हैं इनफैक्ट. तो बस कॉल आपको करना है 0800-004-866 और इसी नंबर पर कॉल करते हुए अपने भाई या बहन के बारे में हमें बताना है आपको कैसा लगा उनका जो परफॉर्मेंस.
2: गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग.
2: कैसी हो परविंदर?
3: अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हो?
2: एकदम बढ़िया. तो बताइए आपको अगर रिव्यू करना हुआ अपने भाई या बहन के, मतलब आपके तो भाई है मेरे ख्याल से, उनके परफॉर्मेंस को इन रिगार्ड्स विद घर का काम, तो क्या नंबर्स देंगे और क्यों?
3: मैंने अपने भाई को कभी देखा नहीं घर का काम करते
2: हुए. अच्छा.
3: पर मेरी मम्मी मुझे ये हमेशा बोलती थी तूने कल को आगे जाना है.
1: हाँ.
3: सास तुझे बताएगी, अभी आदत डाल ले.
2: क्या बात है.
1: लेकिन भाई को नहीं देखा कुछ करते हुए.
3: भाई को नहीं देखा, पर मेरा भाई ना थोड़ा स्मार्ट ज्यादा है.
1: हाँ.
3: जब कोई आता है ना तो वो ऐसे भाग भाग के काम करता है, सब कहते हैं वाह वाह, सब ऐसे करते हैं
2: कि क्या लड़का है, मतलब इतनी मेहनत कर रहा है घर का काम कर रहा है.
3: मतलब जैसे अब जब जाती हूँ मेरे इन-लॉज जब आते हैं है ना, उनके लिए प्लेट सेट करता है, खाना डाल के देता है.
2: और हकीकत में आपने उनको कभी ये सब करते नहीं देखा? चलो परविंदर, इनको तो मजे ही आ रहे हैं. थैंक यू आपके कॉल के लिए, वो वंडरफुल डे. आपका नाम डेफिनेटली ड्रो में शामिल कर रहे हैं. चलिए इसी के साथ साथ इस घंटे का थ्रोबैक एंजॉय करते हैं. 6 मिनटों बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज का वेदर याद रहे, थोड़े बहुत बादल छाए रहेंगे, लिटिल बिट ऑफ शावर्स जो है आज शाम के समय होने की संभावना. सनसेट 5:57 PM पर होगा. टेम्परेचर हैज गोन अप टू 11.6 डिग्रीज, हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर. ओवरनाइट आज का टेम्परेचर 10 डिग्रीज रहेगा.
2: Breakfast show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
4: 3 मिनट हो रहे हैं 8:00 ट्रेंड पेट्रोल में आज हम बातें करने जा रहे हैं समथिंग दैट्स इन इंदौर.
1: अच्छा,
4: इंदौर यहाँ पर जो हुआ है उसने इंडिया को, इंडिया इज ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के मामले में और फिर बहुत सारी चीज़ों के मामले में दे
1: डेवलपिंग,
4: हाँ, लीडिंग बाय एग्जांपल. तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को लेकर एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कदम जो है यहाँ पर उठाया गया है.
1: अच्छा,
4: क्योंकि इंदौर में खुल चुका है वहाँ का पहला वर्चुअल जू.
1: Virtual zoo.
4: हाँ.
1: Oh wow.
4: And that's trending. लोगों को बहुत खूबसूरत नज़ारे जो है ये देखने को मिल रहे हैं. बहुत ही बढ़िया जो ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा. कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में ये फैसिलिटी है. इट इंट्रोड्यूसेस अ 14D सिनेमा.
1: Wow.
4: 3D सुना था मैंने,
1: 14D पहली बार.
4: 14D और साथ में डिजिटल जंगल सफारी है, होलोग्राम बेस्ड वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस, जिससे अब रीडिफाइन हो रहा है कि कैसे लोग नेचर के साथ एंगेज कर सकते हैं.
1: यस, क्योंकि नॉर्मल जूज जहाँ पर जानवर जो होते हैं इसको लेकर काफ़ी सालों से काफ़ी बातें हो रही हैं. इट्स ओनली ट्रू, इवन अगर आप यू नो ऑकलैंड जू भी चले जाओ, आप वहाँ पर कुछ जानवरों को देखोगे, दे आर बीइंग लुक्ड आफ्टर, नो डाउट, बट दे सीम नॉट सो हैप्पी. कितना भी नेचुरल तरीके का हैबिटेट उनको मिल जाए, अ जंगल इज देयर ट्रू होम, वो फील आपको आती है ना.
4: तो 2026 अगस्त जो है ये इंदौर और इंडिया के लिए बहुत ही स्पेशल रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया. एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है, लगभग 4.5 करोड़ स्पेंड हुए इसको बनाने में. ट्रेडिशनल जूस की तरह ये नहीं है, यहाँ पर एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है टू रिक्रिएट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और एनिमल बिहेवियर.
1: राइट,
4: विजिटर्स जो है वो लिमिटेड नहीं होते हैं टू ऑब्जर्विंग एनिमल्स फ्रॉम एनक्लोजर्स, बल्कि उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दे गो इनटू अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट जो और ज्यादा डायनेमिक लगता है और इंटरेक्टिव लगता है. तो आप चाहें तो इसके बारे में और पता कर सकते हैं. सारी डिटेल्स यहां पर अभी देना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट दैट्स व्हाट ट्रेंडिंग. इंडिया का जो पहला वर्चुअल वर्चुअल जू जो है, जिसमें 14D सिनेमा है, डिजिटल सफारी और बहुत कुछ है, ये अब खुल चुका है.
1: राइट, सो दैट्स व्हाट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ. एंड थोड़ी देर बाद आज का टॉपिक ऑफ द डे ये भी आपके लिए हम लेकर आएंगे. उम्मीद है कि आप इसके लिए रेडी हैं. याद रहे 0800 004866 पर आप हमें कॉल कर सकेंगे आज के टॉपिक ऑफ द डे में अपना व्यू शेयर करने के लिए. रिमेंबर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट स्पेशली फॉर यू ऑल, ताकि आप अपने व्यूज जब हमारे साथ बांटे कॉल कर तो हमें आपसे बातचीत करने का मौका भी मिल जाए और आपका कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द शो जो है ये भी हम तक पहुँच जाए. एंड बिफोर यू मूव ऑन, रिमाइंडिंग यू ऑल, फायर एंड इमरजेंसी न्यूजीलैंड जो है ये सबको याद दिला रही है कि न्यूजीलैंड प्रोफेशनल फायर फाइटर्स यूनियन ये आज दिन में 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच स्ट्राइक पर जाने वाले हैं. एंड दे वॉन्ट टू रीअश्योर द पब्लिक दैट ऑल 111 कॉल्स जो है ये दरअसल रिसीव भी किए जाएंगे और इन्हें रिस्पॉन्ड भी किया जाएगा ड्यूरिंग द स्ट्राइक पीरियड. डेप्यूटी नेशनल कमांडर मेगन स्टिफलर जो है इनकी ओर से ये कहा गया है, लेकिन फिर भी लोगों से मांग की जा रही है टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, खास तौर पर इस 1 घंटे के दौरान जहां पर जो न्यूजीलैंड प्रोफेशनल फायर फाइटर्स यूनियन है ये आज स्ट्राइक पर जाने वाली है.

0: enter code now to lock in your entry to win to return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
3: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
5: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज तो उसे सीधा बिन में ना डालें पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए oaklandcouncil.govt.nz/where-it-goes पे तमाकी तुरुकी ऑल टुगेदर ओकलैंड
6: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
7: Reliance Ventilation System.
8: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है
7: moisture और ventilation का problem लगता है
8: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है
7: oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं
9: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111 Reliance Ventilation Systems solving ventilation problems for over 18
10: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी guest Sarah.
11: क्या बनाते हैं kebab को special, Chef Alex?
10: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर kebab बनता है with love and passion.
11: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
10: ये है अम्मा's kebab's promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
11: 100% authentic and pure as mother's love.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors. Papatoy and Hamilton.
14: What's your take?
15: सोलह मिनट हो रहे हैं अब 8:00 द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है व्हाट्स योर टेक का अब वक्त हो चुका है और व्हाट्स योर टेक से पहले आज याद दिला दें ये वो घंटा होता है जहां पर आपके लिए हम लेकर आते हैं हमारा बोर्डिंग कॉल और जैसे ही बोर्डिंग कॉल आपको सुनाई दे इमीडिएटली आपको कॉल करना हो या फिर यू हैव टू हेड टू रोवा और जाकर वहां पर बोर्ड नाउ एंटर करना पड़ेगा तो किसी भी टाइम पर ये प्ले हो सकता है लेकिन आज का हमारा जो व्हाट्स योर टेक है ये स्टोरी जो है मुझे इनफैक्ट यहीं की कहानी है ये व्हाट्स योर टेक जो है ये यहीं की कहानी है लेकिन मुझे यहाँ से ये पता नहीं चली ये स्टोरी जो है हिंदुस्तान टाइम्स ने पिक किया और हिंदुस्तान टाइम्स पर इसे पब्लिश भी किया गया
2: तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं कुछ जिसके बाद में चलकर इस पर करेंगे कुछ चर्चा लेकिन सबसे पहले आपको ये जो स्टोरी जहां से आपने कही है कि हिंदुस्तान टाइम्स से आपको ये मिली है और फिर इसे पब्लिश किया गया जिसके बाद चलकर ये आपके हाथ यहाँ न्यूजीलैंड में बैठे बैठे लगी कमाल की बात ये है कि है न्यूजीलैंड की कहानी
15: जी
2: और इस पर हमें चर्चा करनी
15: तो एक महिला है इनका इंस्टा अकाउंट गोज बाय द नेम ऑफ स्टोरीज बाय शिफाली
2: ओके
15: उन्होंने अपने ये कहानी जो है ये शेयर की है और वो पहले आप थोड़ा सुन लें
2: ओके चलो पहले ये सुनाते हैं आपको जिसके बाद में आज कवर्स से टेक टॉपिक ये भी आपके लिए हम लेकर आएंगे
16: It's 7:55 right now. I was supposed to catch a bus at 7:43. A bus came and it left. The only struggle that I feel in New Zealand is the public transport. Like me, almost the

0: move there and then we'll think about the transportation. But I'm telling you from my own experience, please make sure that before you move to New Zealand, you are prepared and prepared to buy a vehicle within the first week of you moving here. That is the most important thing that you should do. I have to admit that my friends were right. They warned me before I moved here that the only challenge that you will face will be the public transport. Thank you so much for a prior advice I should have listened to. So yes, if you're coming here to study, to work, please make sure the first budgeting that you're doing is for your car. Now I'm supposed to catch a bus at 8:15. Let's see if it will come or not.
1: So, public transport ko lekar kafi baat ho rahi hai na?
2: जी, इन्होंने कहा कि जब ये इंडिया से न्यूजीलैंड आई, इनके जो फ्रेंड्स यहाँ पहले रहते थे उन्होंने इनको एडवाइस किया था कि भाई यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है आपको शायद इंडिया की तरह नहीं मिलेगी एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड मे बी बाय अ कार. मालूम नहीं क्या एडवाइस इनको दिया गया. She did not. And then जब यहाँ पर आई तो उनको पता चला कि ये तो रियल स्ट्रगल है. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज द रियल स्ट्रगल फॉर हर. एंड उन्होंने जाकर बाकी को एडवाइस दी कि अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो मेक श्योर, हाँ, बी प्रिपेयर्ड, अपना बजट इस तरह से बनाओ कि इन द फर्स्ट वीक यू कैन अफोर्ड टू बाय अ कार और समथिंग लाइक दैट. तो हमने सोचा आज आपसे पूछते हैं, जब आप न्यूजीलैंड आने वाले थे क्या आपके किसी फैमिली मेम्बर या फिर किसी दोस्त ने आपको कोई एडवाइस दी थी
1: About New Zealand,
2: कि क्या आपको करना चाहिए यहाँ आने से पहले. What should you be prepared for?
1: Right.
2: ऐसी कोई भी एडवाइस जो है क्या आपको दी गई थी.
1: राइट. तो आप हमारे पास 0800-004-866 पर कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं जब आप न्यूजीलैंड आने की तैयारी कर रहे थे. इफ़ यू शेयर द इन्फॉर्मेशन विद एनीवन हु ऑलरेडी वाज लिविंग इन न्यूजीलैंड, तो उन्होंने आपको यहाँ आने से पहले आपको न्यूजीलैंड के बारे में क्या एडवाइस दिया था.
2: इन व्हाट वे योर रियल स्ट्रगल्स. इनका कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इनके लिए एक रियल स्ट्रगल है इन इंडिया, इन न्यूजीलैंड सॉरी. तो आपके लिए रियल स्ट्रगल क्या था.
1: तो एडवाइस जो इनको दी गई इस मामले में, इन्होंने स्ट्रगल भी फेस किया. बट व्हाट अबाउट यू, गुड मॉर्निंग, कैसे हो.
3: गुड मॉर्निंग, आई एम गुड थैंक यू, हाउ आर यू गाइस.
1: एकदम बढ़िया. और बताइए शेरल, क्या कहना है आज के टॉपिक ऑफ द डे के बारे में.
3: पूजा, व्हेन आई केम टू न्यूजीलैंड, आई केम टू न्यूजीलैंड अ डे बिफोर माय 21st बर्थडे. मैं 26 इयर्स से न्यूजीलैंड में हूँ और जब आ रही थी तो सब बोल रहे थे यू विल बी फाइन. माय डैड डिडंट वांट मी टू कम, बट यू नो 2000 में कू हुआ तो माय मॉम सेड बेटर फ्यूचर गो. व्हेन आई वाज कमिंग तो आई सिर्फ ये था कि यू गो देयर, सभी फैमिलीज है, दे लुक आफ्टर यू. बुलशिट, नो वन केयर्स अबाउट यू लाइक योर पेरेंट्स. As soon as you come here, they think you're a house girl. Oh. उनके भी बच्चे हैं बट घर का काम आपको करना है. बट yeah, I think the advice was not to come, but I wanted to come. And yeah, I really struggled in the first 2 years of my life. I mean, because you don't have any background at home. My dad used to drive us to school and they take everywhere we wanted to go. We were from a middle class family. यहाँ पे तो things were better. But I started studying and then started part-time work and I got told I have to give $150 a week, every week, and that's just for food. So, that, you know, the struggles of life, but then you learn. And I think the advice when my sister was coming, I just said, just come here, I'm here for you.
1: Oh.
3: You know, that's what I, you know, that's the only advice I gave her. And, you know, yeah, इसी को बोलते ना, you look after each other, बहन, भाई, friends, family. But yeah, there was no other struggles, money या कुछ नहीं, but ये family ही struggle थी.
2: Okay, thank you. Thank you so much आपके call के लिए.
1: Thank you so much. Good morning. Hello.
4: Good morning.
1: हाँ जी परविंदर, बताइए.
4: जब मैं यहाँ पर आई थी, मेरे यहाँ पर कोई भी नहीं था. एक इंसान को भी नहीं मैं जानती थी. पर इंडिया से जहाँ से मैंने IELTS किया था, वो IELTS वाले टीचर ने बोला था कि मैं इंडिया में लेक्चरर थी. तो उन्होंने बोला था कि न्यूजीलैंड में डोंट एक्सपेक्ट कि आप लेक्चरर हो. तो मतलब इंडिया में क्या वैल्यू होता है ना लेक्चरर और टीचर का. तो उसने बोला कि ये सोच के मत जाना वहाँ पे. वहाँ पे आपको स्क्रैच से कुछ भी करना पड़ सकता है. तो उसने मुझे एक हेड्स अप दे दिया था.
2: एंड डिड यू टेक इट सीरियसली जब उन्होंने ये बात आपसे कही थी?
4: हाँ, मुझे लगा वो कुछ बोल रहा है तो सोच के बोल रहा होगा, ऐसे क्यों बोलेगा।
2: Okay.
4: और जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, लेक्चरर है तो यहाँ क्या करने आई है, झाड़ू पोछे मारने आई है। तो आई वाज लाइक कि कैसा थिंकिंग है ये, मैं लेक्चरर थी, आई एम रेडी टू डू अ स्ट्रगल, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है?
1: वो भी बात है,
2: चलो
1: थैंक यू।
4: ट्रांसपोर्ट का ऐसा था कि मेरा एक बार काम लगा था फंगाप्रोवा और एक घंटा लगता था जाने में बस में, और बस की सर्विस भी एक एक घंटे बाद की होती थी। बाबा, मेरी एक बस अगर मिस हो जाए ना तो आई कैन नॉट रीच ऑन टाइम। ट्रांसपोर्ट मतलब अब तो मुझे पता नहीं, अब तो हार्डली पता नहीं कितने साल हो गए मैंने यूज नहीं की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर उस टाइम पे बहुत खराब थी। और एक बार तो मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी, मैंने हाथ भी दिया, बस वाले ने रोका नहीं और चला गया। मतलब ऐसे कैसे, आपको इतना बड़ा बंदा नहीं दिखा बस स्टॉप पे,
1: फुल
4: लेट हो रहा होगा काम पे के। है ना, तो हाँ खराब तो है। मैं हर आपको बता रही थी कि इंडिया में जैसे यूनी वगैरह तो मैं बस में ही गई हूँ, मैंने कहा वहां पे तो कहीं भी मतलब चंडीगढ़ में भी जैसे स्टॉप होते थे पर लोग जैसे बोल देते थे भैया यहाँ पे रोक देना जरा, तो बस वहां गालियां भी देता था कि स्टॉप आगे है
1: पर फिर भी रोक देता था
4: और उसके अलावा भी जैसे अगर आपका स्टॉप आने वाला है और बस भरी होती थी तो धक्के से आप अपने आप पहुंच जाते थे।
1: थैंक यू परविंदर, हैव अ वंडरफुल डे, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल के लिए। तो अगर आप भी कॉल करना चाहें 0800 हम 0800-004-866 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, पर कुछ मैसेजेस भी आए हमारे पास।
2: बरखा नोशो से उन्होंने कहा द ओनली एडवाइस आई गॉट वाज टू स्टे अवे फ्रॉम फैमिली, कीप डिस्टेंस।
1: ओके, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हेलो
5: हेलो
1: जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
5: गुड मॉर्निंग पूजा जी, विजय जी, कैसे हो आप?
1: हम दोनों एकदम बढ़िया है, आप बताइए, व्हाट्स योर टेक ऑन द टॉपिक टुडे?
5: मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ, अभी दो साल से आप न्यूजीलैंड में हो, आपका टॉपिक थोड़ा अच्छा था तो मैंने सोचा मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बेट रहा है।
1: हाँ जी,
5: ट्रांसपोर्ट की तो मैंने करना चाहा तो इसलिए मैंने कॉल किया।
1: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सबसे पहले तो बताइए आप क्या क्या एक्सपीरियंस रहा दैट यू'ड लाइक टू टॉक अबाउट?
5: मैं जब न्यूजीलैंड आ रहा था तब मेरा फ्रेंड था यहाँ पे, हम दोनों साथ में जॉब कर रहे थे इंडिया में, उसने मुझे बताया था आएगा तो पहले तुझे कार लेनी पड़ेगी काम के लिए, तो मैंने बोला सही है भाई मैं कार ले लेता हूँ, लेकिन वो जो कार जो थी वो मेरे फ्रेंड के थी, तो उसने मुझे वो कार बिगड़ी हुई मुझे दे दी चपटाड़ी, विदाउट एनी वॉक, कुछ नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था वॉक क्या है यहाँ पे, बाद में पता पड़ा कि वॉक जरूरी है मुझे, तो बाद में मैंने वॉक करवाया, वो कार किया, बाद में 10 मिनट के बाद कार खराब हो गई, ट्रांसमिशन खराब हो गया, तो खर्चा आया $2,000 1 week. बाद में मैंने वो कार का खर्चा करवाया, बाद में वो कार $3,000 में मुझे पड़ी।
2: अच्छा,
5: वो कार सेल की लॉस करके 1,000 लॉस किया उसमें भी, तो 3,000 लॉस करके मैंने कार सेल की। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस। बाद में मैंने एक नई कार ली 6 महीने के बाद, लेकिन मेरा बेड एक्सपीरियंस था कार की वजह से।
1: And imagine someone you knew, उनकी वजह से भी ये था ना। थैंक यू जी आपके कॉल के लिए, हैव अ वंडरफुल डे, शुक्रिया, उम्मीद है और भी बातें आगे चलकर आपसे जरूर होंगी। फिलहाल गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हेलो, आपकी आवाज बहुत क्लियरली नहीं आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोले आप तो प्लीज।
5: हाँ जी, मेरा भी कुछ हेलो आवाज आ रही है आपको?
2: जी जी आ रही है।
5: हाँ, वो किसी से ली गाड़ी मैंने, गाड़ी तो बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, एक निसान कूप करके मिलती थी गाड़ी, स्पोर्ट्स छोटी टू डोर, अभी बहुत ही रियर मिलेगी, अब मिलेगी नहीं, 1995 का कुछ मॉडल है वो पुराना, तो वेल मैं उतना तो लेट नहीं आया, मैं तो बाद में आया आफ्टर 2000, तो वो गाड़ी मैंने ली
6: वो वॉज जस्ट 1500 और गाड़ी काफी इकोनॉमिकल थी, ठीक थी, सब कुछ बढ़िया चल रही थी. एक दिन बारिश आई बहुत जोर की ना, तो जब मैं सुबह उठा तो पूरा गाड़ी में पानी भरा हुआ था. एंड आई वाज सरप्राइज, मैंने सोचा ये कैसे गाड़ी में कैसे फ्लड आ गया. और मैंने बोला यार तो, और वो गाड़ी तो फिर वही होती है जब आप किसी से ऐसी रैंडमली लेते हैं, फिर उसकी गारंटी वारंटी तो होती नहीं है. वो बंदा भी फिर गायब, और किसको फोन करे क्या करे अब. तो मैं क्या करता था उस गाड़ी को, मतलब के अपना वैसे इस्तेमाल करता था. जब भी बारिश होती थी, क्योंकि कारपोर्ट तो था नहीं मेरे पास, तो उसके लिए कुछ आइडिया होता नहीं था, तो मैं ज्यादा कुछ लगा देता था. और गाड़ी को मैंने अच्छा चलाया, गाड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम उस टाइम पे वो रबर भी अगर चेंज कराना था, क्योंकि उसके डोर कहीं से लॉक थे, तो वो सारी चीजें थी. तो फिर भी मैंने चलाई उस गाड़ी को, एक डेढ़ साल चलाया. बहुत बढ़िया गाड़ी थी वो, और पेट्रोल सेवर थी. बट लेकिन हाँ, ऐसा होता है जब आप नए नए आते हैं और वो सारी चीजें स्ट्रगल और फिर आपको करना पड़ता है, तो काफी सारी चीजें होती है. वो तो कोई नई बात नहीं है. अगर हम इंडिया से, हमारे इंडिया में कोई दूसरी कंट्री से आता है या कहीं से आता है, तो वो भी स्ट्रगल करता है वहां सेटल होने के लिए, तो धीरे धीरे हो जाता है.
2: थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए. तो अब आप चाहें तो 5599 पर हमें टेक्स्ट करके भी बता सकते हैं. बस इतना जानना है कि न्यूजीलैंड आने से पहले आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, क्या एडवाइस उन्होंने न्यूजीलैंड के बारे में आपको दिया था. जैसे स्टोरीज बाय शिफाली ने जाकर शेयर किया कि उनको सलाह दी गई थी उनके फ्रेंड्स द्वारा, दैट यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर ट्रांसपोर्ट बिफोर व्हेन यू गेट हियर, क्योंकि यहाँ पर इट विल बी अ रियल स्ट्रगल. कि आपको ऐसी कोई एडवाइस अगर दी गई हो तो 5599 पर हमें मैसेज कर सकते हैं.
7: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड, गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम. ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
2: Accurate traffic.
3: Got an unreliable outboard?
4: Should stay mainly fine all day now. Plenty of cloud, high of 18. Into the city, Northern Motorway, 28 minutes from Constellation Drive to town, 46 from Silverdale. Heavy at Silverdale, slow Constellation to the bridge with a few heavy patches. Northwestern, 44 minutes, Massey to town. We're heavy on and off all the way from there. Southern, 40 minutes in from Manukau, slow from Papakura, heavy from Otahu. Slow both ways on the southwestern.
3: Upgrade now with 0% finance on selected Yamaha outboards. TC's, fees and credit criteria apply.
5: You filled the pinata before I sealed it, right?
6: No, you did.
5: Oh, I thought you did.
7: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
8: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds, like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
9: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
10: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
11: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
12: Award goes to Indelible Homes.
11: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
13: Kahani of Indelible Homes.
14: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
16: Let's go.
0: Straight from the heart.
17: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
18: तो चलिए फिलहाल समय की ओर देखिए, बस 19 मिनट बाकी है समय 9 बजने में। ठीक 9 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये आपके लिए हम लेकर आएंगे। आज का व्हाट्स एप टॉपिक हम लेकर आ रहे थे, जिस पर हमने कहा कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है शेयर करने के लिए तो आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं ऑन 5599 एंड वीड लव टू हियर फ्रॉम यू। और आपके जो भी व्यूज हैं टॉपिक ऑफ द डे के बारे में, वो हम डेफिनेटली आपकी ओर से सबको पढ़कर बताएंगे कि क्या आपने हमें मैसेज जो है ये किया हुआ है। बट फोन इधर कुछ और मैसेजेस जो है ये हमारे पास मैं देख रही थी आए कि नहीं आए। एक अपडेट जो है ये ज़रूर आया है और MSD स्टाफ के बारे में बताया गया है कि एटलीस्ट 22 सिक्योरिटी इंसिडेंट्स पर डे जो है ये MSD के स्टाफ जो है ये फेस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट के जो कर्मचारी हैं, ऑलमोस्ट 22 इंसिडेंट्स पर डे, दैट्स क्वाइट अ लॉट। अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो है ये फेस करते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स जो है अगर ये देखा जाए तो दे हैव रिकॉर्डेड 8,142 सिक्योरिटी इंसिडेंट्स सिर्फ लास्ट ईयर, जिसमें अब्यूज और थ्रेट जैसे मामले शामिल हैं।
19: तो अपडेट्स और भी हम आपको बारी बारी से देते रहेंगे और इसके अलावा और भी कई चीज़ें हो रही हैं। जो हमारा फादर्स डे सोशल मीडिया कॉम्पिटिशन है उसमें भी हिस्सा लेना मत भूलें। कुछ डिटेल्स थोड़ी देर बाद हम आपको देंगे।
18: एंड डोंट फॉरगेट हम बोर्डिंग कॉल, क्या आपने ध्यान से सुना? क्योंकि बोर्डिंग कॉल तो प्ले हो चुका, कब प्ले हुआ? इफ़ यू हैड पेड अटेंशन आपको याद होगा और आपने उम्मीद है कि अपना जो एंट्री है ये बोर्ड कर लिया है, रजिस्टर कर दिया, सबमिट कर दिया। इफ़ नॉट तो BC यानी बोर्डिंग कॉल का शॉर्ट फॉर्म लिखकर हमारे पास आप सेंड कर सकते हैं 5599 कॉम्पिटिशन का लिंक पेज आपको मिल जाएगा, क्लिक ऑन इट, वहां पर लिखा होगा एंटर कोड नाउ, जहां पर आपको बोर्ड नाउ टाइप कर सबमिट करना है।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम। Accurate traffic.
6: Switch to AMI car insurance.
7: Plenty of cloud at times, a lot of sunshine today, 18 hour high. Easing on motorways, coming in on the southern, 38 minutes, Manukau to town now. We're slow from Manukau, Hebi or Tahuhu to Green Lane. Little slow both ways on the southwestern, southbound at Mount Roskill, northbound at Witty. Northwestern, 32 minutes in from Massey, slow from Te Aratu, Hebi Patiki to Grey Lane. Northern, 26 in from Constellation, just slow all the way from there.
6: AMI roadside rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
8: Farmers Massive Red Dot sale ends Wednesday. There's now 60% off Red Dot clothing, 50% off Red Dot beauty, lingerie and men's underwear, 40% off Red Dot toys and 30% off Red Dot Lego. Farmers Red Dot sale ends Wednesday. Conditions and exclusions apply.
9: Please use your imagination for the following ad.
10: If I won Powerball, I'd do some spending. Yep, I'd spend some time with... And we'd enjoy a whole lot of...
9: Imagine winning $20 million this Wednesday. Play in store or online.
11: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
12: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
13: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
12: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
14: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
15: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
15: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
17: सोशल मीडिया पर तो आजकल सभी होते हैं और कभी कभी हम जब स्क्रॉल करने के लिए भी बैठते हैं, वी गेट अक्रॉस सो मेनी इन्फॉर्मेशन एंड थिंग्स। और ऐसे अगर आप भी सोशल मीडिया पर, स्पेशली अगर आप फेसबुक पर हैं, आपका अकाउंट है फेसबुक पर, तो एज सून एज यू गेट सम टाइम, मेक श्योर आप विजिट करें हमारा फेसबुक पेज। अगर आप हमारा फेसबुक पेज विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको फीचर्ड फोल्डर में एक पोस्ट दिखेगा, एंड दैट इज डेड्स AI अपग्रेड। ये जो पोस्ट है ये खासतौर पर हमारा फादर्स डे कॉम्पिटिशन है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने डैड के लिए यू कैन विन $300 कैश। एक बहुत ही सिंपल कॉम्पिटिशन है ये, बस आपकी क्रिएटिविटी जो है कितनी है, इसमें आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा और बदले में आप ड्रो में शामिल होकर $300 कैश जीत सकते हैं। AI का जमाना है ना आजकल।
18: हाँ, आपको अपने डैड को AI की मदद से एक सुपर हीरो में तब्दील करना है, उनकी फोटो और पोस्ट करना है। रितेश ना जो है, इन्होंने जो जाकर शेयर किया है, मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। माई डैड इज वेरी कूल एंड ही ऑलवेज कीप्स अ कूल हेड इवन व्हेन थिंग्स हीट अप। He is the best super dad in the world. If my dad had a superpower, he would be able to fly everywhere.
17: Huh.
18: He would fly over buildings, through the cloud, and take me on amazing adventures. But he doesn't need superpowers to be my hero. He makes me laugh, helps me when I need him, and is always there for me. My dad is my superhero and I love him very much. I think अपने dad Sunil Singh को रितेश दा ने tag भी किया है जाकर।
17: Right, तो very nice, AI image के जरिए इन्होंने नेपच्यून क्यों बनाया उनको मुझे नहीं पता, बट उनके कॉस्ट्यूम में नेपच्यून लिखा हुआ है एंड यू कैन सी हिज सुपर पावर्स, जहाँ पर ये हर और बस अपना कूलनेस जो है ये बिखेर रहे हैं ना. नाइस एंट्रीज यार, सम वेरी अमेजिंग एंट्रीज जो अभी तक आई हैं. एंड इफ यू हैव नॉट गिवन योर एंट्री इन फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन, मेक श्योर जैसे टाइम मिले आप कर लीजिए. 4th of September को ड्रॉ होगा विच इज जस्ट अ फ्यू वीक्स अवे, और तब पता चलेगा कि $300 कैश है.
18: नेक्स्ट वीक
17: है 4th September. Oh God. Next week
18: Friday को draw हो जाएगा. मूर्तिमान, अरे क्या कमाल का आप देखिए जरा उनकी फोटो, उनके जो अपने डेट के लिए उन्होंने पोस्ट की. यू गो एंड चेक आउट जो एंट्रीज आई हैं अभी तक, वो आप चेकआउट करें और अपनी एंट्री भी वहां डाल सकते हैं टू विन कैश इनाम फादर्स डे के लिए.
17: एब्सोल्युटली. एंड रिमेंबर, ऐसे और भी बहुत से कॉम्पिटिशन हो रहे हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इनफैक्ट हमारा ओनिया कॉम्पिटिशन में भी आपको भाग लेने का मौका मिलेगा जिसमें आप $500 जीत सकते हैं. एंड क्या करना है उसके लिए हम अगले घंटे आपको जरूर बताएंगे. बट डोंट फॉरगेट, हमारा हम बोर्डिंग कॉल प्ले हो चुका है. बीसी लिखकर अगर आप 5599% करोगे कंपटीशन लिंक आपको मिल जाएगा. बस बोर्ड नाउ टाइप कर सबमिट करना है जहां पर लिखा हुआ है एंटर कोड नाउ गिवन टाइम के अंदर अंदर. और ये याद रखें कि आप जीत सकते हैं 2 return air tickets टू वनुवातु विद सोलमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी थैंक्स टू सोलमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुवातु. विजिट flysolmans.com डिटेल्स के लिए या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए hum.over.nz.

0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: Accurate traffic.
2: Fly Solomon Airlines.
3: Hopefully staying fine all day. Some cloud, high of 18 degrees. Into the city, Northern Motorway, 26 minutes from Constellation Drive to town, 36 from Silverdale, slow Constellation to the bridge. Northwestern, half an hour messy to the city, slow from Pātiki, heavy on and off to Grey Lynn. Southern, 38 from Manukau, slow from Papatoetoe, heavy East Tāmaki to Green Lane. Southwestern, slow both ways at Whittier and Mount Roskill.
2: Auckland to Vanuatu from $925 return. Selected dates, conditions apply. FlySolomons.com.
4: It's what might save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Knitting Yarn, Party Curtains and Blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full price products. Excludes clearance. See website for details.
5: To infinity and beyond. Be in to win one of 500 exclusive Platinum Buzz Lightyear Ushies at Woolworths. Just boost the offer in the Everyday Rewards app, spend $30 or more and scan to enter. Offer ends 30th of August. T's and C's apply. Only at Woolworths.
6: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
8: Hi, Kevin Eater here, Trade Staff. Is respect in your workplace and being treated like an adult important to you? Are you currently in work that feels like you're going nowhere? Life's too short for bad jobs. Let's have a chat. If you're looking for better pay, flexibility, or a new challenge, let us show you how. There's never been a better time than now. We're online, tradestaff.co.nz.
9: Trade Staff, Trade Staff, industrial employment solution.
0: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. The world is remembering Dolly Parton's pure heart, wit and incredible country music career. She died peacefully in Tennessee, aged 80. Her nephew Brian Seaver spoke for the family.
11: Dolly was a farmer, just like her daddy. He farmed the soil, she farmed songs and happiness.
10: And a small private service will be held for the immediate family of Dolly Parton at her request. Her family is encouraging fans and friends to pay tribute on social media by tagging at Dolly Parton or leaving a message at dollyparton.com. An early morning house fire in Auckland has injured two people. Firefighters were called to Bucklands Beach just before four, finding a two-storey building well involved in flames. St John's two patients were treated in minor and moderate conditions, with one needing hospitalisation. A crew remains at the scene extinguishing hotspots. And the body of a 69-year-old man has been found in Oamaru Harbour after a crash. Police were called to Holmes Wharf yesterday evening after reports that a vehicle went into the water. A scene guard was in place overnight and a scene examination will be conducted today. Police would like to speak with anyone who witnessed the crash. In sport, an impressive performance from Ethan Blackadder at Ellis Park this morning. The All Blacks flanker scored two tries in a 41-35 comeback win over the Lions. Coach Dave Rennie says Blackadder had a big game.
12: You know, he was all over the park. He got his hands on a lot of ball. Support play, he's just got a big engine, Ethan, and had a massive impact on the game tonight.
10: Meanwhile, loose forward Anton Segner has been ruled out of the rest of the tour after undergoing surgery for an infection. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. Exclusive Bledisloe Cup packages selling now.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
13: World's best. Hamari good brands me.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun.
14: call 0800 462626.
15: 14.9 degrees temperature hai Super City Auckland mein filhal. High of 18 expected hai baad mein chalkar. Overnight to 10 degrees rahega. Mainly fine weather rahega. Lekin kuch kuch ilaqo ke liye little bit of showers in the afternoon predict kiya ja raha hai. Aaj ka sunset 5:57 PM par.
14: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smunko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
17: What's going on? Kya bakte ho?
18: Are kehna kya chahte ho?
19: पोलैंड की जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कॉम्बैटिंग साइबर क्राइम है ने अनाउंस किया है कि उसने 23 ईयर ओल्ड एक पर्सन को अरेस्ट किया है. उन पर शक है ऑफ स्टॉकिंग, आइडेंटिटी फ्रॉड एंड कोजिंग मैसिव फाइनेंशियल लॉसेस टू सेवरल पॉलिश कंपनीज. पोलैंड की बहुत सारी कंपनीज को फाइनेंशियल घाटा करवा दिया उसने. क्या
15: कैसे?
19: हाँ, ऐसे पूछना चाहिए ना. उसने क्या किया कि he ordered hundreds of pizzas at random addresses across the country. हाँ.
15: And then?
19: None of the people जो indicated थे as recipients, उनको orders के बारे में जानकारी ही नहीं थी.
15: हाँ.
19: और छानबीन जब पुलिस ने की तब पता चला पिज्जा जो है ये एक यंग लड़के ने ऑर्डर किया था. Not only included detailed information about the victims, which could only have been known to them or their closest friends and relatives, lekin also serious threats like abducting a minor, setting fire to workplaces and intentionally causing road accidents. Most of bogus PC deliverers जो हैं ये एक शहर में किए गए थे, लेकिन कुछ targeted जो हैं ये बड़े बड़े Polish cities में भी किए गए थे. हालांकि कई eateries जो हैं उनको losses जो है ये हुए क्योंकि उन्होंने जो orders मिले थे उन्हें fulfill कर दिया और कुछ deliveries जो हैं ये reject हो गए थे technical reasons की वजह से. एक इंस्टेंस में 23 ईयर ओल्ड सस्पेक्ट इज बिलीव टू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 300 पिज्जास.
15: ओह,
19: 300 पिज्जास एक्सीडिंग $10,000. एक और में द रेस्टोरेंट्स कैंसल्ड द ऑर्डर क्योंकि द नंबर ऑफ पिज्जास जो है वो उस टाइम में नहीं बना सकते थे.
15: जितने टाइम में उनको चाहिए था.
19: हां, तो उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया. और बाद में वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करेंगे कि चलो भाई
15: थैंक गॉड वी कैंसल्ड
19: वी कैंसल्ड द ऑर्डर क्योंकि ऐसा कोई यू नो ऑथेंटिक और जेन्युइन ऑर्डर तो था नहीं.
15: नहीं सच में ना, बट ऐसा अगर कुछ हो रहा हो द एफर्ट द बिजनेस इज पुटिंग इट इन उसको चलाने के लिए द स्टाफ जो मेहनत करते हैं दैट टाइम और जो खुशी उनको होती थी कि इतना ऑर्डर आ गया आज यू नो इतनी कमाई हुई देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशन इन्वॉल्वड इन एज वेल. और जब ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो कितने लोगों के लिए चीज़ें ख़राब होती है. ऑफ कोर्स द पीपल हु आर डूइंग इट इंटेंशनली चीज़ें ख़राब करने के लिए उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो लोग फेस कर रहे हैं ये सिचुएशन उनको कितना अफेक्ट होता होगा इन चीज़ों से और कितना संभल कर वो फिर यू नो कुछ भी काम करते होंगे. इट्स वेरी एविडेंट.
19: एग्जैक्टली. तो ऐसी और भी कई कहानियां हैं जो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे. थोड़ी देर बाद देखेंगे हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है. प्लस इस घंटे आपको एक और कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिलने वाला है.
15: कंपटीशन की बात आपने की तो बता दें कि हमारा जो फेसबुक पेज है यहाँ पर आपके लिए रक्षाबंधन प्रमोशन हमारा जारी है. तो एक चीज और आपको हम याद दिला दें कि अगर आप इस रक्षाबंधन प्रमोशन में हिस्सा लेना चाहते हैं आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है और बहुत कम टाइम आपके पास बचा है क्योंकि इसी फ्राइडे को हम ड्रॉ करने वाले हैं. विजिट कीजिए हमारा फेसबुक पेज और वहां पर आपको मिलेगा फीचर्ड फोल्डर में एक पोस्ट अ लाइफ टाइम इन वन ऑब्जेक्ट और इसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आपको एक ऑब्जेक्ट की फोटो जो है ये डालनी है. ये जो ऑब्जेक्ट है कोई भी चीज हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग. जैसे अलीशा ने एक बेल्ट की फोटो डाली है, सुनील ने एक घड़ी की फोटो डाली है, साक्षी ने एक शर्ट की फोटो जो है ये डाली है और साथ में मेरे ख्याल से नितिका है इन्होंने एक रिसीट की फोटो जो है ये डाली है. तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की फोटो इन्होंने पोस्ट की हुई है और ऐसे ही किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट को आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं बट नॉट विदाउट अ रीज़न. द रीज़न इज क्यों आप ये पोस्ट करें बिकॉज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होल्ड्स अ स्पेशल मेमोरी जो आप और आपके सिबलिंग जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. और ये जो स्पेशल मेमोरी है, इट कुड बी इन रिगार्ड्स विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. उसकी फोटो आप जैसे डालोगे कमेंट सेक्शन में, दो तीन लाइन में बताइए हमें क्यों ये चीज आपके लिए इतनी मेमोरेबल है, इतनी स्पेशल है. और फिर आप उसके बाद में अपने भाई या बहन को टैग कीजिए. वंस आप ये तीनों चीजें कर देते हैं, आप उस ड्रो का हिस्सा बन जाएंगे जहां पर रक्षाबंधन के इस खास मौके पर कोई तो है जो आज नहीं कल नहीं परसों इनफैक्ट फ्राइडे को 28th ऑफ अगस्त को विजेता होंगे और $300 कैश आपको मिलेगा. तो कोशिश आप कीजिए और बस कुछ ही दिन बाकी है, मतलब आज और कल दो ही दिनों का टाइम है, बिकॉज फ्राइडे को सिंस ड्रॉ होगा तो फ्राइडे को एंट्रीज हम नहीं इनवाइट करेंगे. आज इनवाइट करें, कल इनवाइट करें, ओनली टू मोर डेज टू गो. अपनी एंट्रीज हमारे रक्षाबंधन प्रमोशन में जरूर भेजिए ताकि आप भी $300 कैश जीतने वाले कॉम्पिटिशन का हिस्सा बन सके.
20: तेरे किट धूम, तेरे किट धूम, तेरे किट.

0: going on.
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत से जगहों पर आने वाले दिनों में मनाया जाएगा इसी सप्ताह अंत से. सबसे पहले दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इसी शनिवार से अगले शुक्रवार तक द के 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मेनुकाउ आपको जाना होगा. रात 7:30 बजे से कथा जो है ये आरंभ होगी. रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एव मेनुकाउ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है ये मनाया जाएगा इसी शनिवार से अगले शुक्रवार तक. और उसके अलावा न्यूजीलैंड संगम द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा डिको ऑफ एलिगेंस 16 लेम्बी ड्राइव मेनुकाउ में. दैनिक पूजा जो है रात 7:30 बजे से आरंभ होगी. श्री कृष्ण कथा, आरती, प्रसाद और भोजन का भी प्रबंध रहेगा और व्यास रहेंगे नलेश नायडू जी. श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इसी शनिवार से मनाया जाएगा अगले शुक्रवार तक. रात 7:30 बजे से कथा जो है ये आरंभ होगी. और उसके अलावा श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन भाग मंडली द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व ये मनाया जाएगा इसी शनिवार से वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एव पापाटोई टोई में. तो आप जाकर इसमें भी जरूर हिस्सा ले सकते हैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Hey, देखो मैं आ गए.
5: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की.
6: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल.
5: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश.
6: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300. डैड को रेडी करो, खुश करो.
5: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
7: Coffee? The usual?
8: How about the unusual?
9: Can't wait for coffee? Then don't! Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
10: Want to be rewarded 5 times faster? Boost your offers in the Everyday Rewards app, spend with our partners and scan your card to enjoy more points. Download the Everyday Rewards app today and boost away. T's and exclusions apply.
11: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
12: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
13: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
14: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
13: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और 2 और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
14: पर डेवलपमेंट के पैसे
13: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
15: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है. टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश, मयंक पाला, कियारा अडवाणी, तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी.
16: हेलो डैडी.
15: टॉक्सिक नाउ शोइंग इन सिनेमास.
17: इट्स टाइम, आई एम कमिंग.
15: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: 19 मिनट हो रहे हैं, 9 बजकर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा और 9977 आपने मैसेज जो है ये हमारे पास भेजा है, थैंक यू सो मच। उस पर हम नजर डालेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले याद रखें डेड्स AI अपग्रेड। फादर्स डे के मौके पर $300 कैश जीतने का मौका, और इसके बारे में तो हमने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, बता दिया है कि क्या आपको करना है। वैसे फादर्स डे के मौके पर रिवेज ग्रिल, ये भी थोड़ी देर बाद होगा इस प्रोग्राम में। लेकिन 9977 आपने जानना चाहा है, आपने कहा है कि प्लीज़ एक्सप्लेन द बोर्डिंग कॉल प्रोसेस। तो ये कंपटीशन जो है, इसमें दो लोगों को रिटर्न एयर टिकट्स टू वनवातु विच $1,000 स्पेंडिंग मनी, $1,000 पैसे जो है न्यूजीलैंड डॉलर्स, ये भी हम देंगे फॉर स्पेंडिंग। ये जीतने का मौका हम दे रहे हैं। आपको क्या करना है, सुनते रहना है सुबह 8 से 9, दिन में 11 से 12, और उसके अलावा 1 से 2 जो कॉम्पिटिशन है ये होता है, और उसके साथ शाम 5 से 6। इन टाइम्स के दौरान एक स्पेशल बोर्डिंग कॉल जो है ये रेडियो पर बजेगा। दिस इज़ द बोर्डिंग कॉल फॉर ऑल पैसेंजर्स और एट्सेट्रा। आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसे ही ये बोर्डिंग कॉल आपको सुनाई दे, आपको जाना पड़ेगा रोवा पर। चाहे आप hum.rova.nz विजिट करें या rova.nz या रोवा ऐप आपके पास है, वहाँ पर जाइए, जो कंपटीशन पेज है वहाँ पर जाकर आप देखेंगे। जो भी टाइम होगा, अगर 8 AM का टाइम दिया गया होगा तो वहाँ पर एक ब्लैंक आपको दिखेगा बॉक्स, 8 AM, एंटर कोड नाउ। जहाँ पर लिखा होगा एंटर कोड नाउ, वहाँ पर आपको बस टाइप करना होगा बोर्ड नाउ और क्लिक करना पड़ेगा सबमिट आफ्टर यू एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे ही आप सबमिट करोगे, यू बिकम पार्ट ऑफ द ड्रॉ। जितने ज़्यादा बार आप एंट्रीज में हिस्सा लेते हो, जीतने के उतने ही ज़्यादा मौके आपके पास होते हैं। सो रिमेंबर, दिस इज़ वेरी सिंपल। और अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है ढूंढने में कि कहाँ पर आपको जाकर बोर्ड नाउ एंटर करना है, तो सिंपल चीज़ आप करें, BC लिखें और उसे 5599 पर हमारे पास भेज दें। BC ये लिखकर 5599 पर हमारे पास भेजें, और आपके पास आपके फ़ोन पर एक मैसेज आएगा जिसमें एक लिंक होगा। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली जो कंपटीशन पेज है ये आपके फ़ोन पर खुल जाएगा, और वहीं पर जाकर आपको जहां लिखा होगा एंटर कोड नाउ, आपको बोर्ड नाउ टाइप करके सबमिट कर देना है। इट्स दैट सिंपल। टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छी तरह से आप पढ़ लें, ये भी आपको रोवा पर मिल जाएंगे। hum.rova.nz आप विजिट कर सकते हैं, या कंपटीशन पेज पर आप जाएंगे तो टर्म्स एंड कंडीशंस वहां आपको मिल जाएंगे। सो मेक श्योर यू आर वेल वेस्ट विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द प्रमोशन। सो टू रिटर्न एयर टिकट्स, आप में से दो लोग होंगे जिन्हें हम ये इनाम जीतने का मौका दे रहे हैं, और $1,000 स्पेंडिंग मनी, दैट्स अराउंड 70,000 वातु, जो वनवातु की करेंसी है। और थैंक्स टू सलमान एयरलाइंस, अब हफ्ते में 4 बार नॉन स्टॉप ऑकलैंड से वनवातु फ्लाई करता है सलमान एयरलाइंस। आप flysolomons.com विजिट कर सकते हैं। और अभी आप हमें ये बताइए, अगर आप ये कॉम्पिटिशन जीतते हैं, आपने पार्ट लिया है, और अगर आप जीत जाते हैं, वो कौन होगा जिन्हें आप अपने साथ वनवातु लेकर जाएंगे? हु विल ट्रेवल टू वनवातु विद यू एंड हु विल शेयर दैट $1,000 जो कैश स्पेंडिंग आपको मिलेगा? आपको सबसे पहले लिखना है BC, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम, और ये 5599 पर हमारे पास भेजना है। याद रखें, सबसे पहले आपको लिखना है BC, उसके बाद अपना नाम, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम, और उसे 5599 पर हमारे पास भेजें। 8 मिनटों का वक्त हम आपको दे रहे हैं, और इन 8 मिनटों के दौरान अपने मैसेजेस जो हैं ये आप हमारे पास भेज सकते हैं। फिलहाल 24 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर, तो एक्सप्लेनेशन में ये टाइम गया। अभी थोड़ी देर बाद फादर्स डे रिवर्स ग्रिल में भी हिस्सा लेने का मौका हम आपको देंगे।
0: Hollywood's most wanted.
3: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
4: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: चैटबस्टर आपके लिए हम शामिल कर रहे थे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर. और फिलहाल चलिए आपके लिए हमने प्रॉमिस किया था ना कि कई सारे कॉम्पिटिशन्स जो ये चल रहे हैं तो इसमें पार्ट लेने के लिए आपको मौके जो है ये हम देते रहेंगे. एंड दिस टाइम अराउंड हमारा फादर्स डे कॉम्पिटिशन जो है ये आपके लिए हम लेकर आए हैं.
1: और इसमें आज आप में से किसी एक डैड के पास अपॉर्चुनिटी है टू टेक पार्ट. अगर आप एक पिता हैं कॉल करें हमें अभी राइट नाउ 0800 00 हम. और आपका रिवर्स ग्रिल होगा और अगर सवाल का सही जवाब दिया आपने तो आपका नाम उस ड्रो में शामिल होगा जिसमें $500 कैश नेक्स्ट वीक फ्राइडे को आप जीत सकते हैं. एंड अगर आपके नाम ये $500 हो गए तो भाई आपका तो फादर्स डे वीकेंड एक्स्ट्रा स्पेशल होने वाला है.
0: एब्सोल्युटली. तो आपको बस एक चीज़ करनी है 0800 00 हम 0800 00 4866 पर हमारे पास कॉल करना है. अभी हम आपको दे रहे हैं 1 मिनट का टाइम और 1 मिनट में अगर आप डैड है इफ यू आर अ फादर एंड यू लिसनिंग टू अस राइट नाउ तो आप कॉल कीजिए और बदले में आपको हम कोई एक सवाल पूछ सकते हैं पूछेंगे बेसिकली विच कुड बी अ मॉडर्न डे स्लैंग रिलेटेड क्वेश्चन या फिर
1: कोई फ्रेज कुछ भी.
0: हाँ पॉप कल्चर जो आजकल का है ना इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हम पूछ सकते हैं. टेक्नोलॉजी के मामले में कोई सवाल पूछ सकते हैं तो इट कुड बी एनीथिंग. वी जस्ट वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन जो आजकल के जमाने के साथ हो.
1: कल हमने एयर ड्रॉप के बारे में पूछा था आईफोन पर जो होता है
0: right.
1: तो आज एक और सवाल आपके लिए रेडी है और $500 भी रेडी है टू बी गिवन अवे नेक्स्ट वीक फ्राइडे. ऑल यू गॉट टू डू इज कॉल अस राइट नाउ. टाइम कम है इसीलिए जल्दी से आपको कॉल करना होगा. जब भी अपॉर्चुनिटी मिले इंस्टेंटली कोई पैसे भी नहीं आपको भरने या कॉल करने के लिए कि भाई अरे मेरे $2 बर्बाद हो गए मैंने कॉल किया
0: uh-huh.
1: क्योंकि ये टोल फ्री नंबर है. बस आपको अपना थोड़ा सा वक्त देना है 2-3 मिनटों का और सही जवाब दे दिया तो आपका नाम ड्रो में चला जाएगा.
0: एब्सोल्युटली इतना आसान है. और ये याद रखिए $500 जीतने का मौका है आपके पास. वी आर टॉकिंग अबाउट मनी एंड मनी जो आपको और भी रिचा बना दे. $500 रिचा आप बन सकते हैं.
1: भाई हम $500 लेकर यहाँ पर हल्ला मचा रहे हैं कोई कॉल ही नहीं कर रहा है.
0: किसी को चाहिए नहीं लगता है आपस में बांट लेते हैं. मुझे लगता है ना आज के बाद ऐसे करेंगे हर एक कॉम्पिटिशन हम डिजाइन करेंगे इस तरह से जिसमें हम खुद पार्ट ले सके खुद जीत सके. बट लेट्स सी. ऐसा तो नहीं कि कोई हमें नहीं सुन रहा. इज इट पॉसिबल?
1: वी आर नॉट
0: हियरेबल राइट नाउ. एक नंबर आ रहा है केवल तो नहीं है ये. गुड मॉर्निंग.
2: गुड मॉर्निंग विजय पूजा जी.
0: किससे बात हो रही है केवल?
2: मैं नहीं फोन कर लिया फिर किसी ने तो किया नहीं.
0: मेरे को लगा था यही है. मैंने नंबर देखा मैंने बोला कहीं केवल तो नहीं है ये. मुझे ऐसी फीलिंग आई थी यार आज सुबह से हमारे साथ हो रहा है ये ऐसा. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग. हैव पीपल स्टॉप्ड लिसनिंग टू अस?
2: करना तो नहीं था बिकॉज मैंने कल कर लिया था तो सो आपने कहा कि कोई फोन ही नहीं कर रहा.
0: हाँ आपने पार्टिसिपेट कर लिया ऑलरेडी बिकॉज आपका नाम ड्रो का हिस्सा बन चुका है.
1: अभी
0: एक कॉल और आ रहा है केवल. हम इफ यू डोंट माइंड ट्राई करें हम. थैंक यू जी. आप ऑलरेडी ड्रो का हिस्सा है सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. कोई नहीं कॉल कर रहा है इन्होंने कॉल किया विच वी ट्रूली अप्रिशिएट. कॉन्वर्सेशन तो शुरू की इन्होंने. गुड मॉर्निंग.
3: हाँ नमस्ते मैडम कैसे हैं आप लोग और मेरा नमस्कार आपको भी दीजिए.
0: लीजिए नमस्कार. नमस्कार इनका
1: मैंने लेकर रख लिया. आपको भी थोड़ा सा नमस्कार मैं यहाँ से भेज रहा हूँ.
3: थैंक यू सर. मैंने थोड़े को बहुत समझ लिया.
1: कितने बच्चे हैं सर आपके?
3: 2 हैं जी.
1: अभी उम्र क्या होगी उनकी लगभग? एग्जैक्ट नहीं पूछ रहे हैं.
3: नहीं एग्जैक्ट बताता हूँ. मेरे बेटे की उम्र 43 है बेटी की उम्र 41 है.
1: अच्छा चलो. और टेक्नोलॉजी जो है उससे आप अपडेटेड रहते हैं या फिर टर्म्स जो हैं स्लैंग्स वगैरह जो है
0: होंगे शायद उन्हों
3: तो जितना समझ पाता हूँ समझ लेता हूँ जो नहीं समझ में आता उसको छोड़ देता हूँ.
0: हाँ ऐसा ही होना चाहिए लाइफ में.
1: इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है बहुत आपकी. आज आपका आपका नाम हम ड्रो में शामिल करना चाहते हैं आपको. बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे ये पूछूं आपसे.
0: तो सवाल चेंज कर दीजिए अगर आपको थोड़ा डाउट हो सवाल के बारे में.
3: नहीं नहीं पूछ लीजिए भाई साहब पूछ लीजिए. क्योंकि मैं शर्म कैसे शक्ल तो दिख नहीं रही आपकी.
0: हमारी शक्ल नहीं दिख रही लेकिन लोग देख लेते हैं कहीं ना कहीं से. फिर पकड़ भी लेते हैं.
1: अच्छा ये आपको पता है जो टर्म है TBH उसका मतलब क्या होता है?
3: TBH
1: हाँ.
3: पता है लेकिन मैं लिंक नहीं कर पा रहा.
1: क्या नहीं कर पा रहे आप?
0: लिंक नहीं कर पा रहे.
3: लिंक नहीं कर पा.
1: अच्छा लिंक नहीं कर पा रहे हैं
0: जी. TBH.
1: TBH.
3: To be happy seems to be the easiest, but I'm sure that's not correct.
1: Okay. To be happy. चलो आपको हैप्पी कर देते हैं, आपका नाम हम ड्रो में शामिल कर देते हैं क्योंकि आपने कॉल किया है एंड आपने कोशिश की है।
3: थैंक यू बॉस। ये भी बता दो कि है क्या टीबीएच?
1: टीबीएच तो बता दें, आपका नाम शशि आपने बताया ना किसी? हाँ शशि जी आपने अपना नाम। टीबीएच का मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट।
3: आई न्यू इट।
1: हाँ, मैं तो कभी बूढ़ा नहीं हूँगा
0: यार। ये आजकल ना उम्र से कोई लेना देना नहीं किसी भी चीज का, ये सबको ऐसा ही होता है।
3: देखिए मैं 71 का हूँ, आपको 71 पहुँचने में 50 साल लगेंगे अभी।
0: मुझे अपने 50 साल नहीं लगेंगे,
1: मुझे तो उससे थोड़ा ज्यादा।
3: मेरी बात मान लो यार, लगेंगे
1: लगेंगे आपको लगेंगे, मुझे तो उससे भी ज्यादा लगेंगे अभी।
0: मेरे को उससे कम लगेंगे 50 पहुंचने में।
1: अब जब बड़े बुजुर्ग कुछ बोलते हैं
0: तो सुन लेनी चाहिए। हाँ। जी थैंक यू आपके कॉल के लिए, आपका नाम हम ड्रो में शामिल कर रहे हैं।
1: आप यहाँ हाथों ये हाथों को जोड़ के थैंक यू बोल रहे हैं।
0: वैसा इट्स लाइक अ नॉर्मल जेस्चर जो हो जाता है। चलो थैंक यू शशि जी, हैव अ वंडरफुल डे।
3: थैंक यू
0: जी। तो आज शशि जी का नाम हमने ड्रो में शामिल किया। टीबीएच का मतलब टू बी ऑनेस्ट। मैं एक बात बताऊं,
1: आपको पता नहीं था?
0: नहीं पता था।
1: मुझे पता है, आपको नहीं पता था?
0: आई नो आईडिया।
1: आर्यन का मतलब पता है?
0: आर्यन?
1: हाँ।
0: नहीं अभी ना मुझे सिर्फ एक ही वो पता है,
1: टीबीएच
0: नहीं आईडी के। हर मेरे हर सवाल का जवाब आईडी के।
1: आर्यन का मतलब है राइट नाउ।
0: ओ अच्छा। ये क्या बात हुई, सीधा राइट नाउ ही बोल लो, उसमें क्या दिक्कत है?
1: ये क्या बोलते हैं जब मैसेजेस करते हैं आजकल के जो यंग पीपल है तो वो ये सब इस्तेमाल करते हैं। आई ऑल्सो गेट लॉस्ट इन सम ऑफ द एक्रोनिम्स।
0: नॉट सम, आई गेट लॉस्ट इन ऑल ऑफ द एक्रोनिम्स आई वुड से।
1: हाँ, तो ये जो एक्रोनिम्स है साथ में जो टेक्सटिंग के लिए जो ये शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे हैं। तो इस तरह के और भी सवाल हैं। डेट का रिवर्स ग्रिल इसी तरह से चलता रहेगा। नेक्स्ट वीक ड्रो जो है ये होने को है ऑन हम।
0: आई थिंक हमारा खुद का रिवर्स ग्रिल हो रहा है।
1: हाँ, तो
0: कंपटीशन कर रहे हैं, कॉल कर नहीं रहा है।
1: अभी क्या है ना कि हमने एक सवाल आपसे पूछा था कि अगर आप हम वोटिंग कॉल जीत जाते हैं टू रिटर्न एयर टिकट टू वनवातु विद $1,000 कैश, तो आप अपने साथ किसको लेकर जाएंगे?
0: राइट,
1: बॉबी कुमार जी ने पापा टोयोटो इसे सबसे पहले बताया। Me and my wife.
0: Oh, okay.
1: But किसी और ने भी मैसेज किया है, माई ब्यूटिफुल वाइफ वर्षा। वर्षा को लेकर उनके पति जाएंगे। विशाल भी अपनी पत्नी के साथ जाने वाले हैं।
0: आनंद कुमार सनीता देवी राम के साथ जाएंगे।
1: ओके।
0: नितिन वधेरा साक्षी के साथ जाएंगे।
1: मनीषा फैमिली को लेकर जाएंगी।
0: राधिका जो है ये अपने हस्बैंड को सरप्राइज करेंगी, उनको लेकर जाएंगी हॉलीडे पर। नीलेश को,
1: नीलेश ले जाएंगे राधिका को।
0: ओ अच्छा, ओके सॉरी।
1: लेकिन आपने बीसी नहीं बीएफ लिख दिया है।
0: मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, इनकी एंट्री थोड़ी गलत है, इन्होंने वीसी लिख दिया है।
1: हाँ, बी बोर्डिंग
0: कॉल,
1: बीसी बॉल।
0: हाँ बोर्डिंग कॉल बीसी आपको लिखना है। इन्होंने लिखा है मैं मदर इन लॉ।
1: हाँ, अपनी सासू माँ को लेकर जाएंगी।
0: I wish they win. It would be, you know, nice कि उनको एक साथ हॉलिडे पर जाने का मौका मिले।
1: And hopefully she sticks to the plan.
0: Yeah, she will. अगर उन्होंने बोला है कि वो जा रहे हैं तो उन्होंने शायद कुछ प्लान किया होगा, सोच रही होंगी, and that's why like कि अगर ये जीत गए तो it'll be the best surprise.
1: चलो चलो आप भी बताओ, अगर आप जीतते हैं तो आप अपने साथ किन को लेकर जाएंगे? क्योंकि टिकट्स दो हम आपको दे रहे हैं, $1,000 स्पेंडिंग मनी भी दे रहे हैं, खर्चा वर्चा कुछ नहीं, बस आपको बैकपैक करना है और जाना है।
0: हाँ।
1: छुट्टी मनाकर वनवातु में आना है। तो बीसी और उसके बाद अपने साथ आप किसको लेकर जाएंगे वनवातु, और अपना नाम ये लिखकर 5599 पर विद इन द नेक्स्ट सेट 2 मिनट्स का टाइम ही हमारे पास बाकी रह गया है, आप हमें भेज सकते हैं।
4: Mornings made better.
5: Two frienda, char toast, butter jam, aur ek special chai.
4: The breakfast show with Vijay and Pooja.
6: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
7: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
8: ये गलत बोल दिया यार।
7: और पहनता भी नहीं उसको।
8: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
7: इंटरेस्ट
9: ब्रांड हो गया अभी वो।
8: अभी ब्रांड हो गया ना।
7: रुजबे के बाल लगे उस।
4: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought
6: brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura J.Crew.
10: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like Coca-Cola 330 ml cans, 30-pack, just $23.99 a pack. And Purina One Dry Cat Food 1.4 to 1.5 kg, just $18.79 each. That's the fresh food feeling. T's and C's apply.
6: When India comes to town, Ayodhya Rowa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Cricket Nation ke pre-sale mein shamil ho. NZC.NZ pe aur apne tickets sabse pehle book karo. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps vs India.
11: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
12: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
6: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
13: Join the Tribe!
6: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
13: join the Tribe!
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
14: What's going on?
15: Let's go.
4: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
1: पौने 10 बज रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. विश्वा ने कहा है कि अपनी पत्नी शैली को लेकर जाएंगी.
0: ओके
1: okay. उसके बाद बिनाइफा, मेरे पति परमेश्वर, पोरस एंड पुआ एंड पूरा एंटायर एक्सटेंडेड फैमिली.
0: क्या बात है.
1: किसी ने कहा है
0: फ्रेंड को.
1: हाँ
0: ऑफ कोर्स भाई को. दीपा ने कहा है आकाश, या आकाश ने कहा है दीपा.
1: अच्छा,
0: भाई को का मतलब होता है पत्नी को.
1: ओके. आलोक कह रहे हैं आई विल टेक माई मदर इन लॉज डॉटर.
0: आलोक सीरियसली.
1: नीलेश ने वापस से मैसेज किया है माय लवली वाइफ राधिका.
0: हाँ आई टेक माय वाइफ विद मी. ये किसी ने भेजा लेकिन नाम नहीं है इनका. 8900
1: और 1547 भी अपनी पत्नी के साथ घूमने जाना चाहते हैं, तो आप भी चाहें तो 5599 पर हमें टेक्स्ट करके बता सकते हैं. डेली राउंडअप का अभी टाइम हो चुका है. सबसे पहले न्यूजीलैंड में जो ITM है ना
0: जी,
1: इन द रिसेंट ईयर्स इनकी संख्या बहुत कम हो गई है
0: ATMs की.
1: हाँ
0: ओके.
1: एंड सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री डोंट हैव एनी कैश मशीन्स एट ऑल. रेडियो न्यूजीलैंड ने एक रिसर्च जो है ये किया है जिसमें ये दिखाता है दे आर जस्ट ओवर 1000 एक्सेस पॉइंट्स फॉर कैश अराउंड द कंट्री एट विच दे मे बी मोर देन 1 ATM. अबाउट हाफ ऑफ जस्ट ओवर 3000 ATMs जो नॉन बैंक प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं. लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर कोई भी ATM आसपास नहीं है. पीपल लिविंग ऑन द ग्रेट बैरियर आइलैंड इन हास्ट तुआतपेरे ओमारामा एंड मिलफोर्ड साउंड्स ऑल हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग वे ताकि वो एक कैश मशीन एक्सेस कर सके. अगर हास्ट में कोई रहता है तो उनको 144 किलोमीटर ट्रेवल करना होगा. ओमारामा से लगभग 30 किलोमीटर टू ट्वाइजल एंड इन तुआतपेरे 48 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना पड़ेगा अगर आप एक ATM
0: को एक्सेस करना चाहते हैं. That is quite a thing, isn't it? Who knew कि अगर आपको इतनी इजीली यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल मिल रही हैं, then there are parts of places in New Zealand जहाँ पर नहीं है.
1: I think one of the reasons is कि जिस तरह से अभी सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है ना.
0: That could be a reason, yeah. दूसरी ओर एक group of health experts हैं जिनकी meeting Porirua में हुई, उनका कहना है कि public health system is under much pressure and it is starting to flatline. उनका कहना है कि स्टाफ शॉर्टेजेस, बर्नआउट एंड ईयर्स ऑफ अंडर इन्वेस्टमेंट दरअसल एक ऐसा कारण है जो अब लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है टू गेट द केयर दे नीड. डॉक्टर्स से कि सम जीपीज आर कटिंग बैक दे आवर्स और रिटायरिंग अर्ली क्योंकि वो प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, वाइल सम पीपल आर अवॉइडिंग हेल्थ केयर ऑल टुगेदर. एक कम्युनिटी लीडर है और उनका कहना है कि अराउंड 1 in 4 माओरी रेसिडेंट्स इन हर एरिया आरंट एनरोल्ड विद द जीपी. मीनिंग कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वेटिंग अंटिल देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स बिकम सीरियस बिफोर वे किसी भी तरह का मेडिकल हेल्प ले. मेंटल हेल्थ इज अनदर मेजर कंसर्न. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यंग पीपल जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू एक्सेस सपोर्ट, विद मेनी सेइंग दैट डोंट नो वेयर टू गेट हेल्प और फील एम्बेरस्ड अबाउट आस्किंग फॉर इट. और गवर्नमेंट जो है स्ट्रांगली डिसएग्री कर रही विद द आइडिया दैट द हेल्थ सिस्टम इज कोलैप्सिंग. हेल्थ मिनिस्टर सिमन ब्राउन का कहना है कि मोर पीपल आर बीइंग ट्रीटेड, सर्जरी वेट टाइम्स आर गेटिंग शॉर्टर एंड पेशेंट्स आर स्पेंडिंग लेस टाइम वेटिंग इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स. गवर्नमेंट सेज थिंग्स आर इम्प्रूविंग, हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑन द फ्रंट लाइन से देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे. आई जस्ट डोंट, आई मीन यू नो, ये आर्टिकल पढ़ने के बाद आई जस्ट डोंट नो कि जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको ये रिकॉर्ड कहाँ से मिल रहे हैं. Because the people who are working in that particular environment, in that particular industry, unka kuch aur kehna hai. Log jo sevaye hasil karte hain, I mean aap New Zealand ki abhi 5 mahine ki history dekh lo, kitne sare incidents hue hain jahan par emergency department mein there was someone waiting to be looked at lekin unko nahi mili samay par seva, and there were 2 cases I remember jahan par unki mrityu bhi ho gayi. So imagine कि उसके बावजूद ये बोला जा रहा है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि कब प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम देखा जाएगा और उसका क्या सलूशन होगा ना.
1: या एंड द लास्ट वन, वेलिंगटन में एक हाई स्कूल है दैट हैज गॉन इनटू लॉकडाउन केमिकल इंसिडेंट की वजह से. माना कॉलेज ने सोशल मीडिया पर इसके डिटेल्स शेयर किए हैं, आस्किंग पीपल नॉट टू अप्रोच और फाउंड द स्कूल.

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन। दो बातें।
1: आज की पहली बात, सुखी होने में ज्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी हैं ये दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा होता है।
2: बिल्कुल सही, स्पेशली आजकल के जमाने में।
1: और आज की दूसरी बात, कितनी सुंदर बात बताते हैं बरसात के कीड़े, जिनके पंख निकलते हैं वो कुछ दिन के मेहमान होते हैं।
2: चलिए, उम्मीद है कि इन बातों से आपको कुछ सीखने को जरूर मिले। अभी आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। कल ठीक सुबह 6 पर एक बार फिर आपसे होगी मुलाकात।

0: A very very good morning to you people. How are you? Studio ki ghadi mein 10:03 ho gaye. 26 August hai, birthday hai, anniversary hai. Happy happy birthday, happy happy anniversary to you. Lekin ek baat to hai, jab hum program mein badhne lagte hain to sochne lagte hain ki aaj what shall I talk about? But ऐसा कई बार होता है ना, हमारे experts जब हमारा साथ निभाने के लिए studio line पे आ जाते हैं ना, वो अपनी अपनी कहानियाँ जब बताने लगते हैं तो लगता है हाँ, we get convinced. But do we actually get convinced with the stories? या फिर हमें एक प्रमाण चाहिए होता है, या चाहिए होता है कि भाई कोई इसका एक testimonial भी तो होता है ना, कि यू नो इस चीज़ को वाकई ये हुई थी कि नहीं हुई थी. इसी के बारे में कुछ बातचीत करने वाले हैं आशा और वन से. हमारे साथ साथ थोड़ी देर बाद नितेश हीरा जी आ जाएंगे टेलीफोन लाइन पर. लेकिन मेरे पास मेरे आज पिटारे में बहुत कुछ है. अब पिटारे की जब मैं बात करती हूँ तो रक्षाबंधन ऑफकोर्स लास्ट टू डेज, आज एंड कल. हाँ, याद रखना फादर्स डे नेक्स्ट वीक में इसका खत्म होने वाला है प्रमोशन. ये दो चीज़ें एंड नॉट टू फॉरगेट दी हम बोर्डिंग कॉल. ये कभी भी हम आपके लिए बजा सकते हैं और एक सुनहरा मौका देते हैं आपको दो रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआटू विद सॉलोमन एयरलाइंस, साथ साथ $1,000 कैश जीतने के लिए आपके लिए एक सुनहरा मौका. कभी भी बोर्ड नाउ का अगर आप अनाउंसमेंट सुनेंगे तो फटाफट रुआ पे जाइएगा, बोर्ड नाउ करके क्लिक करके अपनी एंट्री सबमिट कीजिएगा. ओके, दैट्स अबाउट इट. तो ये याद रहे आपके लिए कि सॉलोमन एयरलाइंस 4 बार हफ्ते में डायरेक्ट नॉनस्टॉप फ्लाई करते हैं टू वनुआटू, और इनकी डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं solomons.com के जरिए. और हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस, हमारी कॉन्टेस्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट के जरिए या फिर रुवा ऐप के जरिए पता लगा सकते हैं. प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, गाना बजाऊं. हाँ, बट बाय द वे, हाउ यू फीलिंग? दिस इज कशिका, योर रिमाइंडर क्लॉक, कशिश फूड्स के सौजन्य से माय टाइम लेकर.
1: जाओ क्या

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: तो एक्सपर्ट्स अड्डा में मेरे पास, जैसे मैंने आपसे कहा, नितेश जी हर बार आते हैं, लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है ना, एक प्रमाण चाहिए होता है आपको कि भाई आज हम अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, लेकिन उसको अगर मैं कहूँ कि प्रमाणित करने के लिए, उसको हमें एक लाइक टेस्टिमोनियल बताने के लिए, बनाने के लिए, हमें कभी कभी कभी हमारे साथ कुछ कस्टमर्स ज्वाइन हो जाते हैं, कभी कभी वो हैप्पी हैप्पी क्लाइंट्स जो हमारे क्लाइंट्स के होते हैं वो भी ज्वाइन हो जाते हैं, और ऐसे में नितेश हीरा जी एकदम तैयार हैं और आज इनके साथ एक इनकी

0: क्लेम डिक्लाइन, ये टर्म्स मुझे नहीं पता ना, तो मैं आई एम ट्राइंग टू बी नितेश जी नाउ. तो क्लेम आपका डिक्लाइन हो गया था, एंड व्हाट हैपेंड एक्चुअली आफ्टर दैट?
1: मेरा एक सर्जरी हुआ था, इट वॉज अ मेजर सर्जरी, एंड देन मैंने क्लेम डाला. वो जो मेरा एडवाइजर था उसने भी कहता था कि ओ आई डू दिस एंड दैट, बट एनीवेज वो डाला क्लेम, एंड उसके बाद में दे वर जस्ट एक एक चीज मुझे बता. मेरा रिकवरी भी था एंड आई वाज सो सिक, लाइक आई कुडंट टॉक टू द स्पेशलिस्ट. तो वो उन्होंने बताया मुझे खुद से स्पेशलिस्ट को बताना है, ये पेपर लाना, वो पेपर. आई वाज सो सिक्स मंथ्स लगा उनको ये सब कराते, मैंने जितना प्रोवाइड किया, एंड एंड ऑफ द फिर 3 months एक्स्ट्रा लिया जस्ट टू से माय एप्लीकेशन वाज डिक्लाइंड.
2: तो क्लेम उनका डिक्लाइन हो गया था आफ्टर 9 months कशी करी. एंड ये सर्जरी हुआ था, दिस वाज इन 2022 राइट? आपका जो सर्जरी हुई थी 2022 में हुई थी. एंड उसके बाद दिस वाज बेसिकली सेम इंश्योरेंस कंपनी के साथ दो पॉलिसीज थी ट्रॉमा कवर की, और दोनों उन्होंने डिक्लाइन कर दिए थे.
0: ओह माय गॉड.
2: एंड देन व्हाट हैपेंड शेली, उसके बाद क्या हुआ, आप थोड़ा सा ब्रीफ करिए.
1: लाइक मैंने तो गिव अप कर दिया, मैंने कहा यू नो इसका कुछ नहीं होगा. लाइक द हैसल आई वेंट थ्रू प्लस रिकवरिंग माय सेल्फ प्लस बच्चे भी थे, इट वाज जस्ट टू मच. बट मेरे हस्बैंड जो विनय था उसने नहीं गिव अप किया, उसने कितने एडवाइजर से बात किया, कितने लॉयर को इन्वॉल्व किया, बट कुछ नहीं हुआ. एंड देन वन डे ही इज अ ट्रक ड्राइवर, ही वाज ड्राइविंग, तो उसने रेडियो में नितेश को सुना, एंड देन ही गेव अ कॉल टू नितेश, एंड जस्ट वन कॉल नितेश आया हमारे पास, एंड देन आई शोड हिम ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उसको बताया क्या क्या हुआ. नितेश ने सारा डॉक्यूमेंट्स लिया एंड ही वेंट देयर, एंड I don't know how he did it, but मुझे तो कुछ करना नहीं पड़ा. It was just so stressless. And he did everything for me. And within 5 weeks, I think, my both insurance were approved.
0: जी,
2: और कितना ट्रॉमा क्लेम आपका, कितना आपको AIA already have paid you trauma claim, Shelly? That is approximately around 200,000.
1: Yes.
0: क्या बात है. Yeah,
2: and the fun part is, Kashika ji, wo first interview tha mera radio pe is saal.
0: Achcha.
2: And that's when I got a call from Vinay ji, Vinay's partner.
0: Arre.
2: And today is almost just 6 to 8 weeks. So, I would like to highlight either, Shelly, aapka jo claim decline kiya tha, uska main karan insurance ne kya bataya tha? This is for the audience, ke unko samajhna padta hai policy. Claim mein unhone kya likha tha decline ke liye?
1: ऑनेस्टली मैंने जब पॉलिसी लिया, ओवरऑल बता रही, मैंने पॉलिसी जो लिया था, हमने कहा ओ ये जो हमारा एडवाइजर है वो उन्होंने समझाया, बट आफ्टर ऑल जो नितेश ने समझाया दैट वॉज टोटली डिफरेंट. नितेश के जो समझाना था इट वॉज वेरी क्लियर एंड इट वॉज जस्ट लाइक यू नो तुम्हें समझ में आता. हमारा तो डे एंड डे ये काम नहीं होता ना, हम तो ट्रस्ट करके इंश्योरेंस ले लेते, बट उनको समझना भी एक एक वो है. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मेरा ट्रोमा कवर हुआ मैंने अप्लाई किया, कहा ओ इट्स बेसिकली क्रिटिकल कंडीशन था, इट्स गोना गेट अप्रूव, बट क्या था कि बोल रहे थे वर्डिंग्स वाज नॉट मैचिंग डेफिनेशन, उनका क्या टर्म्स होता है,
0: करेक्ट.
1: बट देन नितेश ने उनको इतनी अच्छी तरह से क्लेरिफाई किया इंश्योरेंस कंपनी को, एंड आई थिंक देयर वाज नो Why that insurance company बोल सकते थे ओ हम डिक्लाइन कर रहे हैं.
0: Oh wow, नितेश जी.
1: So it was all Nitesh hard work.
0: Yeah, I know.
1: 4 years. It was 4 years, Kashika ji. Like 4 years. मैंने तो hope ही give कर दिया था. Like no, I didn't have any hope.
0: Fantastic.
2: Not only that, now also Kashika ji, insurance company will pay all जो पिछले 3 साल के प्रीमियम्स हैं जो उस क्लेम के बाद रिफंड दैट एज वेल. सो इन अ वे इट वाज पॉजिटिव आउटकम फॉर शेली. सो आई मीन ऑल आई वांट टू से टू द ऑडियंस जो सुन रहे हैं कि जब आप पॉलिसी लेते हैं उसको समझना, क्लैरिटी. इंश्योरेंस का मतलब वन वर्ड में अगर मैं बोलूं इज अ क्लैरिटी. अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, डू नॉट understand it, you need to ask the right person.
0: Absolutely. Give us a call. And the magic number to call the Hira of all Hiras is none other than 0800-77-HIRA. 0800-77-HIRA. Ya visit kijiye assure1.co.nz. Shelly, look

0: weekdays, 6 to 10 a.m.
1: It's McHappy season. Get your McHappy cookies from Macca's. Just $3.50. All proceeds go towards keeping families together at Ronald McDonald House Charities. T's and C's apply.
2: Oh hey, if you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
3: Enrol, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
4: Hey Neha, congratulations on your first home. Tune to kaha tha ki do banks ne loan dene se aur ek famous broker ne to case lene se hi mana kar diya tha. ये घर कैसे?
5: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है।
4: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
5: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
6: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
8: हाँ। अच्छा
7: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह,
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz।
11: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
12: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
13: वो Indelible Homes वाली कहानी सुनाओ ना।
14: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
15: And award goes to Indelible Homes.
14: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
16: Kahani of Indelible Homes.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
17: Get ready.
0: Passengers, stand by. The next humboarding call could be your ticket to paradise. Listen out and get ready for your chance to win 2 return air tickets to Vanuatu and $1,000 spending money.
18: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
19: Office shout-out.
20: तो मेरा ऑफिस आउट जा रहा है शैली के हस्बैंड विनय को, जो एक ट्रक ड्राइवर है और जिन्होंने शायद प्रोग्राम में नितेश शीरा जी को सुना और उसके बाद उन्होंने उन्हें कॉल किया। सो अ बिग थैंक यू, माफ़ कीजिएगा गले का, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, अ बिग थैंक यू टू यू। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपने अभी सुना कि वनुआटू जाने के लिए बस आपको ये थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा हम बोर्डिंग कॉल का, जहाँ आपके लिए यू नो एक मौका तैयार हो जाएगा।
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

अच्छा भाई, घूमना बहुत हो जाता है, खास तौर पे दिमाग घूमने लग जाता है जब खास तौर पे अल्फा जेंजी, ये बच्चे जो मिलेनियल भी बच्चे होते हैं, ये सब जब बातें करने लग जाते हैं तो मेरा भी सिर घूमियो घूमियो घूमियो खूब सारा घूमियो हो जाता है। आप लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है? कहीं आपने ऐसा कोई चैलेंज फेस किया है तो मुझे कॉल करें 0800 हम पर, क्योंकि ऐसे में मैं चाहती हूँ उन वो बच्चे जिन्होंने अपने फादर या फादर को ग्रिल किया हो, या फिर ऐसी एक स्लैंग इस्तेमाल करने के बाद आपने वो स्लैंग सीखी, आज मैंने एक स्लैंग सीखी है एंड मैं सोच रही हूँ उसको मैं शेयर करूँ, लेकिन 0800 हम पर आप मुझे कॉल करें, 0800 4866 पर कॉल करें, क्योंकि 4 सितंबर को फादर्स डे है और ऐसे में $500 कैश हम देना चाह रहे हैं, आपके एक फादर को पिक करना चाह रहे हैं। आप मुझे कॉल कीजिए, भाई बताइए कोई मॉडर्न स्लैंग या कोई वर्ड आपने ऐसा सीखा हो जो आपको लगता है कि ओ माई गॉड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट या दे हैव टॉट अस दिस टूडे एंड वी एक्चुअली लर्न फ्रॉम देम एज वेल। It's always good to learn something because if you're a good student, you will be always a good teacher as well. ये तो मैं आपकी कॉल का वेट कर रही हूँ, 0800 हम पर कॉल करो। और साथ साथ एक अगर आपके फादर के अंदर एक सुपर हीरो कहीं छुपा हुआ है तो एक AI जनरेटेड सुपर हीरो की इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं एक फ़ोटो के ज़रिए, कोई फ़ोटो ऐड करके उसमें आप अपनी AI जनरेटेड वो वीडियो एक फ़ोटो बनाएं और उसके बाद हमारे सोशल मीडिया की कॉम्पिटिशन में भाग लें जहाँ $300 कैश है। नाउ वॉट यू हैव टू डू इज़ ये आपने फोटो जो है हमारी कमेंट सेक्शन में पोस्ट की और उसके बाद अपने डैड को टैग किया, फिर आपने अपनी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को बोला कि हमारे डैड की जो फ़ोटो है उसको आपको लाइक करना है। अच्छा लाइक तो करो करो, लेकिन जो आपके पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, आपकी आपकी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, उन्हें हम के पेज को भी लाइक करना पड़ेगा और दैट्स अबाउट इट, $300 आपके हो जाएंगे। ओके, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस तो आप समझ ही जाएंगे। मैंने आज एक वर्ड सीखा, एल्च। मैंने कहा ये क्या होता है, मतलब दिस वॉज नील राइटिंग टू मी, माई फ्रेंड्स सन रीमा सन एंड ये आई वॉज चैटिंग विद हिम इन द मॉर्निंग, ALG। मैंने कहा ये क्या अलजेब्रा लिख रहा है, क्या लिख रहा है। मैं कहा हे नील कैन यू टेल मी व्हाट डिड यू राइट, ही सेड ALG। मैं कहा ओ बट व्हाट इज ALG, इट मेंट ऑल गुड। द बीट ऑफ बॉलीवुड वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी गुड ब्रांड्स।

0: Eat better, live better.
1: बॉलीवुड में तो बहुत कुछ हो रहा है और ऐसे में वी ऑल नो अ मूवी जो बहुत बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी एंड फूल और कांटे. एंड इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, यानी कि उनका नाम था कुकु कोहली, जो अरुणा रानी के हस्बैंड थे, ये इनकी इनका निधन हो गया एंड अनफॉर्चुनेटली ही हैड अ हार्ट अटैक. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. नाउ द पिक्चर विच इज़ कमिंग है वन प्रियदर्शन की फिल्म है. उन्होंने बताया कि सैफ अली खान ने एक विजुअली चैलेंज्ड मैन का रोल अदा किया है. आई एम एक्चुअली नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग कि किस तरह से उन्होंने इस रोल को अदा किया था. डू यू रिमेंबर एक इसी तरह की एक आँखें करके एक फिल्म बनी थी जिसमें भी कुछ बैंक रॉबरी वगैरह हुई थी. कौन कौन था उसमें? शायद अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अर्जुन रामपाल.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: diary.
1: तो कल आपका टेक्स्ट आया था, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट रिप्लाई टू यू, बट ब्रोकली आपने कहा था, आपने ड्रीम किया था. सो ड्रीमिंग ऑफ ब्रोकली, ये आपका एक्सपीरियंस होता है, द बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट हो सकता है. इट कुड बी इमोशनल, इट कुड बी एक्साइटिंग, इट कुड बी सम सिचुएशन एट योर वर्क प्लेस एज वेल. तो डेफिनेटली ट्राई करिए. ब्रोकली जैसे खूबसूरत लगिए, अच्छे लगिए, इतना ही कह सकती हूँ.
0: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: Do you buy 0800 Rachna? Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: सो बॉनस अवतार कोहली कुकू कोहली जो कल गुजर गए इन्होंने वाकई बहुत ही कमाल का काम किया था. ही गेव अजय देवगन हिज फर्स्ट ब्रेक. 1991 में फूल और कांटे फिल्म आई थी जिसमें वो उनकी पहली फिल्म थी और उसके बाद उनकी काफ़ी फिल्म जब भी जो भी फिल्म आई हैं वो काफ़ी अच्छी हिट भी रही थी. जहाँ इन्होंने कोहराम एक फिल्म थी धर्मेंद्र जी के साथ और फिर डिम्पल कपाड़िया सनी देओल के साथ अर्जुन हकीकत एंड ऐसी कितनी फिल्में थी जो उन्होंने की और वो सारी की सारी हिट थी. इनफैक्ट ही वॉज वन ऑफ द पीपल जो एक सेकेंड यूनिट डायरेक्टर थे फॉर बेताब मूवी जहाँ पे एक लॉन्च पैड था वो फॉर सनी देओल एंड अमृता सिंह एज वेल.

0: एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में इस समय 11:04 हो रहे हैं एंड आई एम वेरी श्योर बहुत से लोग एक्साइटेड होंगे क्योंकि भाई रक्षाबंधन जो है ये बस समझ लीजिए आप आ ही गई है. एंड ऐसे में जब मैं कहती हूँ आ ही गई है तो यस एक्साइटमेंट सबका ही बिल्डअप हो जाता है और एक्साइटमेंट में आपके लिए मेरे पास फाइनली एक इंटरेस्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. एंड ऑफकोर्स आपसे जानना चाहूँगी, दो दिन बचे हैं बस इसकी एंट्री आपके लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कशिश फूस के सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है. त्यौहारों के मौके हैं तो ऐसे में कशिश फूस के स्पेशल्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे. आपको रैक्स पर जाएंगे तो तरह तरह के स्वीट्स और नमकीन वगैरह भी आपको राखी के स्पेशल्स पे ज़रूर मिल जाएंगे. माई टाइम में बस थोड़ी देर बाद मैं आपकी एंट्री लेने जाती हूँ लेकिन अभी के लिए ये गाना बजाना चाहती हूँ. लेकिन गाना बजाने से पहले कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ.
1: Ladies and gentlemen, got airplane tickets with your name on them. This is the boarding call for Solomon Airlines flight number Hum 104.2 FM to Vanuatu. Boarding is now in progress. Please proceed to Rover and enter board now.
2: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
3: Bachao kya?

0: non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: Bollywood's biggest hits.
2: तो रक्षाबंधन का मौका आ रहा है और ऐसे में मैं चाहती हूँ कि आप बस इस गाने के बाद मुझे कॉल कीजिए. ये आखिरी दो बार है जब मैं आपको कॉल आउट करने वाली हूँ और आपका नाम ड्रॉ में ऐड करने वाली हूँ. कुछ ऐसी बात जो आपको लगता है आपके भाई या बहन की आपके लिए एक मेमोरी है या एक कड़वी मेमोरी है या फिर एक आप उसे भूल जाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है वेंट आउट करने के लिए. क्योंकि ये इस बार हम 2026 में रक्षाबंधन के मौके पे भाई और बहन को रिव्यू कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं.

eat better, live better, and of course, I definitely would like to take some kind of calls. जो भाई या बहन का ये जो पावन का रिश्ता है, पावन रिश्ता जो चलता चला आ रहा है, और आपको लगता है कि ये रिश्ता ऐसा ही चलता चला आ रहा था, या कुछ हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, अब तक बरकरार है, दूर बैठे हुए हैं आप, आपका पर दूर देश में है, आपकी बहन या भाई बहुत दूर हैं आपसे, लेकिन क्या होता है ऐसे में, क्या ये रिश्ता अभी भी वैसा ही रहता है? कुछ लोगों की मुँह बोली भाई या बहन भी होते, उनके रिश्ते भी ऐसे ही कुछ होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, ऐसा हो जाता है कई बार, कुछ रिश्ते कन्वीनियंस के लिए भी होते हैं, है ना, कि आपको यहाँ पर सपोज़ करो भाई या बहन मिला, उन्होंने आपसे पूरा अपना रिश्ता निभा

0: लेने का मौका दूं, परसों ये ड्रॉ होने वाला है सुबह। इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप कोई भी एक प्यारी सी एक उनकी कोई चीज़ है जो आप रखना चाहते हैं संभाल के, वो चीज़ को आप उनकी चाबी हो सकती है, उनकी बेल्ट हो सकती है, बहन का कोई क्लिप है या बहन का कोई दुपट्टा है, कुछ भी है जो आपके पास अभी तक है, बस आपको क्या करना है उसकी फ़ोटो उतारनी है। हमारे फेसबुक के पेज पर आपने उसको पोस्ट के नीचे हमारी रक्षाबंधन की ऐड कर देना, लोड करनी एक फ़ोटो, अपनी कहानी और अपने भाई या बहन को टैग कर लेना है। $300 कैश वहाँ जीतने का भी आपके लिए सुनहरा मौका है। देखो, फादर्स डे के मौके पर सब पता नहीं क्यों जेंजी के नाम से, अल्फ़ा के नाम से घबराने लग जाते हैं, लेकिन प्लीज़ अब तो आप कॉल कर सकते हैं ना, भाई या बहन तो आप सबके हैं, भले ही मुँह बोले हैं, भले ही एक कहते ना एक रिश्ता होता रूहानी रिश्ता, वो भी हो सकता है ना, तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी एंड लेट मी नो। चलो ऐसा करते हैं, ये कॉल उठा लेते हैं हम। गुड मॉर्निंग, किन से बात हो रही है?
1: गुड मॉर्निंग, पूजा बोल रही हूँ, कैसे आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ पूजा, आप कैसी हो?
1: बहुत बढ़िया,
0: बोलो।
1: जो टॉपिक बोला है उस टॉपिक पे तो मेरे पास नहीं है कोई, मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ।
0: कोई बात नहीं, दूसरा कुछ बता दो।
1: हाँ, लेकिन मेरे ऐसे एक फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड भी क्या, रिलेटिव ही है, उनके साथ हुआ है, तो वो तो एक दूसरे का मुंह भी देखना चाहते हैं, उनके भाई बहन में आपस में हुआ है।
0: Oh my God,
1: नाम okay. तो नहीं लूंगी अभी मीडिया में।
0: अच्छा ठीक है, मैंने आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर लिया है, एंड अभी बात नहीं करते अपने आपस में?
1: नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते, मुंह भी दिखाना चाहते दूसरे का।
0: हाय हाय, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, बाय।
1: ओके, थैंक यू, थैंक यू।
0: हम गुड मॉर्निंग, किन से बात हो रही है?
2: मैं पुष्पा बोल रही हूँ, आप कैसी हो?
0: मैं ठीक हूँ पुष्पा, आप कैसी हो?
2: मैं ठीक हूँ। मुझे एक्चुअली दो ही बड़े भाई है, वो हमारे बहुत कजन है, मेरा पहला कजन है, वो वेलिंगटन में रह रहे हैं, तो हर या हैप्पी सेंडिंग मैं उसको उन दोनों को राखी भेजती हूँ, एंड ऐसे कभी कभी जा भी नहीं पाती, लाइक वंस इन अ व्हाइल जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी बच्चे पढ़ते हैं फिर। तो इस बार मेरे बड़े भाई ने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया, वो आ ही गए, एंड आई वाज सो हैप्पी। मैं अपने दोस्त के घर पर थी, उसका हाउस वार्मिंग चल रहा था, तो मेरी भाभी कॉल कर रही है, बोल रही है कि तू कहाँ पर हो? मैंने बोला मैं हाउस वार्मिंग पर हूँ, तो वो बोल रहा है कि ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला देखो भाभी आई हुई है, मैंने कैमरा में देख लिया, मैंने कहा ठीक है चलो मैं भाग हूँ यहाँ से, मैं बोली मैं आ रही हूँ, आप 10-15 मिनट वेट कर लो, उनको कहीं और भी जाना था, मैंने बोला नहीं मैं आ रही हूँ मैं फट। वो बोल रहा है कि मैं कल आ जाती तो आराम से, मैंने बोला नहीं मैं आ रही हूँ। मैंने इतनी जो फास्ट वहां से निकली, मैंने अपने दोस्त को बोला सॉरी तो बहुत प्यारी है बट मेरा भाई आया हुआ है, मुझे जाना है।
0: ओह माय गॉड, व्हाट अ
2: मोमेंट। मैंने इतना I was so happy to see him because he has been always my father figure. और मेरी भाभी बहुत बहुत प्यारी है, वो मेरी माँ ही है। कुछ भी हो ना मैं उससे इतना openly मैंने दोनों से बात करती हूँ, वो बहुत प्यार करते हैं, and सही में इतनी sweet भाभी किसी को कभी कभी भाभी ननद का बहुत वो होता है, बट बी ऑनेस्ट आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई गॉट सच अ वंडरफुल भाभी,
0: माय गॉड
2: इतना प्यारी भाभी।
0: और यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग देयर इज इमोशन, सो मच ऑफ इमोशन इन यू, यू नो लाइक आई कैन गेट द फीलिंग ऑफ दैट लव एंड इमोशन इन योर वॉइस, सो गॉड ब्लेस योर भाई। आपके भाई का नाम क्या है पुष्पा?
2: उसका नाम है एंड्रू।
0: एंड्रू, ओके एंड्रू।
2: और मेरे छोटे वाला भी है ना, उससे छोटा भी है, उसका नाम क्लेरेंस है।
0: क्लेरेंस,
2: वो बेचारा एक तो ही वाज बोर्न डिसेबल्ड, अभी रिसेंटली उसका पैर वो चल नहीं सकता, उस वो क्लचेस पे, उनका एक स्पेशल है, बट मेरे को इतना रोना आया बिकॉज लास्ट ईयर वो रक्षाबंधन का मेरे लिए वो चाहकर एक जैकेट भेजा वहां से वेलिंगटन से, और ना मेरे को बहुत एक रोना आ गया कि वो जा भी नहीं सकता बिकॉज

0: एक तो करंटली बस का पैर वो डॉक्टर ने काट दिया बिकॉज वो बहुत हेवी हो रहा था
1: ओह नो,
0: उसके लिए. तो उसने एक्चुअली मैं जाकर ना मेरे लिए वो भेजा, मेरे को इतना रोना आया. मैंने बोला मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, आप उतना ही ब्लेसिंग कर दो बहुत है, यू नो लाइक वो
1: उफ,
0: दोनों मेरे बहुत करीब है. सच में बताऊं इट्स आई रियली लव देम.
1: थैंक यू सो मच. इट मीन्स सो मच टू हियर सच अ ब्यूटिफुल प्यार की स्टोरी ऑफ योर्स. एंड गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू
0: थैंक यू.
1: यू.
0: यू टू
1: गॉड ब्लेस
0: थैंक
1: यू.
0: यू.
1: डोंट क्राई, ओके? अ वर्चुअल
0: नहीं
1: हग टू यू. टेक केयर.
0: थैंक यू
1: बाय बाय.
0: बाय.
2: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की.
3: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल.
2: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश.
3: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300. डैड को रेडी करो, खुश करो.
2: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग best home loan advice for the last 20 years. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.

0: Andy didn't think he needed a DVS system.
1: Nah, we're all right, aren't we?
0: But Andy forgot about his daughter who suffered from asthma and allergies.
2: Yeah, Dad!
0: So, Andy got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work making their rooms drier, healthier and more comfortable. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: Blood and plasma donors are always precious, but in wintertime, with sickness about, NZ Blood needs even more donors to fill the gaps others leave. So, if you're well right now, we'd love you to step up and help us out. When you become a donor, you're giving a priceless gift to someone in need. You could help them get better and make yourself feel good. Just head to nzblood.co.nz and book in a time to donate today. Give blood. Give plasma. Save lives.
4: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
5: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
6: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें
5: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
6: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI
7: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
8: So Pushpa, आपकी story सुनने के बाद किसी ने मुझे एक six word story भेजी है. A big thank you to 173 and you said I loved what Pushpa said and I could so relate to my brother's love. But this also reminded me about the six-word story that you talk about every day. So today's six-word story is the Sweka Shika, which I have written. And probably it's my sweet memory. So, Kheer-covered spoon and gifts surprises. Kheer-covered spoon and gifts surprises. So, it could also be Kheer-covered spoon with gifts surprises. या हो सकता है यू नो टू मेक मोर दिस थिंग स्टोरी इंटरेस्टिंग खीर कवर्ड स्पून गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस सो दिस इज व्हाट वी कैन से अबाउट रक्षाबंधन इजंट इट प्रिटी इजंट दिस ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच
7: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

0: वैसे आईआईटी वॉर्न कर रहे हैं थाउजेंड ऑफ पीपल जिन्होंने बोगस एक्सपेंस क्लेम अपने ऐड किए हैं टू देयर टैक्स रिटर्न्स एंड दे कुड फेस सिग्निफिकेंट पेनल्टीज. और ये कोऑर्डिनेटेड स्कीम थी ऑफ पीपल जहां वो क्लेम करते हैं अपने एक्सपेंसेस और फिर कुछ अनयूजुअल रिटर्न्स वो फाइल करते हैं. तो ये पता चल रहा है दैट दे हैव बीन 3,000 फ्रॉड यू नो क्लेम्स विच हैव बीन डन और दे आर गेटिंग वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट इट. देखो आप किसी को जानते हो इस तरह से सो बी वेरी वेरी केयरफुल. दूसरी ओर ब्रिजस्टोन ने इशू किया है न्यूजीलैंड को ब्रिजस्टोन न्यूजीलैंड ने इशू किया है रिकॉल ऑफ डुराविस R660 इको टायर जहाँ पे एक रैपिड उसमें एयर लॉस होती है वाइल बींग ड्रिवन. नाउ दिस कैन एक्चुअली गेट वेरी रिस्की. डुराविस R660 इको ये टायर का साइज है 215/60R17C. सो आप नोट कीजिएगा इसको एंड प्लीज प्लीज बी वेरी केयरफुल.
1: Here we go.

0: शिका।
1: वाह,
2: हाँ,
1: अद्भुत।
3: देखिए फादर्स डे है और उसके साथ साथ रक्षाबंधन है और फिर साथ में आ जाता है कृष्ण जन्माष्टमी। ऐसे मौके पे कम्युनिटी में आपके क्या खास हो रहा है बताइए। वैसे दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट जो है कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक द केव कैवेंडिश ड्राइव मैनकाओ में 7:30 बजे से हर रोज आयोजन कर रहे हैं सेलिब्रेशंस। इसके साथ साथ रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मैनकाओ में भी सिमिलरली 7:30 बजे से ये फंक्शन सेलिब्रेट किया जा रहा है। न्यूजीलैंड संगम जो है आपको इनवाइट करना चाहते हैं 28 अगस्त से 4 सितंबर एट द डेकोर ऑफ एलिगेंट 16 लैम्बी ड्राइव मैनकाओ में 7:30 से 9 बजे तक। कथा व्यास जो है कथावाचक जो है वो नैलेश नायडू हैं। श्री राम मंदिर में भी आपके लिए कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 29 अगस्त से 4 सितंबर तक आचार्य श्री कैलाश आचार्य जी वहाँ पर कथावाचक रहने वाले हैं। आउटरियर सनातन संगम संस्था आपके लिए कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे पंडित कृष्णील शेखर महाराज को आपके लिए लेकर आ रहे हैं 7 से 9 बजे तक। ये भी आपके लिए 29 अगस्त से 4 सितंबर तक चलने वाला है। एंड दिस विल बी एट 2 Sudden Crescent पापा टोए। तो बस अगर आपके भी कम्युनिटी में कुछ खास हो रहा है हमारे साथ शेयर करें ऑन bus@humfm.com पर।
4: Attention everyone, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
5: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
4: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
5: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
4: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
5: सबसे बेस्ट 2 परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
4: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
6: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
7: Hi, Kevin Eater here, Trade Staff. Is respect in your workplace and being treated like an adult important to you? Are you currently in work that feels like you're going nowhere? Life's too short for bad jobs. Let's have a chat. If you're looking for better pay, flexibility, or a new challenge, let us show you how. There's never been a better time than now. We're online, tradestaff.co.nz.
8: Trade Staff. Industrial employment solution. Trade Staff.
9: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
10: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
9: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
10: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
9: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
11: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
12: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
13: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
14: Award goes to Indelible Homes.
13: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
15: Kahani of Indelible Homes.
16: And it's looking ugly out there on the roads with severe delays on all motorways into the city.
17: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and grab a barista-made coffee in minutes. The perfect traffic jam remedy at BP.
18: At Spotlight, save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester home decor, fabric, craft, knitting yarn, party curtains and blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it.
19: Discounts apply to full price products. Excludes clearance. See website for details.
20: No matter how you wrap it, make Dad's Day with the perfect gift from Mitre 10. Get a sweet deal on a Bosch 3.6 volt cordless air compressor pump, now $79. Or pick up a 150 litre number 8 heavy duty storage box for only $35. And for the lawn obsessed dads, grab a 140cc Lawnmaster petrol lawnmower, now just $529. Or let Dad decide with a gift card. Shop now at Mitre 10.
21: Smart Pay
22: is now.
21: Shift 4.
0: Dakota NZ. Global commerce, local service.
1: Waiting weeks for your FPOS setup? That's lost revenue. Shift4 gets your business up and running and taking payments in under a week. Tailor your setup from day one with flexible plans and customizable options that can bring business costs down. Make the shift today.

0: तो इस बार हम आलूओं के पीछे पड़े हुए हैं. अभी देखो हमवार का दिन आ गया और आलू की सब्जी अगर बच जाती है, एक्चुअली उसको देखा जाए तो आप एक स्प्रिंग रोल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एक स्पून फुल सब्जी जो है आपको स्प्रिंग रोल के रैपर में ऐड करना है. फोल्ड कीजिए, रोल कीजिए टाइटली और इन्हें हॉट ऑयल में फ्राई करने रख दीजिए. क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाते हैं. सॉस के साथ डिप करेंगे, बच्चे ऐसे चुटकियों में आपकी सब्जी वगैरह सब खा लेंगे. अब यू कैन डू दिस फॉर जस्ट आलू की सब्जी और यू कैन डू इट अदरवाइज एज वेल. किसी तरीके से भी आप चाहें तो इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. आई नो आपका टेक्स्ट आया था और आपने कहा कि आलू का पराठा रोल. या डेफिनेटली आलू का पराठा रोल तो बहुत ही अच्छा लगता है. उसमें आपने लेफ्ट ओवर सब्जी ली और उसके बाद रोटी के अंदर आपने उसको ऐड कर दिया, दैट्स इट. और उसके बाद आपने उसको ग्रिल करके आपने उसकी बहुत अच्छी सी एक सब्जी बना दी. और आलू के आई स्टिल रिमेम्बर माई मदर यूज़ टू पुट आलू की सब्जी होगी, उसको ब्रेड में डाला और मक्खन शक्कन लगा के उसके बाद ब्रेड में डाल के और फिर वो टिफ़िन में भी पैक कर देती थी, नाश्ते में भी दे देती थी. अब जब देखो आलू आलू आलू. लेकिन जब उन्होंने आलू को इस तरह से पेश करना शुरू किया ना, देन आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट. होता है ऐसा.
1: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
0: 100 years of resilience, migration and identity, Punjabi community ने किस तरह से ये एक modern New Zealand को you know अपनाया, इसके episodes जो हैं एक discuss किया है unfiltered में Sandy and Rusby के साथ. तो आप drive लिख के भेजें और साथ सारी की सारी ये जानकारी हासिल करें जो migrate होकर आए थे, उनके roots, उनकी बातें, उनकी inclusivity, community support, क्या क्या हुआ था, किस तरह से diaspora में उनको add किया गया. So ऐसे में हरजोत सिंह जो है एंड गगन संधू, इन लोगों ने इसके बारे में बातचीत की है. एंड द डॉक्यूमेंट्री ऑफ पंजाब टू हाउटी रिवर.

0: you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो चलिए फिर इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है हम्पवार या जो भी आप इसे कहना चाहें, बुधवार ऑफ कोर्स. अच्छा चलो ठीक है, मैं यहाँ से अभी के लिए चलती हूँ और कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ कशिश फूड्स के सौजन्य से. आपके लिए 10 से 12 बजे तक माय टाइम लेकर मैं हाज़िर हो जाती हूँ. हाँ आई नो मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है, गला वाला थोड़ा सा ओके ओके सॉर्ट ऑफ था, बट या आई विल लुक आफ्टर माई सेल्फ, यू टू लुक आफ्टर योर सेल्फ. मेक श्योर गर्म पानी वार्म वाटर आप पीते रहें, विटामिन सी का इनटेक अपना ज़रूर रखें एंड ट्राई एंड स्टे वार्म, क्योंकि मौसम बदलते हुए समय बदलते हुए वक्त पता नहीं चलता और कब कहाँ आपको ये अटक जाए पकड़ ले यू डोंट नो. सो लुक आफ्टर योर सेल्फ. दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज. टेक केयर, बाय. कुकू कोहली जी जो हमारे बीच अब नहीं रहे, उन्हीं की फिल्म हकीकत जो सुपरहिट फिल्म थी उसी फिल्म का ये गाना आपके लिए छोड़ जा रही हूँ.